ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि तदनुसार 9 जून सन 2026 सुबह के 5:53 और 32 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब से कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। भावना नायर आपके साथ रहेंगी इस कार्यक्रम में। 7:05 पर श्रोता सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर निखिल कुमार के साथ, और निखिल कुमार लेकर आएंगे 8:00 कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने। हिमानी दत्ता के साथ आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम 10:05 पर।

हमारे श्रोता सुन सकते हैं 11:05 पर बॉलीवुड ट्रेल्स संतोष राव आपको ये कार्यक्रम लेकर आएंगे आपके लिए, और 12:05 पर होगा वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम प्ले इट कूल, हिमानी दत्ता आपके साथ होंगे, और 1:05 पर आप सुन सकते हैं रेनबो हेल्पलाइन संतोष राव के साथ। बबीता रावत लेकर आएंगे 2:00 कार्यक्रम आशियाना।

तीन बजे कार्यक्रम होगा रेडियो डॉक्टर, गीतांजलि सोनी आपके बीच होंगी। 4:05 पर अल्फा जैन कार्यक्रम बबीता रावत लेकर आएंगे और सिटी लाइट्स 5:05 पर गीतांजलि सोनी इस कार्यक्रम।

हमारे श्रोता सुनेंगे मैसेज मसाला मिक्स 6:05 पर। साथी होंगे भारती डैंग, लिपिका दास लेकर आएंगे वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम 7:05 पर। और इसके बाद श्रोता सुनेंगे 9:00 आपकी याद आती रहे प्रियंका त्रिपाठी के साथ, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। और 10:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम होगा। श्रोता सुनेंगे 11:05 पर रंगे महफिल प्रियंका त्रिपाठी के साथ। तो श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम रूपरेखा हमारे आज प्रसारित होने वाले कुछ संक्षिप्त कार्यक्रम की रूपरेखा हम लेकर आए थे आपके लिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 6:00 जा रहा है। कुछ ही पलों में हमारे श्रोता आप समाचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और DMK पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सुन रहे हैं 102.6 FM और मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त, आपकी हम सफर भावना। आज की इस ताजगी भरी सुबह में ना आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुप्रभात में। और कहीं भी अगर कोई अच्छी सुबह होती है ना, तो वो आपकी फेवरेट रेडियो स्टेशन 102.6 FM पर ही होती है। कहते हैं हर सुबह अपने साथ एक नया मौका लेकर आती है। कल की अधूरी बातें, कल की थकान और कल की परेशानियों को पीछे छोड़कर आज यानी अब से ही

मुस्कुराने का अवसर आ चुका है, क्योंकि आज हम बात भी कुछ ऐसी करने वाले हैं। बात करने वाले हैं हम कैसे इस उत्साह को बनाए रखें, इस एक्साइटमेंट को जो हमें इस नए दिन की शुरुआत के साथ मिल रही है, वो भी नई ऊर्जा है और एक पॉजिटिविटी होती है हमेशा एक मॉर्निंग में। तो क्यों ना इस दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करें। आज है 9 जून, मंगलवार का दिन, दिन मंगल में हो। इसी के साथ चलिए फिर शुभारंभ करते हैं गानों के साथ और सिलसिला शुरू करते हैं बातों का।

तो इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत हो चुकी है 102.6 FM के साथ, मेरा और आपका साथ चल रहा है और कार्यक्रम का नाम है सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का दिन 9 जून है, मंगलवार का दिन है। सुबह की हल्की हवा ना, और पक्षियों की आवाज़ें, और धीरे धीरे जागता हुआ शहर। मौसम ना चाहे जैसा भी हो, मुझे पता है बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन मौसम चाहे जैसा भी हो ना, सुबह का एक नियम हमेशा बहुत काम करता है आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए। खुली हवा में ना 5 मिनट खड़े हो जाइए और बस महसूस कीजिए उस हवा को, उस मूड को, उस पॉजिटिविटी को। और एक आत्ममंथन का ये समय होता है, बस अपने से अपने बातें करने का समय होता है, हमें सुनने का समय होता है। और कई बार ना मूड मौसम से नहीं, बल्कि हमारे कमरे की चार दीवारों से प्रभावित होता है। अगर आप इस समय टहल रहे हैं, छत पर हैं या बालकनी में हैं, तो एक गहरी सांस जरूर लीजिएगा और इस सांसों के लिए ना धन्यवाद भी दीजिएगा, क्योंकि यही सांसें हैं जो 24 घंटे हमारा साथ दे रही हैं। और महसूस कीजिए इस नए दिन की शुरुआत को, क्योंकि ये नया और बहुत ही खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है। इस ब्यूटी को महसूस कीजिए, इस प्रकृति को महसूस कीजिए, इस नेचर की खूबसूरती देखिए, उन पक्षियों को देखिए, अलग अलग पक्षियों को देखिए, देखिए कितना उत्साह महसूस होगा, मन में एक अलग ही तरंग होगी। और सूर्य उदय के साथ ही ना प्रकृति हमें याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, उजाला अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। आज आप किस नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं? क्या कोई नया संकल्प सोचा आज का, और कोई अधूरा काम, या फिर किसी पुराने दोस्त को फोन ही सही? कब तक मैसेजेस चलते रहेंगे, एक बार फोन पर बात करके देखिए, मिलकर देखिए, एहसास ही अलग होता है उसका।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: कार्यक्रम चल रहा है सुप्रभात मेरे साथ यानी भावना के साथ। एक अच्छी शुरुआत मुझे लग रहा है आपके दिन की हो चुकी है। और उत्साह ना तब सबसे ज़्यादा रहता है जब काम ना बहुत आसान हो ना बहुत मुश्किल। बिल्कुल वैसा ही जैसे क्रिकेट खेलते समय अगर सामने वाला गेंदबाज बहुत कमज़ोर हो ना तो मज़ा नहीं आता, और अगर हर गेंद पर अगर आप आउट भी हो रहे हो तो भी मज़ा नहीं आता। मज़ा आता है उस मुकाबले में जहाँ चुनौती हो लेकिन उम्मीद भी हो, और यही उम्मीद हमें कायम रखती है एक अच्छे दिन की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि यही एक खूबसूरत विचार होता है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और यही प्रेरणा हमें आगे भी ले जाती है। तो एक नए शुरुआत का दिन, लेकिन नई शुरुआत ना हमेशा ये नहीं होता कि नया काम कीजिए, कभी कभी पुरानी चीज़ों को भी ना नए उत्साह के साथ करने में भी एक नई शुरुआत लगती है। तो बताइए आप कौन सी छोटी चीज़ बेहतर करना चाहते हैं, सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि क्या होता है कि सोचने से आपका मन ये कहता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ आज, और यही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। आपने कभी महसूस किया है कि किसी काम में शुरुआत में तो बहुत मज़ा आता है लेकिन कुछ दिनों बाद ना वही काम बोझ लगने लगता है, ऐसा हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो हुआ है कभी कभी। फिर चाहे वो जिम जाना हो मतलब, या फिर आप व्यायाम

काम कर रहे हैं, टहल रहे हैं, हर रोज ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं। नई भाषा सीखना हो या फिर सुबह जल्दी उठने की आदत ही क्यों ना बनानी हो। शुरुआत में तो लगता है बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है, इनकरेजमेंट भी होता है, मोटिवेशन भी होती है, पर धीरे धीरे वही कम होने लगता है। तो आखिरकार ये जो उत्साह होता है, ये जो हमारे अंदर एक मोटिवेशन होती है हर रोज कि आज से जो मैंने संकल्प लिया है वो मैं कंटिन्यू करूँगा, वो कंसिस्टेंसी आखिरकार कहाँ चली जाती है। तो आप इस उत्साह को ना कैसे बनाए रख सकते हैं, इसी पर ही आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि शायद ना इसका जवाब आपकी सोच से ना कहीं ज़्यादा आसान है। इसलिए सुनते रहिए 102.6 FM, क्योंकि बात यही हो रही है कि इस उमंग, इस उत्साह, वो जो कम पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, डल पड़ जाता है, और धीरे धीरे समय के साथ वही चीज़ उतनी एक्साइटिंग नहीं लगती, तो उसी उमंग और उत्साह को कैसे बनाए रखें, यही तो हम और आप आज बात कर रहे हैं। और इसी बात के साथ तो बात बन रही है, और सुप्रभात में एक नई शुरुआत मेरी और आपके साथ हो रही है।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: तो लक्ष्य बनाना बहुत आसान है, लेकिन उस पर टिके रहना बहुत मुश्किल। हमसे ज़्यादातर लोगों का उत्साह ना कुछ दिनों में फीका पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम या तो बहुत मुश्किलें देखकर निराश हो जाते हैं, या बहुत आसान काम करके ऊब जाते हैं। और यहीं पे काम आता है एक प्रिंसिपल है, बताऊं उसका नाम गोल्डिलॉक्स नियम। ये नियम आपको बताता है, यानी कि ये रूल आपको बताता है कि जो ह्यूमन का दिमाग है ना, उसको प्रेरित रखने के लिए उसको एक चुनौती की जरूरत होती है। वो ना बहुत कठिन हो और ना ही बहुत आसान। होता क्या है कि हमारा जो मस्तिष्क होता है वो चुनौतियों को पसंद करता है, चैलेंजेस को पसंद करता है, लेकिन तब तक जब तक वो किसी कठिनाई के एक पर्टिकुलर पैरामीटर पर हो। मान लीजिए आपको टेनिस खेलना बहुत पसंद है, हाँ, यदि आप 4 साल के बच्चे के खिलाफ खेलेंगे तो बताइए आपको अच्छा लगेगा? आप जल्दी उब जाएंगे, आपको लगेगा ये तो मेरे बराबर का ही नहीं है। खेल इतना आसान होगा कि हर अंक आप ही जीत रहे होंगे। फिर दूसरी ओर क्या होगा, यदि मुकाबला किसी प्रोफेशनल खिलाड़ी के साथ आपका हो जाए तो भी आपका उत्साह जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि चुनौती आपके बराबरी की हो तो आपको मजा आता है। आप कल्पना कीजिए कि आप अपनी बराबरी के खिलाड़ी के साथ खेल रहे हैं, कभी आप अंक जीतते हैं और कभी हारते हैं। जीतने की संभावना तो बनी रहती है ना, लेकिन तभी जब आप उस पर पूरा प्रयास करें, पूरी मेहनत करें। ऐसी स्थिति में आपका ध्यान पूरी तरह उस खेल पर सेंटर्ड हो जाता है, आसपास की चीजें आपके लिए उतनी मायने नहीं रखती। देन यू जस्ट वॉन्ट टू विन दैट गेम, बिकॉज जो आपके सामने खड़ा है वो कहीं ना कहीं आपको एक चुनौती पेश कर रहा है जिसको आप चैलेंज करना चाहते हैं, और फिर आप उस पूरे काम में डूब जाते हैं। यही है वो उचित चुनौती की स्थिति, और यही होता है गोल्डिलॉक्स का रूल। और ये नियम कहता है कि इंसान सबसे ज्यादा प्रेरित, सबसे ज्यादा इनकरेज्ड तब महसूस करता है जब वे ऐसे काम कर रहा हो जो उसकी वर्तमान यानी कि करंट क्षमता की सीमा को हल्की सी भी चुनौती दे रहा हो, बस उतने ही कठिन जितना होना चाहिए। तो ना ज्यादा बहुत मुश्किल, ना बहुत आसान। तो उत्साह बनाए रखने के ये कुछ फ्यू ट्रिक्स हैं जिसको आप अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं, एंड यू कैन लिव अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल लाइफ।

वक्त हो चला है 6:37, और पता है आप सभी को एक पढ़ने का शौक होगा, मुझे भी पढ़ने का शौक है। तो मैंने हाल ही में स्टीव मार्टिन, जो कि अमेरिकन कॉमेडियन और एक्टर हैं, उनकी एक बायोग्राफी पढ़ी, बॉर्न स्टैंडिंग अप। तो मार्टिन की कहानी में एक दिलचस्प कहानी थी, और वो कह रहे थे कि अपनी आदतों पर हम कैसे टिके रह सकते हैं, और ये आज के उत्साह वाली कहानी से बड़ा मेल खाता है। तो वो कहते हैं कि 10 साल सीखने में, 4 साल खुद को तराशने में, और 4 साल असाधारण सफलता हासिल करने में लगे उनको। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोग अपने आदतों पर वो टिके नहीं रहते? तो होता क्या है कि बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां आप अपनी जिस संकल्प को आपने शुरू किया उसको आप शुरू नहीं कर पाते, या फिर बीच में छोड़ देते हैं। तो होता क्या है कि आप कुछ ऐसी आदतों को ना बनाएं जो आपको हमेशा एक्साइट करें, आकर्षित करें। और होता क्या है कि हम कब प्रेरित बने रहते हैं? जब हमें उस काम करने में इंटरेस्ट आता है जो आपकी क्षमता के ठीक आसपास आपको चुनौती भी देता है, यानी कि आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे लायक है, इसको मैं कर सकता हूँ। तो ना वो बहुत आसान हो, ना वो बहुत कठिन हो, तो आप कुछ ऐसी चुनौतियों को ज़रूर ले सकते हैं अपने साथ और फिर आगे बढ़ सकते हैं। और होता क्या है ना कि यदि आप लंबे समय तक प्रेरित बना रहना चाहते हैं ना, तो मेहनत और खुशी, इसके बीच भी बहुत बड़ा बैलेंस ज़रूरी है। आप हार्ड वर्क करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन आपको खुशी नहीं मिल रही, वो खुशी मिलना भी बड़ा ज़रूरी है। तो उस फ्लो को मेंटेन रखने के लिए आपको उस हार्ड वर्क के साथ, मोटिवेटेड रखने के साथ, आपको हैप्पीनेस की भी बड़ी ज़रूरत हो जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी व्हेन यू आर डूइंग अ वर्क दैट मोटिवेट्स यू, दैट मेक्स यू हैप्पी। और काम वही अच्छा लगता है जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो एक फ्लो जो है ना, ये एक हमारी साइकोलॉजिकल अवस्था है। क्या करता है कि जब हम किसी काम में डूब जाते हैं तो दुनिया हमें गायब सी लगने लगती है, फिर चाहे वो खिलाड़ी हो, कलाकार हो, या कोई भी हो, एक जोन हो जाता है उसका, और उस जोन में वो चला जाता है। और इसी को कहते हैं कि आपको वो काम अच्छा लगने लग गया है। ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है जब हम आगे बढ़ते हैं। और आप बताइएगा ना, वो कौन सी छोटी सी जीत है जिस पर आपको कहीं ना कहीं वो प्राउड फीलिंग होती है, वो लगता है कि ये मैंने काम अचीव कर लिया, फिर चाहे वो छोटी छोटी चीज़ों में हो। शायद आपने चीनी कम कर दी हो, शायद रोज टहलना शुरू कर दिया हो, शायद किसी पुरानी आदत पर काबू पा लिया हो। ये छोटी छोटी जीत ना बड़ी बड़ी कहानियां बन जाती है, और यही कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। आपको एक बात बताऊं, एक कहानी है, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी, यहाँ सुनिएगा। एक लड़का गिटार सीख रहा था। पहले दिन उसने सोचा कि 6 महीने में मैं मंच पर प्रस्तुति दे दूंगा, इतना अच्छे से सीखूंगा, इतना हार्डवर्क करूंगा। 3 दिन बाद उसका उत्साह खत्म हो गया। फिर उसने अपने टीचर के पास गया और बोला कि आज टीचर जी, मेरा ना उत्साह कम होता जा रहा, मेरा गिटार सीखने में मन नहीं लग रहा। तो टीचर ने उससे कहा कि आज सिर्फ ना आप एक कार्ड सीखो, गिटार में कार्ड्स होते हैं, तो आज आप एक सीखो, बस एक। अगले दिन एक और। 1 महीने बाद वही लड़का रोज प्रैक्टिस करने लगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्य छोटा था लेकिन प्रोग्रेस दिख रही थी, प्रगति दिख रही थी। हमारी ना जिंदगी भी कुछ ऐसे ही है, बड़े सपने जरूरी हैं लेकिन रोज की छोटी छोटी जीतें उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। हाँ, तो इन्हीं जीतों के साथ आप जिए और इस खूबसूरत सुबह को और भी खूबसूरत बनाइए। 102.6 FM के साथ सुनते रहिए, एक और बेहतरीन गाना आपके लिए आ रहा है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: सुप्रभात, 102.6 FM सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ भावना। आपने कभी ध्यान दिया है कि हम अपने बड़े सपनों की तुलना दूसरों से करते हैं और फिर निराश हो जाते हैं? लेकिन अगर तुलना करनी है ना, तो कल वाले खुद से कीजिए ना, जो आप थे, जो आज आप निराश हो गए। आपको लगा नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो ये नहीं कर सकती। क्या आज आप थोड़ा ज़्यादा शांत हैं, थोड़ा ज़्यादा धैर्यवान हैं, पेशेंस ज़्यादा नज़र आ रही है आपको अपने में, थोड़ा ज़्यादा समझदारी लग रही है? तो समझ जाइए कि अगर आपको ये सब लग रहा है ना, तो प्रोग्रेस इज ऑलरेडी स्टार्टेड, बिकॉज कभी कभी खुद को जान लेने में ही वो प्रोग्रेस होती है। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता हम किस राह पर गलत चल रहे हैं। तो बस जब आप खुद से बातें करते हैं, और यही सबसे बेस्ट समय होता है, मेरा और आपका जो बेस्ट समय अब चल रहा है ना, यही समय है, सही समय है। और दुनिया की दौड़ में नहीं, अपनी यात्रा में आगे बढ़ने आई ना, सबसे बड़ी जीत होती है। और एक छोटा सा काम आप कर लीजिएगा आज, किसी व्यक्ति को आपने अगर सोचा कि उसने आपके लिए कुछ किया, तो एक ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए, धन्यवाद कर दीजिए। फिर चाहे वो आपका कॉलीग हो, दोस्त हो, घर का कोई सदस्य क्यों ना हो, आप हैरान हो रह जाएंगे। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप हैरान रह जाएंगे कि एक छोटा सा थैंक यू, एक छोटा सा धन्यवाद ना, सामने वाले के साथ साथ आपके दिन को भी बेहतरीन बना देगा। उत्साह ना सिर्फ लक्ष्य से नहीं मिलता, लोगों से भी मिलता है। लोगों से बातचीत करने में, या फिर उन्होंने आपके लिए कभी एक छोटी सी कोई एक चीज़ की हो और आपने थैंक यू करना भूल गए हो, आपको लगा कल नहीं किया, चलो छोड़ो आज कर देते हैं, ये भी तो है ना उत्साह। तो होता क्या है कि हम फ्लो की अवस्था, जिसकी हम बोल रहे हैं कि हम फ्लो तक पहुंचना चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हर कदम पर हमें ये महसूस होना चाहिए कि हमारी प्रगति हो रही है। अब जिस स्टीव मार्टिन की बात कर रही थी, जो कॉमेडियन है, उन्होंने जो अपनी बायोग्राफी में लिखा, वो ये लिखा कि जब वो कॉमेडी करते थे और सामने वाले अगर अप्लॉज करते थे, तालियां बजाते थे या हंसते थे, तो वो उनके लिए एक मोटिवेशन होता था, और फिर वो उन्हें और मेहनत करने की अब मोटिवेशन देता था, आगे बढ़ने की और सफलता प्राप्त करने के लिए। तो वो और मेहनत करते थे, और मेहनत करते थे, और तैयारी करते थे। ऐसे ही अगर दूसरे सेक्टर्स की भी बात करें, फिर चाहे वो बिजनेस हो, बिजनेस में अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है तो आपको वो मोटिवेट करेगा। अगर सेहत का क्षेत्र ही क्यों ना, अगर आपका वजन से आपको कोई दिक्कत है और वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो अगर उसमें आपको कोई प्रोग्रेस दिख रही है, तो आपका और मन करेगा कि हम इस पर और मेहनत करें। तो ये जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, वो हमें प्रेरित करता रहता है। जब हमें ये छोटी छोटी जीत मिलती हैं कि हम और आगे बढ़ें, और अगर नहीं वो जीत मिल पा रही है, तो फिर कौन सा तरीका अपनाएं, ये भी हमें खुद ही से पूछना होता है। तो सही दिशा में हो रही अपनी छोटी छोटी जीत को देखना ना बहुत ज़रूरी है। इसी छोटी छोटी जीत को आप इंजॉय करिए, और हमारी और आपकी बातचीत तो लगातार चल ही रही है, इसमें तो कोई दोराय नहीं है, क्योंकि आपकी और मेरी बातचीत जब चलती है ना, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं, और बहुत सारी बातों में फिर बहुत सारी बातें ऐसी निकलती हैं जो दिन की शुरुआत को और खूबसूरत बना देती है।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 एफएम, मेरे साथ यानी भावना के साथ। और ये समय हो गया है आपसे कहने का कि एक घंटे बाद फिर आपसे होगी मुलाकात। लेकिन जाने से पहले ना, मैंने एक अपने घर जो अपने मेरे माली आते हैं उनसे पूछा है कि क्या हो रहा है आजकल ना, सभी पौधों में फूल ही नहीं खिल रहे। तो हम मुस्कुरा कर बोले, क्योंकि हर फूल का ना अपना समय होता है। जीवन भी कुछ ऐसा है दोस्तों, किसी की सफलता जल्दी दिखाई देती है तो किसी की सफलता थोड़ी देर में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। कीप ऑन ट्राइंग एंड यू विल अचीव योर सक्सेस। अब बस यही इंतज़ार कि आप मेहनत करते रहें और आप याद रखें कि आज आप पूरी दुनिया नहीं बदल सकते हैं, बस अपने दिन में एक छोटा सा हिस्सा बेहतर ज़रूर कर सकते हैं। फिर चाहे वो छोटी सी मुस्कान हो, एक छोटा सा प्रयास हो या फिर एक छोटी सी जीत, क्योंकि अक्सर बड़ी सफलताओं की शुरुआत इन्हीं छोटी बातों से होती है। इसी के साथ अगले एक घंटे बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। गुड मॉर्निंग जलिए एनसीआर में, सुनते रहिए 102.6 एफएम, क्योंकि यही है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन और यही होती है दिन की सबसे अच्छी शुरुआत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली

औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज दम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इस बेहद ही खूबसूरत से गीत के साथ शुरुआत हो चुकी है इस प्रोग्राम की, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर, आपके दोस्त आर्यन निखिल के साथ में। और जब हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में क्या है आपके लिए। तो भाई आज है 9 जून और आज का दिन कई मायनों में खास है। आपको बता दें कि वर्ष 1720 में आज के दिन ही स्वीडन और डेनमार्क के बीच तीसरी स्टॉकहोम संधि पर हस्ताक्षर किए गए। आज के दिन ही वर्ष 1815 में लग्जमबर्ग फ्रांसीसी कब्जे से आज़ाद हुआ था। वर्ष 1931 में डोनाल्ड डक कार्टून पहली बार प्रदर्शित किया गया था आज के दिन। वहीं 1940 में आज के दिन ही द्वितीय विश्व

मुक्त घोषित किया गया था। और वहीं 2008 में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने आज के दिन ही 9वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार समारोह में फिल्म चक दे इंडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता था। तो ये थी ऐसी प्रमुख घटनाएं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपनी खास पहचान दर्ज की हुई। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो 102.6 चैनल और मैं हूं आपका दोस्त आरजे निखिल, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। एक और ब्यूटीफुल सा ट्रैक आपके लिए।

अभिलेख दिवस जो कि हर वर्ष 9 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अभिलेखों यानी कि जिसे हम आर्काइव्स बोलते हैं उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक दस्तावेजों के संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। आपको बता दें कि ये दिन जो है ये 9 जून 1948 को स्थापित इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव जिसे ICA भी हम बोलते हैं उसकी स्मृति में मनाया जाता है। कोई भी रिकॉर्ड या अभिलेख किसी देश संस्था या समाज के इतिहास निर्णयों और उपलब्धियों का एक तरह से महत्वपूर्ण प्रमाण होता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए ज्ञान तथा शोध को आगे ले जाने के लिए एक मूल्यवान स्रोत भी हमें प्रदान करता है। और ये ऐसी चीज़ है जो हमें कह सकते हैं कि अपने अभिलेखों के प्रति जानकारी बढ़ाने, सूचना इधर से उधर पहुंचाने और कई सारी चीज़ों को एक साथ लाने का एक अवसर भी प्रदान करता है। और इस दिन कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। और आज के दौर में जब हम डिजिटलीकरण की बात कर रहे हैं तो हमारे बहुत से डेटा जो हैं, बहुत से जो हमारे कह सकते हैं कि रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें डिजिटल करके काफ़ी हद तक सुरक्षित किया जा रहा है और किया जा चुका है। यदि आपके पास भी ऐसा कोई भी डेटा है जिसे लगता है कि दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, जो दूसरों तक जाए, तो उसे भी आप डिजिटल बना करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल एक और ब्यूटीफुल सा ट्रैक आपके लिए है।

नहीं, दिल लगाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन दिल की सुनना, दिल की करना, वो शायद आसान होता है। इसीलिए कुछ ऐसे काम भी हम कर लेते हैं जो हमारे दिल को बहुत ही अच्छे लगते हैं। जिस तरह से हमारा दिल ये कह देता है कि हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक बजाएं और बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाएँ। तो श्रोताओं, बता दें आपको कि आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: और श्रोताओं, अब समय है जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो आपको बता दें कि आज पुण्यतिथि है बिरसा मुंडा की, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान आदिवासी नेता, समाज सुधारक और जननायक के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने ब्रिटिश शासन और जमींदारी शोषण के विरुद्ध आदिवासी समुदाय को संगठित किया और महाविद्रोह का नेतृत्व किया। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को अपने अधिकारों, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया और उन्हीं की लोकप्रियता के कारण उन्हें धरती आबा यानी धरती पिता के नाम से भी जाना जाता है। 9 जून 1900 को रांची की जेल में उनका निधन हुआ, लेकिन उनका संघर्ष और बलिदान आज भी सामाजिक न्याय और आदिवासी अधिकारों की प्रेरणा बना हुआ है। और श्रोता, आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं हरि किशन सरहदी को, उनकी भी आज पुण्यतिथि है। वे भारत के एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाने जाते हैं। भगत सिंह के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन में लगातार सक्रिय रहे। 23 दिसंबर 1930 को उन्होंने पंजाब के गवर्नर सर ज्योफ्री डी मॉन्ट मॉरिसी पर गोली चलाकर ब्रिटिश दमन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया और फिर 9 जून 1931 को मियांवाली जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में साहस, देशभक्ति और क्रांतिकारी भावना का प्रतीक माना जाता है। फिलहाल लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर आप के लिए गाना और बातें होंगी और भी आप बने रहें रेनबो पर।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: पानी पानी पानी पानी से जीवन हमारा, कैसे बचाएं इसको मिलकर सोचे जरा। पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाएं इसको सबके लिए। दोस्तों, तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है, हमारे तालाबों को बचाना है, तालाबों की रखरखाव की जिम्मेदारी लें, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
6: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

बहुत ही खूबसूरत से स्ट्रैक को आप सुन रहे थे आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर, और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग गलियन से, और आपके दोस्त आज निखिल के साथ में। और अब कुछ और जानी मानी हंसियों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम याद कर रहे हैं राज खोसला साहब को। वे 1950 से 1980 के दशक तक हिंदी फिल्मों के शीर्ष निर्देशक, निर्माणकर्ता और पट कथाकारों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने कई सारी यादगार फिल्में दी, जिनमें CID, वो कौन थी, मेरा साया, दो रास्ते और दोस्ताना प्रमुख है। उनकी फिल्में खासतौर पर रहस्य, रोमांच और सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्मों के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं। राज खोसला ने अपनी अनूठी निर्देशन शैली और सशक्त कहानी कहने की कला के माध्यम से हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयां प्रदान की जाती हैं। वे हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली निर्देशकों में से गिने जाते हैं। उन्होंने मजबूत कथानक दिया, यादगार संगीत दिया और भावनात्मक प्रस्तुति भी दी थी, और भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के कारण उन्हें आज भी एक दूरदर्शी, प्रतिभाशाली निर्देशक के रूप में याद किया जाता है। और श्रोताओं को बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं असद भोपाली को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उन्हें ऐसे गीतकारों में शुमार किया जाता है जिन्होंने 40 वर्षों तक लंबा काम किया। दुनिया, अफसाना, बरसात, पारसमणि, आया तूफान, मैंने प्यार किया जैसे फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे थे। और आपको बता दें कि फिल्म मैंने प्यार किया के गीत कबूतर जा जा जा के लिए उन्हें प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी फिल्मों के लिए भी गीत लिखा था।

और असद भोपाली की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें एक उत्कृष्ट शायर के रूप में भी लोग जानते हैं। मैं खुश नसीब हूँ हम तुम जुदा हो के, अच्छा जी मैं हारी चलो जैसे जो गीत हैं वो उन्हीं के लिखे हुए हैं। और 1980 के दशक तक उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए ऐसे गीत लिखे जिन्होंने फिल्म उद्योग में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई थी। उन्होंने अनेक प्रसिद्ध संगीतकारों और गायकों के साथ काम किया और हिंदी फिल्म संगीत को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अपने मधुर और यादगार गीतों के कारण असद भोपाली का नाम हिंदी फिल्म संगीत के प्रमुख गीतकारों में आज भी बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है।

और श्रोता आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं वसंत देसाई को, जिनकी आज जयंती है। वे हिंदी और मराठी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत को फिल्म संगीत के साथ जोड़कर एक विशिष्ट शैली विकसित की थी और प्रारंभ में प्रभात फिल्म कंपनी से जुड़े, उसके बाद कई प्रतिष्ठित फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई ने झनक झनक, पायल बाजी, दो आंखें, बारह हाथ, गुड्डी और आशीर्वाद जैसे फिल्मों के लिए यादगार संगीत रचा। और आपको बता दें कि उनके द्वारा संगीतबद्ध किया गया गीत ऐ मालिक तेरे बंदे हम आज भी काफी लोकप्रिय और प्रेरणादायक माना जाता है। उन्होंने संगीत को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि संस्कृति और मूल्यों को व्यक्त करने का माध्यम भी माना और यही वजह है कि भारतीय फिल्म संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान को बहुत ही ज्यादा सम्मान प्राप्त हुआ था। और श्रोताओं आपको बता दें कि आज ही जयंती है अजीत शंकर चौधरी की, जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, संस्मरणकार और समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को नई संवेदनशीलता और अभिव्यक्ति प्रदान की। उनकी रचनाओं में सामान्य जनजीवन, मानवीय संघर्ष, सामाजिक यथार्थ और गहन चिंतन की झलक मिलती है। आपको बता दें कि उनके प्रमुख काव्य संग्रहों में अकेले, कंठ की पुकार, अंकित होने दो, ये फूल नहीं, घरौंदा, हिरनी के लिए और घोंगे और ऊसर शामिल हैं। और आपको बता दें कि वे प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन के काफ़ी सहयोगी रहे और बच्चन रचनावली का संपादन तथा बच्चन निकट से पुस्तक का संयोजन भी किया था। फिलहाल एक और खूबसूरत सा गीत आपके लिए

0: और शो तो आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं बंदा सिंह बहादुर को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वे सिख इतिहास के महान योद्धा, सेना नायक और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। वे वैरागी साधु बने और माधोदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वर्ष 1708 में उनकी भेंट गुरु गोविंद सिंह जी से हुई थी, जिन्होंने उन्हें सिख धर्म और न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष का दायित्व सौंपा। इसके बाद उन्हें बंदा सिंह बहादुर नाम दिया गया। आपको बता दें कि उन्होंने मुगल शासन के अत्याचारों के विरुद्ध सिखों का नेतृत्व किया और वर्ष 1710 में सरहिंद पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने किसानों को भूमि के अधिकार दिलाने, जमींदारी शोषण को समाप्त करने और सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए और उनके शासन में गरीब तथा वंचित वर्गों को विशेष महत्व मिला था। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पर आपसे बातें होंगी और भी। आप बने रहे हमारे साथ रेनबो पर।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक, रेनबो 102.6 पर।

हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2007 में फिल्म सांवरिया से की थी, जिसे संजय लीला भंसाली ने निर्देशित किया था। उसके बाद उन्हें 2010 में आई हेट लव स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने रांझना, नीरजा, प्रेम रतन धन पायो और वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया था। और आपको बता दें कि आज ही जन्मदिन है अमीषा पटेल का, जो कि एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु फिल्मों भी में भी काम किया था। और आपको बता दें कि गदर एक प्रेम कथा में सनी देओल के साथ उन्होंने काम किया। वर्ष 2001 में ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने हमराज, भूल भुलैया और गदर 2 जैसी फिल्मों में भी काम किया। और सबसे पहले उन्होंने वर्ष 2000 में सुपरहिट फिल्म कहो ना प्यार है से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ डेब्यू का पुरस्कार भी दिया गया था। तो फिलहाल उन्हीं की फिल्म का एक गीत हम आपके लिए प्ले करते हैं, इसे आप एंजॉय कीजिए आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी लेकर हाजिर हूँ आपकी अपनी दोस्त 102.6 FM पे। आपकी अपनी भावना, सुबह ठीक 8 बज चुके हैं। सुप्रभात दिल्ली, सुप्रभात नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पूरे NCR को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह के क्योंकि ये 8 बजे हैं, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। 9 जून 8 बजे मंगलवार का दिन, मंगलमय हो, खूब मंगल आप करें और नई उम्मीदें और नई जिम्मेदारियों के साथ ये जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है ना, नई खुशियाँ, खोल लीजिए दरवाजे और इन खुशियों को अपना लीजिए अपने साथ। क्योंकि ये जो वक्त होता है, यानी सुबह 8 बजे का वक्त होता है, कहीं रसोई में नाश्ते की खुशबू पूरे घर में फैल रही होती है, कहीं पराठे बन रहे होते हैं तो कहीं हेल्दी ब्रेकफास्ट बन रहा होता है, हालांकि पराठों को भी हेल्दी बनाया जा सकता है, कहीं टिफिन बन रहे हो रहे होते हैं, कहीं मम्मियाँ बच्चों को याद दिला रही हैं कि छुट्टियाँ हैं लेकिन मोबाइल पर नहीं लगे रहना है, कहीं ऑफिस जाने की जल्दी होती है, कहीं मेट्रो पकड़ने की तैयारी हो रही होती है और कहीं कोई आराम से चाय की प्याली लेकर अखबार के पन्नों को पलटकर हमारी आवाज़ के साथ सुबह को और थोड़ा खूबसूरत बना रहा होता है। बाहर जून की गर्मी अपना भरपूर फुल टोन में असर दिखा रही है, सूरज आग उगल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, सुबह सुबह ही बता रहा है कि मैं आ चुका हूँ और मैं आज पूरे दिन तपने वाला हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, मौसम चाहे जितना भी गर्म हो ना, हमारे दिलों की ठंडक बनी रहेगी और ये दिलों की ठंडक ही हमें एक दूसरे के करीब लाती है और यही कोशिश रहेगी अगले एक घंटे तक। क्योंकि दोस्तों, वीक अभी शुरू हुआ है और वीकेंड दूर है, काम पर जाना है, सपनों को आगे बढ़ाना है और परिवार के लिए मेहनत करनी है, अपने लिए मेहनत करनी है, लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करनी है। और जैसा कि कहा जाता है ना, 2 जून की रोटी, ये जो जून चल रहा है ना, इसमें 9 जून की रोटी के लिए हम सबको घर से बाहर निकलना पड़ता है और मेहनत करनी होती है। दोस्त, इस सफ़र में आप अकेले नहीं हैं, मैं और आप साथ साथ चलेंगे ना, हाथ में हाथ मिला के, कंधों से कंधे मिला के, ट्रैफिक सिग्नल से लेकर ऑफिस डेस्क तक, रसोई से लेकर ड्राइंग रूम तक और मेट्रो के सफ़र से लेकर आपकी कार की सीट तक, अगले एक घंटे तक के साथ साथ सफ़र चलेगा। मैं हूँ आपकी दोस्त भावना और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, नए फ्लेवर और नए कलेवर के साथ। सुनते रहिए 102.6 FM।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
4: आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, कार्यक्रम चल रहा है आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम, और जहां बातें होती हैं बहुत सारी। और अगर आपको आज की बात बताऊं और आज के मौसम का हाल बताऊं, तो आज और कल तो आपको गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है, और अभी से ही गर्मी महसूस होने लग गई है क्योंकि जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में बहुत गर्मी होती है। लेकिन एक अच्छी खबर आपको दे दूं कि इसके बाद, यानी कि दो दिन के बाद, मौसम विभाग ने कहा है, IMD ने कहा है कि आंधी बारिश की वजह से मौसम एक बार फिर सुहावना हो सकता है। यानी अगर आज गर्मी है तो दो दिनों में आपको मौसम करवट बदलता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। अगर आज की बात करें तो आज मैक्सिमम टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवाएं तेज़ रहेंगी लेकिन ये गर्म और शुष्क रह सकती हैं। और साथ ही अगर आपको कल की मौसम की भी अपडेट देते तो कल भी कहीं ना कहीं 43 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है, यानी गर्मी बहुत रहने वाली है। और गर्मी रहेगी तो आपको अपना ध्यान भी यहाँ रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हीट वेव या लू ना लग जाए इसके लिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। आपको मैं बताऊंगी कि कौन सी ऐसी आप देसी ड्रिंक्स पी सकते हैं जिससे आपको ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस हो सकता है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये वक्त ऑफिस जाने का हो रहा है और कई लोग इस समय ऑफिस निकल रहे होते हैं, तो ये जानकारी जो मैं अभी आपको देने जा रही हूँ वो आपके लिए बेहद ज़रूरी हो सकती है, क्योंकि जब आप निकलेंगे और आपको अगर ट्रैफिक मिल गया। लेकिन उससे पहले अगर आप हमको सुन रहे हैं और आपने ये जान लिया कि कहां कहां ट्रैफिक लग सकता है और कहां कहां काम चल रहा है, तो आप इस ट्रैफिक से बच सकते हैं। तो मेरे दोस्तों आप सुन लीजिए, फैज रोड से रानी झांसी फ्लाईओवर तक अगर आप जा रहे हैं तो वहां एक केबल बिछाने का काम चल रहा है और 8 जून से लेकर 18 जून तक ये जारी रहने वाला है, जिसके कारण ये जो पूरे कॉरिडोर पर ट्रैफिक की जो रफ्तार है ना, वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ सकती है। लेकिन धीमी पड़े उससे पहले आप ये जानकारी हासिल कर लें, लेकिन उसके साथ ये भी जान लें कि आप कौन कौन से रूट्स यहाँ ऑल्टरनेट रूट्स अपना सकते हैं। सुबह 8 से 11 बजे तक और शाम 5 से 9 बजे तक काफ़ी जाम रहने की संभावना है यहाँ पे। तो अगर आप फैज़ रोड, ईदगाह राउंड अबाउट या फिर रानी झांसी फ्लाईओवर की ओर जाते हुए रास्ते पर कोई प्लान बना रहे हैं तो घर से थोड़ा पहले निकलना बेहतर होगा। साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव रूट्स की बात करें तो सेंट्रल और न्यू दिल्ली से नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट दिल्ली जाने वाले यात्री पूसा रोड, लिंक रोड और वंदे मातरम मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं करोल बाग से कश्मीरी गेट या फिर सिविल लाइन्स जाने वालों को न्यू रोहतक रोड, आज़ाद मार्केट फ्लाईओवर या फिर पुल बंगश मार्ग लेने की सलाह दी गई है। तो ये कुछ ट्रैफिक अपडेट्स हैं जो आपको जाननी बड़ी ज़रूरी होती हैं घर से निकलने से पहले, क्योंकि अगर ये पता चल जाए तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर समय से पहुंच जाते हैं और फिर हो जाती है आपकी एंट्री, जैसे हमारी एंट्री हो चुकी है वैसे ही आप भी मार लीजिए अब एंट्री।

0: तो एंट्री तो हो चुकी है हमारे और आपकी, लेकिन दोस्तों आपसे आज एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जरा याद कीजिएगा वो कौन सा गाना जिसे सुनते ही आप सीधे अपने स्कूल के दिनों में पहुंच जाते हैं, या फिर कॉलेज की कैंटीन, पहले दोस्ती, पहली मोहब्बत, या किसी पुराने सफर की याद ताज़ा हो जाती है। दिलचस्प बात पता ही है कि आज की जो पीढ़ी है ना, यानी कि आज की जो जेनरेशन है, वो उन्हीं गानों पर झूम रही है। फर्क बस इतना है कि वो उन्हें रेडियो कैसेट या सीडी पर नहीं, बल्कि रील्स और शॉर्ट्स पर वे गाने खोज रहे हैं। पुराने गाने एक बार फिर ट्रेंड कर रहे हैं और बॉलीवुड भी इस नॉस्टैल्जिया को बड़े पर्दे पर वापस ला रहा है। 80 की दशक, 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों के गीत नई बीट्स, नए साउंड और नए अंदाज के साथ लौट रहे हैं। लेकिन सवाल हमेशा ना एक बना रहता है और कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट भी बना रहता है कि क्या रिमिक्स सचमुच पुराने गानों को नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, या फिर ओरिजिनल का जादू ओरिजिनल ही होता है, वही ओजी होते हैं। मम्मा पापा या फिर बच्चे एक ही गाना अगर गुनगुनाने लगे ना दोस्तों, तो समझ लीजिएगा कि संगीत ने अपना काम कर दिया और हम भी वही काम कर रहे हैं। तो श्रोतागण आप बताइएगा कि आपकी पसंद क्या है, ओरिजिनल या रिमिक्स, और कौन सा पुराना गाना है जिसे आज आप भी वो वॉल्यूम बढ़ाकर सुनते हैं। फिलहाल इस नॉस्टैल्जिया की लहर पर सवार होते हैं और सुनते हैं कैसा गाना जिसने पुराने दौर की यादों को नए अंदाज में फिर से जिंदा कर दिया। सुने, चलिए सुनते हैं।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

तो दोस्तों आप भी हाथ उठाकर बताइएगा, और या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइएगा 9868107070 पर, जब आपका कोई पसंदीदा पुराना गाना नए अंदाज में सुनाई देता है तो आपका रिएक्शन क्या होता है? आप कहते हैं वाह क्या रीमिक्स है, या फिर अरे यार ओरिजिनल ही बेहतर था? क्योंकि ना आपकी पसंद तो आपकी पसंद है और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को ओरिजिनल पसंद है तो किसी को रीमिक्स पसंद है। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और ये जो पुराना जादू है ना उसको नए अंदाज में पेश करने की जो आज की पीढ़ी पसंद कर रही है उसके साथ आगे बढ़ते हुए अब जो दौर है वो चल रहा है एआई का दौर, तकनीक का दौर। और ये सिर्फ हमारी ज़िंदगी को आसान नहीं बना रहा बल्कि इतिहास और विरासत को भी हमारे और करीब ला रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने बीते कुछ सालों में ना दुनिया में नए अनुभव दिए हैं, और अब इसी तकनीक का इस्तेमाल देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृतियों को एक नए रूप में सहेजने के लिए किया जा रहा है। जरा सोचिए हाँ कि अगर आपको अटल जी के विचार, उनकी कविताएं, उनके राजनीतिक जीवन या देश के विकास को लेकर अगर उनकी सोच के बारे में आपसे कोई पूछा जाए तो, या फिर आप उनसे कोई सवाल पूछने का आपको मौका मिले तो आपको कैसा लगेगा? जल्द ही प्रधानमंत्री संग्रहालय जो नई दिल्ली में स्थित है में आने वाले कुछ दिनों में होगा क्या कि आपको कुछ ऐसा ही अनुभव मिलने वाला है। यू वुड एक्सपीरियंस अटल बिहारी वाजपेयी स्पीकिंग, यस बट थ्रू एआई। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी का एआई आधारित 3D डिजिटल अवतार तैयार किया जा रहा है, तो होगा क्या कि उनके भाषण, उनके लेख, कविताएं और ऐतिहासिक जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर लोगों के सवालों के जवाब देने का ये एआई 3D मॉडल प्रयास करेगा। ऐसे ही एक और 3D मॉडल महात्मा गांधी का पहले ही वहां पर मौजूद है, जहां आप गांधी जी से उनके एआई 3D मॉडल से उनसे सवाल पूछ सकते हैं और बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और जब गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो ऐसी जगह जाकर अपने बच्चों को अपना देश का इतिहास बताना, देश के उन महान व्यक्तियों के बारे में बताना, उन विभूतियों के बारे में बताना जिन्हें, जिनसे वो प्रेरणा ले सकते हैं और उनके जो विचार हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक है ना। तो तकनीक के इस नए और दिलचस्प प्रयोग ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बदलते समय के साथ इतिहास को संजोने और नई पीढ़ी तक पहुंचने के तरीके ज़रूर बदल रहे हैं, लेकिन ये जो अनोखी पहल है ना वो लोगों तक अपनी पहुँच बना रही है और जोड़ने का काम भी कर रही है। सुनते रहिए 102.67, स्टे ट्यून्ड।

बिल्कुल लाइफ सही है, क्योंकि इरादे मजबूत होना तो मंजिल दूर नहीं लगती। एक कहानी आपको बताने वाली हूँ, सच्ची कहानी है, क्योंकि ये कहानी बताए बिना ना मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो अखबार के कुछ छोटे से एक कॉलम की एक स्टोरी बनकर रह सकती है, लेकिन आपको बहुत प्रेरणा दे सकती है। और अगर दिन की शुरुआत हो रही हो ना, तो ऐसी कहानी सुन लीजिए, आपको एक दिन की एक किक मिल जाती है। जैसे कार को एक किक चाहिए होती है चलने के लिए, वैसे जिंदगी को भी एक किक चाहिए होती है। तो आज की कहानी ना एक बहुत ही जीता जाता उदाहरण है। जिस क्षेत्र में क्या होता है कि कभी पुरुषों का गढ़ माना जाता था, समझ गए होंगे, वहां आज महिलाएं ना सिर्फ केवल कदम रख रही हैं, बल्कि अपनी मेहनत, लगन और काबिलियत से नई मिसालें भी कायम हो रही हैं। नेपाल की रहने वाली मंजू ओली, असली कहानी है, बिल्कुल रीसेंट कहानी, आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। उन्होंने हेलीकॉप्टर पायलट बनकर ना सिर्फ अपने सपनों को उड़ान दी है, बल्कि उन हजारों लड़कियों को भी संदेश दिया है जो अपने सपनों को परिस्थितियों की वजह से छोटा मान लेती हैं। मंजू ओली को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित विमानन संस्थाओं में से एक ने सम्मानित किया है, और ये उपलब्धि उनकी नहीं बल्कि हर उस बेटी की जीत है जो अपने लिए एक नई राह चुनना चाहती है। आपको कहानी सुनाऊं मंजू ओली की, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने भारतीय मेजर अभिलाषा बराक को लेबनान में महिलाओं की मदद के लिए उन्हें सम्मानित किया है। मेजर अभिलाषा को यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको बताऊँ, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ जो मेजर बराक को पश्चिम एशियाई देश में महिलाओं और लड़कियों को प्रेरित करने के लिए ये पुरस्कार मिला है। मेजर आशा बराक भारत की तीसरी महिला अधिकारी हैं जिन्हें यह मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार मिला है, और उनसे पहले मेजर सुमन गठानी और मेजर राधिका सेन को यह सम्मान मिल चुका है। सबसे बड़ा जोखिम भरा शांति मिशन माना जाता है इसको। मेजर बराक जो है संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल लेबनान में एंगेजमेंट टीम कमांडर और जेंडर फोकल पॉइंट के रूप में कार्यरत है। वे वर्तमान में सबसे जोखिम भरा शांति मिशन माना जाता है। ये पुरस्कार हर साल सभी शांति अभियानों में बल कमांडर और मिशन प्रमुखों की ओर से नामित उम्मीदवारों में से चुने गए विजेताओं को दिया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी सराहना की, कहा है कि अभिलाषा जो है ना, उनका जो सम्मान है वो बेटियों के लिए आज प्रेरणा है। और साथ ही यूएन के महासचिव ने भी कहा है कि मेजर बराक लोगों के लिए आज आदर्श बन गई हैं, क्योंकि सम्मान पाने के बाद मेजर ने यह कहा कि भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट होने के नाते मैंने ये खुद अनुभव किया कि जब मौका मिलता है ना, तो महिलाएं कैसे हर बाधा को पार कर सकती है। सालों का कोई सपनों का ना कोई जेंडर नहीं होता है, और जब नेतृत्व आ जाए उसमें, और जब आ जाए अंदर मन में, आप ठान लें तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। और ये पुरस्कार इस बात की याद दिलाता है कि स्थायी शांति तभी बन सकती है जब हर आवाज़ सुनी जाए और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो मेजर अभिलाषा की ये कहानी आज हमारे दिन को एक नया स्वरूप देती है, क्योंकि ये हमें प्रेरणा देती है कि जब आगे बढ़ने का लक्ष्य तय किया जाए तो उसमें कोई जेंडर नहीं होता, बस सिर्फ संकल्प होता है। और यही कुछ मेजर अभिलाषा ने भी करके दिखाया। सुनते रहिए 102.6 एफएम, जुड़ रहिए 102.6 एफएम के साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आई एम विद यू, भावना।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
5: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: आप सुन रहे हैं FM रेनबो। वक्त हो चला है 8:36 और मेरा और आपका साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के साथ चल रहा है। जून है, गर्मी बहुत है और गर्मी होती है तो आप सोचते हैं कि क्या कुछ पिया जाए जिससे ठंडक मिल जाए। तो पता है क्या है, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि मॉकटेल्स में बहुत मतलब अच्छी अच्छी ड्रिंक्स होती हैं, लेकिन अगर हम अपनी रसोई में ही झाँके ना तो बहुत कुछ ऐसी ड्रिंक्स हैं जिसे पीकर आप ठंडक महसूस कर सकते हैं। और पता है ये हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। अगर उत्तर भारत चले जाएँ, पश्चिम चले जाएँ, दक्षिण चले जाएँ या पूर्व चले जाएँ, हर कोने में आपको एक अलग तरीके के पेय मिल जाएंगे। यानी मॉकटेल्स को छोड़कर अगर हम ये देसी ड्रिंक्स अपना लें ना तो सच में बात ही कुछ और हो जाती है। और ये जो कहते हैं ना, ये हमारे समर के सुपर हीरोज़ हैं जो हमारे रसोई में छिपे हुए हैं। अगर उत्तर में जाएँ तो आम पन्ना और छाछ, स्वाद ही कुछ और है। पूर्व में सत्तू और बेल का शरबत, फिर दक्षिण में जाएं तो पनकम और सांबरम और पश्चिम में कोकम और सोलकड़ी। एक देश है, अनेक स्वाद हैं और हर स्वाद के पीछे ना पीढ़ियों का अनुभव है। यही तो भारत की खूबसूरती है और यही तो कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। और कौन कहता है कि मौसम में अलग अलग ड्रिंक्स नहीं होती, हर मौसम की अलग ड्रिंक्स होती हैं। तो आज का मंत्र यही है कि फॉरगेट मॉकटेल्स, ट्राई देसी। और हमें भी बताइएगा कि आपके ना घर का ये समर सुपरस्टार कौन है, आम पन्ना, लस्सी, छाछ, सत्तू या फिर कुछ और, क्योंकि इन देसी पेयों की ना बात ही कुछ और होती है। इनका स्वाद हर किसी ड्रिंक का, देसी ड्रिंक का स्वाद अलग है। फिर आप उसे मीठा भी पी सकते हैं, नमकीन भी पी सकते हैं और ये सिर्फ आपको कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ भारत में। तो आप भी कदम बढ़ाएं, मैं भी कदम बढ़ाऊं और इन कदमों के साथ हमारा सफर यूं ही चलता रहे 102.6 FM के साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।

दोस्तों, गर्मी की छुट्टियां आते ही ना मन पहाड़ों की ओर भागने लगता है। ठंडी हवा, बादलों से ढकी वादियां और देवदार के जंगल और शहर की भागदौड़ से दूर कुछ सुकून भरे दिन, कुछ पल। लेकिन क्या ना, इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। इस बार क्या, अब लगता है कि हर साल यही तस्वीर दिख रही है। देश भर में टूरिज्म का इतना उत्साह बढ़ चुका है कि कई लोकप्रिय जो हिल स्टेशन है ना, वो टूरिस्ट से खचा खच भरे हुए हैं। यानी शिमला तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली बन चुका है, क्योंकि इतना लंबा ट्रैफिक जाम आप देखिए वहाँ पर। वीकेंड्स पे तो जाना ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही मुश्किल हो गया है, होटल मिल नहीं रहे हैं। और प्रकृति की शांति बिना भीड़ के शोर में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है खोती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या छुट्टियों का मतलब सिर्फ भीड़ वाली जगहों पर जाना होता है? शायद नहीं, क्योंकि ना असली जो डेस्टिनेशन होती है वो सिर्फ जगह नहीं होती, बल्कि उसके माहौल को एक्सपीरियंस करना होता है। जहाँ सुबह पक्षियों की आवाज से हो, शाम पहाड़ों के रंग बदलते हुए देखें और कुछ पल खुद के साथ बिताएं, यही तो होती है छुट्टियां, सुकून भरे पल, यही तो चाहते हैं आप। लेकिन आजकल कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। और भारत की खूबसूरती बस यही है कि यहाँ सिर्फ मशहूर पर्यटन स्थल ही नहीं है, बल्कि अनगिनत ऐसे ना छोटे छोटे गांव हैं, शांत पहाड़ी कस्बे हैं और अनदेखी मंजिलें हैं जो उतनी ही खूबसूरत हैं और कई बार उनसे भी ज़्यादा यादगार साबित हो जाती है। कभी कभी जो सबसे खूबसूरत सफ़र होते हैं ना, उन रास्तों पर मिलते हैं जो भीड़ से दूर होकर हमें प्रकृति की असली शांति और सुकून से रूबरू कराते हैं। तो श्रोताओं, अगर आप भी इस गर्मी में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सिर्फ डेस्टिनेशन मत देखिएगा, एक्सपीरियंस को चुनिएगा। जल्दी पहुंचने से ज़्यादा पता है क्या ज़रूरी होता है, उस सफ़र का आनंद लेना, उसको एंजॉय करना। और याद रखिए, छुट्टियों का मकसद सिर्फ तस्वीरें लेना नहीं होता। आप गए बस यहाँ क्लिक वहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक वहाँ क्लिक, सेल्फी ले रहे हैं, बल्कि ऐसी यादें बनाना होता है अपनों के साथ जो लंबे समय तक मुस्कान बनकर आपके साथ रहें, है ना। पहाड़ हो, समुद्र हो, जंगल हो या फिर अपना कोई भी पसंदीदा शांत कोना चुन लीजिए। और इस शानदार गीत के साथ आगे बढ़ते हैं, इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और एक मुलाकात अपने आप से भी करते हैं।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: तो दोस्तों, होता क्या है कि दिन भर की भागदौड़ में ना हम अक्सर आसमान को देखना ही भूल जाते हैं, लेकिन आज शाम अगर आपको मौका मिले ना तो ज़रा कुछ मिनट ज़रूर निकालिएगा और आसमान की ओर नज़र डालिएगा, क्योंकि प्रकृति एक बेहद खूबसूरत नज़ारा आज शाम को पेश करने वाली है। कल्पना कीजिए कि करोड़ों किलोमीटर दूर दो ग्रह शुक्र और बृहस्पति आज शाम आसमान में इतने करीब दिखाई देंगे कि मानो एक दूसरे से मिलने आए हों। जी हाँ, खगोल विज्ञान की भाषा में इसे कंजंक्शन कहा जाता है, लेकिन हम इसे ब्रह्मांड की एक खूबसूरत मुलाकात भी कह सकते हैं। पता दिलचस्प बात यह है कि शुक्र और बृहस्पति वास्तव में एक दूसरे के पास नहीं होंगे, उनके बीच करोड़ों किलोमीटर का फासला होगा, लेकिन पृथ्वी से देखने वालों पर ये एक साथ चमकते हुए नजर आएंगे और यही तो ब्रह्मांड का जादू है। दूरियां अपनी जगह है, लेकिन नजारा ऐसा लगता है कि जैसे दोनों ग्रह एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हों। तो कभी कभी आसमान हमें बहुत कुछ सिखा देता है। विशाल ब्रह्मांड में हमारी चिंताएं कितनी छोटी हों, फिर भी हम सब उसी कहानी का हिस्सा हैं। शायद इसी वजह से तारों और ग्रहों को निहारना मन को सुकून देता है। तो आज शाम 7:30 बजे के बाद अगर आसमान साफ होना तो अपने परिवार के साथ आप नेहरू प्लेनेटोरियम, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जा सकते हैं। और यहाँ ना फ्री पब्लिक स्काई वॉचिंग सेशन रखा गया है फ्रंट लॉन्स ऑफ 3 मूर्ति भवन 7:30 बजे से, और ये 8:30 बजे तक ये नज़ारा आपको दिख सकेगा। तो आप अपने परिवार के साथ ज़रूर जाइएगा और मोबाइल स्क्रीन से नज़र हटाकर ना इस खगोलीय संगम को देखिए और महसूस कीजिए कि प्रकृति का सबसे बड़ा शो आज भी बिल्कुल मुफ्त है। सही बात बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ना इनके ज़रिए ही हम अपने सितारों को भी देख सकते हैं, अपने सपनों को भी देख सकते हैं, और ये हमें अनंत आसमान की याद भी दिलाता है। सुनते रहिए 102.6 FM, मेरा और आपका साथ लगातार जा रही है।

तो इसी के साथ संगीत की इस बहती नदी को अब नया किनारा मिलने वाला है और उस किनारे पर आपका इंतजार कर रहे हैं निखिल। दिल के तराने लेकर, गाने नए पुराने लेकर, कुछ धुने मुस्कुराने वाली, कुछ यादें गुनगुनाने वाली आपके साथ होगी। इसी के साथ आपका दिन मंगल के साथ मंगलमय हो और यूं ही आप मुस्कुराते रहें, नई कोशिशें करते रहें, नए लक्ष्यों को पाते रहें और इस खूबसूरत शुरुआत के साथ मुझे दीजिए अनुमति और आपका दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है, ये मैं जानती हूँ। साइनिंग ऑफ भावना फ्रॉम हेयर 102.6 FM, स्टे ट्यून्ड।

0: यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल 102.6। और आपको मैं बता दूं, मेरे जाने के बाद आप कौन कौन से प्रोग्राम सुन पाएंगे। तो 10:05 पर हिमानी दत्ता आपके साथ होंगे लेकर के प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक का मैचलेस म्यूजिक आर। इसके बाद संतोष राव आपके साथ होंगे 11:05। आपको बता दें कि संतोष राव के साथ आप सुनेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स। और फिर 12:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक के प्रोग्राम प्लेट कोल करो लेकर के आएंगी हिमानी दत्ता। और फिर संतोष राव आपके लिए पेश करेंगे रेनबो हेल्पलाइन, जिसमें आज का विषय है जीवन में सकारात्मकता कैसे अपनाएं। और इसमें विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बलराज सैनी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और श्रोता, आपको बता दें कि आशियाना आप सुन पाएंगे दिन में 2 से बबीता रावत के साथ में। आज का रेडियो डॉक्टर आप सुनेंगे दिन में 3 से, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बैरियट्रिक सर्जरी। इसके प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं, ये आपको सुनने को मिलेगा। इसमें एक्सपर्ट है डॉक्टर निखिल गुप्ता, जो कि प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। और दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर मुकुंद खेतान, जो कि को चेयरमैन है इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस बैरियट्रिक सर्जरी सर गंगाराम हॉस्पिटल में। और इस प्रोग्राम के लिए यदि आप कोई भी क्वेरी रखते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं 0112342108। दूसरा नंबर है 2342108। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर है 9868107070। तो फिलहाल मेरे चलने का समय हो चला है, हम लोग फिर मिलेंगे। आप बने रहें रेनबो पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। पुदुचेरी में मंत्रिमंडल विस्तार के तहत राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री की सलाह पर 3 नए मंत्रियों की नियुक्ति की है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजवेलु और वीपी शिवा कोलुंधु तथा भाजपा विधायक जीएनएस राजशेखरन को पुदुचेरी सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति शपथ ग्रहण के बाद प्रभावी होगी। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का भी आभार व्यक्त किया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली थी। हादसे की जाँच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। यह शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर में कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित भी हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का स्वर बुलंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा

उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। और खेलों में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: my God, what a track! Just something so beautiful. And to give you its details, of course, from the 1983 film Masoom, Bhupendra Singh and Suresh Wadkar, the singers, lyrics by Gulzar, and the music by Ardeep Barman. I think we really need to take a break. So I'll see you on the other side.
1: मुझे कुछ जल्दी भेजना है. कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल. इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी. ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा. हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली. और सबसे जरूरी, OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी. बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर. अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in.
3: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली.

0: An absolutely goosebump song from the 1977 film Kinara. That was, of course, Bhupendra Singh with Lata Mangeshkar. The lyrics by Gulzar and the music by R.D. Burman. Truly an overwhelming number. Time now to take a break.
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
0: वेलकम बैक, दिस इज आकाशवाणी रेनबो एंड द शो इज कॉल्ड मैचलेस म्यूजिका। एंड यस, लाइक आई सेड, द सॉन्ग आई जस्ट प्लेड एब्सोल्युटली अ गूज़बम्प्स शो, I mean song, sorry. Sometimes, you know, some songs really overwhelm you. And yes, they give us goosebumps because indeed, our voices are what connect us to you. The way we speak, the way we present our programs is how we win your love. We love your feedback and it is a huge motivation for us. And of course, the way we go gaga over one another is what makes our radio, our Akashwani, move from strength to strength. Here's a shout out to radio. Here's a shout out to Akashwani.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय

0: ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना, जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि तलाशी अभियान में शामिल परिसरों में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय और व्यावसायिक कार्यालय शामिल हैं। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आग दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित भी हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच वनडे त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 2 विकेट पर 55 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: मेहरबान कदरदान पहलवान हो जाइए तैयार बॉलीवुड ट्रेल्स के लिए।
2: बॉलीवुड की चटपटी गपशप, सिनेमा का निराला संसार लेकर आ गया आपका दोस्त एसआर। संतोष राव के साथ सुनिए बॉलीवुड ट्रेल्स।
3: टिका बॉलीवुड ट्रेल्स।

जी हाँ, यह है बॉलीवुड ट्रेल, जिसमें हम बातें करते हैं ढेर सारी बॉलीवुड से जुड़ी हुई। जी हाँ, और भी बातें होंगी हमारी इस बॉलीवुड से, और ताजा खबरें भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ, ताजा, बिल्कुल ताजा खबरें कि आज क्या घटित हुआ है, और हमेशा की तरह आपसे पूछेंगे एक सवाल जिसका सही जवाब आपको बना सकता है बॉलीवुड सरताज। मतलब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप हर रोज सुनते हैं, लेकिन आज है 9 जून, और ये 9 जून बॉलीवुड की किन किन फिल्मों के लिए लकी रहा वो भी आपको बताऊंगा, तो बने रहिए एजार यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर ठीक 12 बजे।

अब दोस्तों कौन किस पर मर रहा है, किसका ब्रेकअप हो रहा है, किसको फिल्म से आउट किया जा रहा है या किसको किया जा रहा है इन, यही तो खबरें होती हैं बॉलीवुड की, है ना। वैसे से क्रिएटिविटी के जमाने में, या हम यूं कहें कि एआई के जमाने में, अब फिल्मों का गीत संगीत कहें या फिल्मों के निर्माण से लेकर हर छोटी चीज को पहले से एआई के माध्यम से देख रहे हैं बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग। पसंद आया तो आगे बढ़ गए, नहीं आया तो अंगूर खट्टे हैं कहकर दूसरी दिशा में आगे निकलने की करने लगते हैं कोशिश। लेकिन जरा सोचिए, जब इतनी सुविधाएं नहीं थी या नहीं हुआ करती थी, तब क्या होता था? एक सच्ची बात बताता हूं आपको। ये हम सब जानते हैं कि 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा आने से पहले फिल्में जो हुआ करती थी ना, वो मूक हुआ करती थी, मतलब साइलेंट हुआ करती थी, उनमें साउंड नहीं हुआ करता था, मतलब साइलेंट हुआ करती थी, ना डायलॉग और ना गीत हुआ करते थे। तो जब थिएटर में फिल्म चला करती थी तो लोगों को बांधे रखने के लिए फिल्म के साथ साथ बिल्कुल उसी समय एक व्यक्ति हारमोनियम लेकर बैठता था और तबला लेकर बैठता था, मतलब दो व्यक्ति हुआ करते थे फिल्म पर्दे पर देख रहे हैं और वो व्यक्ति लाइव हारमोनियम और तबला बजाते थे। सोचिए शायद वैसा ही नजारा होता होगा जैसे कि आजकल कठपुतली का खेल दिखाते वक्त हुआ करता है ना, कठपुतली उंगलियों पर बंधे धागे पर नाचती है और संगीत उसमें रोमांच पैदा करता है, ठीक वैसा ही होता होगा, है ना। खैर धीरे धीरे समय बदलता गया और फिल्में आधुनिकता की चादर ओढ़कर सिनेमा घरों में रिलीज होती गई। लेकिन एक जानकारी आपको और दे दूं कि हिंदी सिनेमा में नियमित रूप से शुक्रवार को फिल्में रिलीज करने के ट्रेंड की शुरुआत हुई थी मुगले आजम फिल्म से। जी हाँ, मुगले आजम फिल्म से, जिसे 5 अगस्त 1960 को शुक्रवार के दिन रिलीज किया गया था। और फिर 1960 से लेकर आज तक फिल्मों को रिलीज करने का दिन बन गया शुक्रवार, और लोग करने लगे इस शुक्रवार का इंतजार, मतलब हर शुक्रवार का इंतजार। वैसे आज है मंगलवार और 9 जून 2026 का दिन है। अब बॉलीवुड में 9 जून को कौन कौन सी फिल्में रिलीज हुई थी वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता देता हूं आज का वो सवाल जिसका सही और सबसे पहले, जी हां सही और सबसे पहले जवाब देने वाले आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। और जो बनता है बॉलीवुड सरताज वो जुड़ता है हमारे साथ बिल्कुल लाइव आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, है ना। आपको एक गीत का मुखड़ा सुनाने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा क्योंकि इसी गीत में छिपा हुआ है आज का सवाल।

जिया प्यार किया तो डरना क्या। और दोस्तों इससे पहले कि सवाल पूछूं इस गीत की एक जानकारी आपको दे देता हूं, क्योंकि मेरे जहन में आ रही है और मैं चाहता हूं कि ये जानकारी आप तक पहुंचा दूं। ये बता देता हूं कि इस गीत की रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नहीं हुई थी, बल्कि स्टूडियो का जो बाथरूम था ना उसमें की गई थी। अब क्यों की गई थी, क्योंकि जो फिल्म निर्देशक थे वो चाहते थे कि इस गीत में गूंज आ सके, क्योंकि उस वक्त रिकॉर्डिंग के समय इको इफेक्ट नहीं हुआ करते थे, मतलब हम कह सकते हैं कि गूंज पैदा करने वाली आधुनिक मशीनें नहीं हुआ करती थी, और इसीलिए इस गूंज को प्राकृतिक रूप से लाने के लिए, मतलब लाइव लाने के लिए, संगीत निर्देशक नौशाद ने लता मंगेशकर से स्टूडियो के बाथरूम में जाकर यह गीत गवाया था। है ना, हैरान करने वाली बात। और इस गाने को लिखने के लिए इस गीत के गीतकार है ना जो, उन्होंने इस गीत के बोलों को 105 बार बदला था। जी हाँ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं, बल्कि 105 बार बदला था। आपको इस गीतकार का नाम बताना है। जी हाँ, आज का जो बॉलीवुड सरताज सवाल है वो यही है कि प्यार किया डरना क्या, ये जो गीत हमने आपको सुनाया मुगले आजम फिल्म का, आपको बताना है कि इस गीत के गीतकार कौन है। आप बताइए 9868107070 पर। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। बताइए प्यार किया तो डरना क्या लिखने वाले गीतकार का नाम 9868107070 पर। फिलहाल एक प्यारा सा गीत फ्रॉम द मूवी है जवानी तो इश्क,

क्या फायदा जब डेविड धवन जी ने खुद ही कह दिया है कि उनकी ये आखिरी फिल्म है जिसको वो डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप लीजिए इस गीत का आनंद, क्योंकि बॉलीवुड में इस तरह की तो बातें और खबरें चलती ही रहती हैं, है ना। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: आज बदले हैं, बातों के लिहाज बदले हैं, तुमको तो जमाना हो गया, वर्मा तो फिर भी आज बदले हैं। कहते थे
1: जो जी हाँ दोस्तों, आजकल यही गीत गा रहे हैं बॉलीवुड से जुड़े कुछ लोग और अपनी मोहब्बत को अब बेवफा का नाम दे रहे हैं। जैसे सूरज नाम यार बेवफा कह रहे हैं मौनी रॉय को क्योंकि उनका तलाक होने वाला है, तो वहीं फिल्म अभिनेत्री तारा सुतारिया जनवरी 2026 से बेवफा कहने लगी वीर पहाड़िया को। और तो और वेदांग रैना और खुशी कपूर भी इल्जाम लगा रहे हैं एक दूसरे को बेवफा होने का, और इसी धुन को गुनगुनाना हम कह सकते हैं शुरू कर दिया है फिल्म अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा और सितार वादक ऋषभ शर्मा ने। तो वहीं 2022 में शादी के बंधन में बंधे हंसिका और सोहेल मार्च 2026 में कानूनी तौर पर अलग हो गए और वो भी यही गीत गुनगुना रहे हैं, जबकि उससे पहले बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल में से एक तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा का भी 2025 के आखिरी हफ्तों में ब्रेकअप हो गया था, मगर दोनों चुपचाप एक दूसरे को बेवफा कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन सितारों के दिल किसी न किसी कोने में जो है ना वो एक टीस तो जरूर उठ रही होगी और एक दूसरे से कह तो रहे होंगे ही मन ही मन।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ दोस्तों, जब प्यार किया तो डरना क्या। और इस गीत का जो मुखड़ा हमने आपको अभी सुनाया, वो सुनाया था फिल्म मुगले आजम से। और आज का बॉलीवुड सरताज सवाल यही है कि इस फिल्म के गीतकार कौन है। जी हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर गलत मैसेज आ रहे हैं, इसलिए हमने दोबारा इस गीत को सुना दिया कि आपको बताना है कि इस गीत के गीतकार कौन है। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जी हाँ 9868107070 पर आप भेजिए अपने जल्दी से सही जवाब, क्योंकि सही जवाब आएगा तो हम नाम भी लेंगे और साथ ही साथ आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो विद एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो पर, प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव। और दोस्तों आइए अब बात करते हैं उन फिल्मों की जो आज के दिन यानी 9 जून को अलग अलग सालों में रिलीज हुई। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और चंद्रचूड़ सिंह की फिल्म जोश की। और ये फिल्म 2000 में आज ही के दिन यानी 9 जून को रिलीज हुई थी और दुनिया भर में इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो था 35 करोड़ 6 लाख। दूसरी फिल्म 2006 में आज ही के दिन यानी 9 जून को रिलीज हुई थी फिर हेरा फेरी, जिसमें मुख्य भूमिका में थे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल और विपाशा बसु। और इस हिट फिल्म का दुनिया भर में कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 69 करोड़ 12 लाख रुपए। और इसी फिल्म के साथ 2006 में 9 जून को ही चुप चुप के फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें शाहिद कपूर, करीना कपूर, राजपाल यादव, परेश रावल की कॉमेडी को दर्शकों ने खूब सराहा था और दुनिया भर में कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था इस फिल्म का 25 करोड़ 68 लाख रुपए। इसके बाद 2017 में राब्ता फिल्म रिलीज हुई थी और तारीख थी 9 जून 2017। इस फिल्म में थे सुशांत सिंह राजपूत, कृति सेनन, जिम सरफ। पुनर्जन्म की कहानी पर आधारित ये रोमांटिक एक्शन फिल्म थी राब्ता और इस फिल्म का दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 39 करोड़ 5 लाख रुपए। और फिर 6 साल बाद 9 जून 2017 को शाहिद कपूर, संजय कपूर, डायना पेंटी, रोनित रॉय की फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था ब्लडी डैडी, जिसको अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया था और इसको सिनेमा हॉल की जगह सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। फिलहाल आप आनंद लीजिए इस गीत का दिल दे दिया फ्रॉम द मूवी फिर हेरा फेरी आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
7: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
6: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
7: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
6: और विनर्स को क्या मिलेगा?
7: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
6: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
8: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
10: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
11: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: जी हाँ दोस्तों, गीतकारों की कलम से जो शब्द निकलते हैं ना, वो आम इंसान के एक्सपीरियंस से ज़्यादा गहराई वाले शब्दों के साथ होते हैं, इसीलिए वो गीतकार कहलाते हैं। और आज हमने जो आपसे सवाल पूछा था, मुगले आजम फिल्म का ये गीत प्यार किया तो डरना क्या, ये किस गीतकार ने लिखा है? और हमारे पास मैसेजेस आ चुके हैं बहुतों के, और बहुतों ने सही जवाब दिया है। और जो हमारे आज के बॉलीवुड सरताज बने हैं, वो बने हैं विनीत कुमार बदायूं उत्तर प्रदेश से, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो
1: जी सर।
0: नमस्कार विनीत जी, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार सर, बढ़िया, अच्छा हूं।
0: अच्छा विनीत जी, क्या करते हैं आप, कहां के रहने वाले हैं?
1: सर मैं बदायूं उत्तर प्रदेश ग्राम दारानगर पोस्ट जगत का रहने वाला हूँ।
0: अच्छा क्या करते हैं वैसे?
1: सर दिल्ली में मैं सरकारी जॉब करता हूँ।
0: अच्छा सरकारी जॉब करते हैं, लेकिन रहने वाले आप बदायूं के हैं?
1: जी जी सर।
0: तो आप सही जवाब बता दीजिए, गीतकार का नाम बता दीजिए।
1: शकील बदायूंनी।
0: क्या बात है, देखिए इसीलिए हमने आज आपको बना दिया बॉलीवुड सरताज। अच्छा एक बात बताइए, शकील बदायूंनी जी के लिए तो बड़ा गर्व होता है पूरे हिंदुस्तान।
1: जी जी
0: है ना, और आप क्योंकि उसी एरिया के रहने वाले हैं बदायूं के आसपास, प्रॉपर बदायूं से कितने किलोमीटर दूर है आपका गांव?
1: सर 12 किलोमीटर।
0: अच्छा 12 किलोमीटर दूर है आपका।
1: जी सर।
0: लेकिन बदायूं आपका जाना रहता होगा?
1: सर मैं पढ़ाई करा, मैंने एमए वहीं से करा है।
0: अच्छा बदायूं में कहां से, कॉलेज का नाम बताइए।
1: शिव नारायण दास डिग्री कॉलेज।
0: अच्छा ओके। अच्छा लोग वहाँ के शकील बदायूंनी जी के लिए क्या क्या कहते थे, कुछ याद है?
1: सर मैं तो मान लो इतना तो नहीं है, पर जो मैंने भी मान लो जो पढ़ाई है मैंने, और आपके माध्यम से रेडियो में सुना था, नाम तो जानता था मान लो।
0: नाम जानते थे आप?
1: जी सर।
0: लेकिन आप उनके, अच्छा घर कभी नहीं गए उधर पर?
1: जी सर नहीं।
0: अच्छा ओके, लेकिन अब आप जाइएगा, जब आप जाते हैं ना बदायूं दिल्ली से कभी छुट्टियों में, तो आप जरूर जाइएगा, उन यादों को ताजा करिए, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत

0: है, अगर हम आपको इनके बारे में बताएं ना, तो
1: जी सर,
0: ये पहले ऐसे गीतकार थे जिन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत का फिल्म फेयर पुरस्कार लगातार 3 बार इन्होंने जीता था।
1: जी सर, जी सर,
0: 1961 में चौदहवीं का चांद फिल्म के लिए, और फिल्म घराना के लिए 1962 में हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं इस गीत के लिए, और 1963 में 20 साल बाद फिल्म आई थी कहीं दीप जले कहीं दिल, आपने सुना होगा है ना।
1: जी सर,
0: ये पहले ऐसे गीतकार थे जिन्हें मिला था, और इन्होंने बहुत ऐसे गीत लिखे हैं, अब उनके बारे में हम क्या बात बताएं। और आपने सही जवाब दिया है, अगर हम इनके गीतों की बात करें तो जो प्यार किया डरना नहीं मुगले आजम का है, इसके बाद चौदहवीं का चांद उसका भी, और ये फिल्म कोहिनूर का तो एक बहुत प्यारा सा गीत है, मधुबन में राधिका नाचेरे, सुना है ना
1: जी
0: आपने।
1: सर, जी
0: और
1: सर,
0: मेरे महबूब
1: हाँ
0: तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब, क्या क्या
1: जी
0: बात
1: सर,
0: है, इतने
1: बिल्कुल,
0: जबरदस्त गीत लिखे हैं। अच्छा, आप बराबर आकाशवाणी FM रेनबो सुनते रहते हो ना।
1: हाँ सर, मानो जैसे मैं जब तक मेरी नाइट होती है तो मैं नाइट सुबह सुनता ही सुनता हूँ, और जैसे दोपहर, आप दोपहर की ड्यूटी, दोपहर और सुबह के जब ड्यूटी हो तो तले सुन पाता हूँ।
0: जी, तो चलिए हम जल्दी से नाम ले लेते हैं कुछ, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, आप बराबर यूं ही सुनते रहिएगा। और आप पहली बार बने हैं या दूसरी तीसरी चौथी बार बने हैं सर, ये
1: सर
0: बता।
1: एक एक बार पहले बन चुका हूँ, एक बार मैं फोन नहीं उठा सका।
0: अच्छा, ओके। चलिए, बहुत अच्छा लगा विनीत जी आप हमसे बात कर रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो पर, बॉलीवुड सरताज बनने के लिए। तो दोस्तों, ये थे विनीत कुमार बदायूं उत्तर प्रदेश से, और आज सही जवाब है शकील बदायूं नहीं, और हमारे पास मैसेज आए हुए हैं, जैसे सुपौल बिहार से सुनील कुमार यादव, मिंटू यादव ने सही जवाब दिया है, चितरंजन सक्सेना ने हमें सही जवाब दिया है नोएडा से, और सही जवाब हमें मिला है, ये भेजा है शैलेंद्र वर्मा ने दिल्ली से, और हरिनगर से भी हमें मैसेज आया है पूजा कोमल का, इन्होंने भी सही जवाब दिया है, मेरठ से बसंत तोमर ने सही जवाब दिया है, और शकील बदायूनी अरुण सेन जिलाधार मध्य प्रदेश से भी हमें सही जवाब भेज रहे हैं। तो फिलहाल इसी के साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और उनकी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धन शोधन और 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित जीएसटी धोखाधड़ी तथा फर्जी मोबाइल फोन बिक्री का पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 26वें ओवर में 3 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 73,668 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
6: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
7: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
8: Welcome back. You're with us on Akashwani Rainbow and the show is called Play It Cool. And today happens to be meal prep day. So we're talking about what is that meal which is nutritious and tasty and you can cook it up in a jiffy. Indu, you have me drooling right now. I mean, this is one dish which I make very often and I just love it. Yes, it's absolutely on the line of khichdi. And yes, not many people would be able to relate to it, but I guess that's the beauty of India, you know. There's so many dishes. I mean, every few miles, kilometers, everything changes. The dialect changes, the dress changes, the food changes, the language changes, everything. What a beautiful country we live in. And yes, what she's talking about is Bisi Bele Bhat. That khatta meeta, that tangy twist to it. Ah, I love it. Thank you for reminding this. And now, you know, I'm going to definitely make this tomorrow because you've had me craving for this now. All right, moving ahead. So, meal prep day. What is that meal which you can cook up in a jiffy, but it's got to be nutritious and it's got to be tasty, definitely, because we don't like to eat something that is not tasty, right? All right, so coming back to you, Roland, you requested for you gave me two options. One among them I said we can't play because that's for the earlier show, Matchless Musica. So definitely this is what your Roxette choice. I can definitely play it and I'm playing it right now.

0: Shakira there with the track Waka Waka, going out very specially for GS Gill from Patiala. And moving ahead, well, what moving ahead? Time for another teeny weeny little break.
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: तुम मेरी राखो लाज हरे।
6: हमारे हृदय के भाव जुड़ें प्रभु से और हम सब करें आराधन। आपके लिए आकाशवाणी ला रहा है आराधना चैनल।
5: अम्बे चरण कमल है तेरे।
6: शीघ्र ही होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आकाशवाणी ऐप पर आराधना चैनल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन

0: चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, रेनबो हेल्पलाइन का आज का अंक सजीव नहीं है, ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: यस, ये है आकाशवाणी रेनबो और ये समय है रेनबो हेल्पलाइन का। एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं, बबिता त्रिपाठी, और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मेरे साथ होंगे एक एक्सपर्ट भी, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जुड़ेंगे हम आपसे आज, और आप सबके सवाल भी मोस्ट वेलकम है जी। तो सबसे पहले तो टॉपिक बता देते हैं, आज का टॉपिक क्या है, किस पर हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि जीवन में सकारात्मकता कैसे अपनाएं। बहुत बढ़िया लगता है सुनना कि भाई पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। कोई भी बोल देगा आपको पॉजिटिव रहो, अरे भाई कैसे रहें पॉजिटिव, करियर में इतनी प्रॉब्लम, रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम, और इतनी सारी हम डेली प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जिनकी हम उम्मीद भी नहीं कर लेते हैं, और सोच के कुछ और चलते हैं घर से और होता कुछ और है बाहर। ऐसे में हम सकारात्मक कैसे रहें और किस तरह से अपने मूड को एकदम बढ़िया सा रखें और एनर्जी के साथ, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही बात करें कि हम बहुत खुश हैं, क्या हम दिखावा करें। ऐसे तमाम सवाल अगर आपके दिमाग में भी है तो आप हमारे एक्सपर्ट के साथ शेयर करिए और उनसे ही पूछ डालिए, मैं भी पूछूंगी एकदम। बहुत सारे सवाल लेकर मैं तैयार हूँ और हमारे एक्सपर्ट जवाब देने के लिए तैयार हैं। और एक्सपर्ट हैं डॉक्टर बलराज सैनी जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो इनका भी स्वागत कर लेते हैं। स्पीकर मेन वो है, मैं नहीं हूँ, तो मैं काफी बोल चुकी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू बबीता जी, और सब श्रोताओं को मेरा प्यार भरा मुस्कुराता हुआ नमस्कार।
2: और ऐसा लग रहा है ना आवाज से भी कि सकारात्मक होना चाहिए, मतलब कुछ लोगों की आवाज भी सुन के हमें समझ में आ जाता है कि सकारात्मकता अपनानी जरूरी है। और अब बातें सुनेंगे तो देखिए क्या पता हम भी पॉजिटिव हो जाएं और कुछ थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाए सकारात्मकता में। वैसे बात इतनी लंबी चौड़ी होने वाली है कि मैं सोच रही हूँ पहले एक गाना सुन लेते हैं, फिर लौट कर आते हैं और देखते हैं सकारात्मक कैसे रह सकते हैं।

0: जीवन में मूव ऑन कर जाएं तो बात ही क्या है। कई बार होता है हम होल्ड करके रखते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं और कॉन्शियसली होल्ड करके रखते हैं कि भाई होल्ड करके रखेंगे और इनको जवाब जरूर देना है लाइफ में, ये सबसे बड़ा टारगेट बना के रखते हैं। तो क्या ये सही है? और कई बार मुझे लगता है कि ये सही भी होता है, क्योंकि अगर हम होल्ड नहीं करेंगे किसी चीज को, अगर दिल से नहीं लगाएंगे, तो फिर वो जुनून कहां से आएगा जिसकी वजह से हम वो कुछ बन पाएंगे जो हम बनना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको बैलेंस करना हमारे कई बार बस की बात नहीं होती है। तो ऐसे में हमारे एक्सपर्ट किस काम आएंगे, डॉक्टर बलराज सैनी, जो कि आज मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ हैं, उनका हम पूरा लाभ उठाते हैं और जानते हैं कि सकारात्मक किस तरह से रहें लाइफ में जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आखिर मतलब क्या है पॉजिटिव रहने का जब इतनी सारी प्रॉब्लम से चारों तरफ घिरे हुए होते हैं? तो ऐसे में क्या उन प्रॉब्लम से आंखें मूंद लें, या फिर सोचें कि हम टेंशन नहीं लेंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तो पॉजिटिव रहना है। तो सर किस तरह से हैंडल करें, आप समझाइए।
1: मैम देखिए, सबसे पहले मैं प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ, नॉर्मली मैं नेगेटिव से स्टार्ट नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट करूंगा कि जिंदगी है तो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स है तो जिंदगी है। अगर हम ईसीजी ग्राफ को भी देखें तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर ग्राफ फ्लैट है दैट मींस यू आर डेड, सो इट ऑलवेज गोज अप एंड डाउन। यानी जिंदगी है तो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं, एंड द प्रॉब्लम्स चैलेंजेस ऑलवेज हेल्प अस ग्रो। तो उससे घबराना नहीं है, इसका मतलब है कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि हम सकारात्मक कैसे रहे, पॉजिटिव कैसे रहे। तो ये बहुत सिंपल चीज है, आई नो जितना सिंपल मैं कह रहा हूं उतना है नहीं, बट फिर भी है कि हमको जो भी सिचुएशन हो उसमें अच्छा क्या है उस चीज पे फोकस करना है। हर चीज में, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, तो हमको उस पे फोकस करना है। अब जब मैं ये कहता हूं कि हमें हर सिचुएशन पे उसकी अच्छाई पे फोकस करना है, ध्यान रखना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रॉब्लम्स को हटा दूं, जो मेरी फीलिंग्स है उनके बारे में नहीं सोचूं। बिल्कुल मुझे उसका ध्यान रखना है और चैलेंजेस पे भी ध्यान रखना है कि चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करूंगा। तो इसका फिर कनेक्शन क्या है? तो कनेक्शन ये है कि एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जो मैं अपनी ट्रेनिंग्स में भी बात करता हूं, अक्सर बात करता हूं, कैन आई डू इट और हाउ कैन आई डू इट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कैन आई डू इट और हाउ कैन आई डू इट, दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेहतर है?
0: हाउ कैन आई डू इट,
1: एग्जैक्टली। तो यही एटीट्यूड की हम बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम मेरे सामने कोई आई तो अगर मैं ये फोकस करता हूं कि क्या मैं कर पाऊंगा, तो मैं 50% पॉजिटिव टू 50% नेगेटिव हूं, राइट? यानी कि आई एम मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव। लेकिन जैसे मैं कहता हूं हाउ कैन आई डू दिस, हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो मैंने अज्यूम कर लिया है और यही मेरा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है कि मैं इसको कर सकता हूं। अब मुझे सिर्फ वो जरिया ढूंढना है जैसे मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा या कर पाऊंगी।
0: पॉजिटिव रहने के लिए आपको प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, बस ये सोचना है कि हाउ कैन आई डू इट,
1: यस, मैं उसको सॉल्व कैसे कर सकता हूं, कर सकती हूं।
0: हाँ, और ऐसे सवाल बहुत सारे सबके मन में होंगे कि आप पर्सनली क्या फील कर रहे होंगे, जैसे आपकी प्रॉब्लम अलग हो सकती है और आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में जरूरत होती है कि आप किस तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकलें, कौन गाइड करे, और उसके लिए मोटिवेशनल स्पीकर से बढ़िया क्या हो सकता है रास्ता, जब वो आपको बताए कि आप पॉजिटिव रहते हुए अगर सोचेंगे तो रास्ता भी अपने आप निकल जाएगा। फिलहाल हमारे साथ कौन है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: हाँ, एंकर मैम को नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार सर, आपका नाम बताएं सर पहले।
2: हाँ, और टॉपिक रिलेटेड सर को भी नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
2: सर इसको राजेंद्र कहते हैं और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी, नमस्कार राजेंद्र जी, बताइए प्लीज।
2: मेरा तो सवाल ये है कि कहते हैं कि जैसा आप खाओगे अन्न वैसा बनेगा तन मन।
1: बिल्कुल सर।
2: तो घरेलू स्तर पर ही पहला इसका उपाय बताएं कि हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, घर में हमें एटमोस्फेयर क्लाइमेट या सर्कमस्टांस तैयार करने चाहिए कि अगर पेड़ की जड़ ही मजबूत होगी तना ही वो पेड़ जो है आगे चल के फलेगा फूलेगा।
1: हाँ जी।
2: तो फिर हम स्कूल दफ्तर में जाते हैं, रस्ते मार सड़कों पर जाते हैं, तो उसमें

0: ऐसे को मतलब इसकी बिल्ड किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो इस बारे में प्रकाश डाले। सर इन दोनों में बहुत ज्यादा मानसिक डिजीज से परेशान हूँ, कुछ शारीरिक डिजीज से भी हूँ सर।
1: हाँ जी सर। सर आपके सवाल के दो हिस्से हैं तो मैं दोनों को ब्रीफली डिस्कस करना चाहूंगा। पहला आपने बोला खाने के ऊपर, तो मैं उसको थोड़ा ब्रॉड कर रहा हूं कि हमारा रहन सहन खान पान कैसा होना चाहिए। ओके, यानी कि सबसे पहले देखिए मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम वेजिटेरियन रहें तो अच्छा है। मैं कुछ नॉन वेज के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन ये मेरी सोच है, मेरा मानना है। तो सबसे पहले हम अगर वेजिटेरियन रहें, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स सब्जियां खाएं, जितना घर का खाना खाएं हम, फास्ट फूड कम खाएं, अगर खाना ही है तो हफ्ते 10 दिन में एक बार। तो ये खाने की जो बात है उससे हमें बिल्कुल हेल्प मिलती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो वेजिटेरियन खाना खाने के लिए ही बना है, हमारे दांत वैसे नहीं है जैसे बाकी जानवरों के होते हैं। ये खाने की बात हो। दूसरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबह थोड़ा जल्दी उठे, मैं ये नहीं कह रहा हूं 4 बजे उठे, उठ सके तो बहुत अच्छी बात है, 5 बजे 6 बजे उठे, सुबह उठे, पार्क में जाएं, पार्क में थोड़ा समय लगाएं, मेडिटेशन करें, जो हम आगे भी बात करेंगे जरूर इसके ऊपर, पार्क में नंगे पैर चले और घास को मिट्टी को अपने पैरों पे लगने दें, और जितनी देर के लिए भी जाएं, अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटा, टाइम थोड़ा कम है तो आधा घंटा 15 मिनट, लेकिन जितनी भी देर के लिए जाएं मोबाइल को ना लेके जाएं। हाँ, घर वालों को बता दें आप कहाँ जा रहे हैं और लगभग उतने टाइम में वापस आ जाएं, और मोबाइल ना लेके जाएं, दैट मीन्स 100%

0: तो बहुत हद तक पॉजिटिव रह सकते
1: हाँ
0: हैं।
1: जी
0: और एक सवाल आ रहा है, अवनीश कुमार मेरठ से लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं कि हम किसी से लड़ाई करते हैं, उससे बात करते हैं कि अब मैं प्यार से बात करूंगा, मतलब ऐसा उसके बाद हम बात करते हैं लड़ाई के बाद, और गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन दूसरी साइड से ऐसी बात फिर से हो जाती है जिससे फिर से गुस्सा आ जाता है, तो इसे कैसे कम कर सकते हैं?
1: मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल लूंगा कि जब हम संतरे को, नींबू को, किसी भी चीज को ऐसे निचोड़ें तो क्या निकलेगा उसमें से? मैं बताएं क्या निकलेगा? संतरे में से क्या निकलेगा निचोड़ेंगे तो?
0: निकलेंगे
1: राइट, संतरे का जूस ही निकलेगा,
0: हाँ,
1: नींबू का तो नहीं निकल सकता, और नींबू को निचोड़ेंगे तो क्या निकलेगा?
0: नींबू का
1: नींबू का रस। यानी जो मेरे अंदर होता है वही बाहर निकलता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, देखिए हमें उस तरफ जाना ही नहीं है। आई नो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन लाइफ इतनी सिंपल है, हम इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सामने वाला क्या कहेगा, कब कहेगा, कैसे कहेगा, क्या उसकी टोन है, क्या वर्ड्स यूज करेंगे, मेरा कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल सिर्फ मेरे बिहेवियर पे है। तो मुझे अपने आप पे काम करना है। और यहीं पर मैं आपको एक प्रेयर दूंगा, पहले इंग्लिश में बोलूंगा फिर उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा ब्रीफली। आप चाहे तो लिख सकते हैं, गॉड गिव मी दी सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब है पीसफुलनेस। गॉड गिव मी दी सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। भगवान मुझे वो शांति दो उन चीजों को स्वीकार करने के लिए जो मैं नहीं बदल सकता हूँ। सेकेंड लाइन इज गॉड गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन चेंज। भगवान मुझे शक्ति दो उन चीजों पे काम करने के लिए जिसपे मेरा कंट्रोल है, जिसपे मैं काम कर सकता हूँ। और तीसरी लाइन है एंड गिव मी द विजडम टू नो द डिफरेंस, और मुझे सद्बुद्धि दे दोनों का अंतर जानने के लिए, यानी कि किस चीज पे मैं काम कर सकता हूँ, किस पे मुझे फोकस करना है और किस चीज को छोड़ देना है। सो अब यहाँ पर मैं वापस आपके पॉइंट पे आऊंगा मैम, कि जो किसी ने कहा क्या मेरा उस पे कंट्रोल है?
0: बिल्कुल नहीं,
1: नहीं है। लेकिन मैं क्या जवाब दूंगा, नहीं दूंगा, कैसे जवाब दूंगा या चुप रहूंगा, मेरे पे कंट्रोल है?
0: सर कई बार नहीं रहता
1: तो इसका मतलब है मुझे मेरे पे काम करना है।
0: हाँ।
1: अगर मेरा मेरे पे कंट्रोल नहीं है तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि दूसरा मेरी बात को मान लेगा, समझ लेगा? एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूँ, अपनी ही बात कर रहा हूँ, कि किसी हैबिट को मुझे पता है जो मेरे में अच्छी नहीं है, मैं बदलना चाहता हूँ, पूरी 100% प्रयास करता हूँ लेकिन नहीं बदल पाता हूँ। यानी वो एक आदत जो मुझे पता है गंदी है मेरे में, बदलना चाहता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ, नहीं बदल सकता हूँ। तो जब मेरा मेरे पे कंट्रोल नहीं है तो मैं दूसरों पे अपना कंट्रोल कह के भावनाओं से या सोच में कैसे ला सकता?
0: बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है डॉक्टर बलराज सैनी से बातें चलती रहे, और लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले एक गाना सुन लेते हैं फिर लौट कर आते हैं और देखते हैं सकारात्मक कैसे रह सकते हैं।

0: करेंगे।
1: सकारात्मक रहना सबसे बड़ा चैलेंज होता जा रहा है आज की लाइफ में। आज की जब लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, तो ऐसे में जरूरत पड़ती है कि कोई तो हो जो हमें गाइड करे, और मोटिवेशनल स्पीकर हो तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और आज हमारे शो में है डॉक्टर बलराज सैनी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है। मैं गोनू, मैं तो हूँ बबीता त्रिपाठी, आपकी अपनी आरजे हमेशा की तरह। आप भी तो सकारात्मक रहने का पूरा हक रखते हैं ना, तो फटाक से जो हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
2: हेलो
3: हेलो,
1: चलिए फाइनली आप आ गए। आप अपना नाम बताइए और सवाल भी दोहराइए।
3: मैं बात कर रहा हूँ क्या?
1: जी आप ही बात कर रहे हैं।
3: ओके जी, मेरा जगीर है और मैं मोहाली से बोल रहा हूँ।
1: जी जगीर जी बताइए।
4: जगीर जी नमस्कार, डॉक्टर बलराज सैनी बोल रहा हूँ। हाँ जी सर बताइए आपका सवाल।
3: बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। मेरा क्वेश्चन मैंने बताया है, मेरा गुस्सा कंट्रोल सब जगह हो जाता है सिवाय बीवी के।
4: ओके
3: तो जब भी हम मैं घर में जाता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत नेगेटिविटी है घर में।
4: ओके
3: तो हमारी बात तो शुरू होती है लेकिन वो झगड़े में पहुंच जाती है, झगड़े मीन आर्गुमेंट में। तो इसका क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है?
1: चलिए आप रेडियो पर जवाब सुनिए और सर बताइए प्लीज।
4: हाँ जी देखिए, जगीर जी का बहुत अच्छा प्रश्न है
1: और बहुत इंटरेस्टिंग है।
4: हाँ जी,
1: ये सब पे कंट्रोल हो जाता है, बीवी पे नहीं होता है, तो ये मुझे जानना है आपसे।
4: सबसे पहले क्या हम उनको इक्वल पार्टनर मानते हैं? देखिए कहना और बात है, बेटर हाफ हम बोलते हैं, इक्वल पार्टनर हैं जब हम फेरे ले रहे होते हैं, लेकिन क्या हम उनको वो प्रॉपर रेस्पेक्ट देते हैं? और जब हम प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं देते हैं तो हमारी सुनने की क्षमता अपने आप कम हो जाती, क्योंकि जब मैं ये कहता हूं या सोचता हूं कि मैं आपसे बेहतर हूं, तो मेरी थॉट प्रोसेस ये रहती है, ये सोच रहती है कि मेरी बात सुनो, मैं सही कह रहा हूं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सुने, और वो हर जगह एप्लीकेबल है, यहां पर और ज्यादा एप्लीकेबल है। अब यहां पर अधिकतर हस्बैंड्स शायद ये कह सकते हैं कि हम सुनते ही रहते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि एक्चुअली हम सुन नहीं रहे होते हैं, हम टाइम दे रहे होते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। सो इसको मैं फिर दोबारा से बोलूंगा कि प्रॉपर रेस्पेक्ट दें, उनको ध्यान से सुने। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये आता है कि इसका मतलब ये है कि बाई चांस उन्होंने जो चीज बोली जिससे मैं सहमत नहीं हूं तो मैं सहमत हो जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले उनको रेस्पेक्ट दें, उनकी बात को ध्यान से सुने, और ये सुनने के साथ ये समझने की कोशिश करें कि वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, कहां से वो, जिसको हम बोलते हैं वेयर इज शी कमिंग फ्रॉम, किस पॉइंट से आ रही है, क्या थॉट प्रोसेस है। और उनसे पूछें कि क्या आपकी बात खत्म हो गई है, आपका पॉइंट कंप्लीट है, और फिर आप अपनी बात को रखें और उनको अपनी बात सही ढंग से समझाने की कोशिश करें। सो क्रक्स ये है कि पूरा रेस्पेक्ट दें, बराबर समझें, और वो हैं, उनकी बात को ध्यान से सुने, समझें, उस पे सोचें, और फिर अपना व्यू पॉइंट रखें, और फिर वो आपकी बात को जरूर सुनेंगे। और ये ना सोचें कि उनकी बात सही है या मेरी बात सही है, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, वो हो सकता है दोनों की बातों को मिक्स करके भी आ सकता है।
1: एक सवाल इसी तरह का और आ रहा है, जब घर के माहौल की बात हो ही रही है और खास तौर पर मियां बीवी की जो लड़ाई होती है, नोकझोंक होती है, अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, उस पर बात कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि आज की लाइफ उस तरह से नहीं है कि हम टाइम दे पाए, बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं।
4: हाँ जी।
1: तो इसी तरह की एक क्वेरी आई है अरविंद की, ये ऋषिकेश में रहते हैं। इन्होंने लिखा है, 4 साल शादी को हो गए हैं, मेरी पत्नी और माँ के बीच संबंध ठीक नहीं है, आए दिन कुछ न कुछ बातों को लेकर झगड़ा होता ही रहता है, और एक दो बार दोनों के बीच हाथापाई भी हो चुकी है। इस वक्त मैं अपने गाँव में परिवार के साथ आया हूँ, ये लड़ाई झगड़ा जैसा माहौल बना हुआ है, इस समस्या का हल बताइए।
4: इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और सैड, लेकिन ये काफी फैमिलीज में होता है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि दोनों को समझना है और आप समझाएं अकेले में, क्योंकि कभी कभी मदर्स को ये लगता है कि जहां पर, एक बहुत सिंपल वे में कह रहा हूं कि मेरा बेटा 100% मेरा था, अब वो मेरा नहीं रहा, तो उनको इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना है, उस सोच से बाहर निकलना है।

0: क्योंकि माँ की जगह कोई नहीं ले पाएगा। हम 100% या 90 या 50 में नहीं जाएं, अब तो शेयर करना पड़ रहा है मेरा 50% नहीं, माँ अपनी जगह है। और सिमिलरली वाइफ को भी ये समझना है कि वो उनका बेटा है तो वो 100% मेरे नहीं हो सकते हैं। सो अगेन, लेकिन मेरा एक स्थान है उनकी लाइफ में, वो कोई नहीं ले सकता। तो ये उनको समझाना है सबसे पहले अकेले अकेले, और दूसरा स्पेसिफिकली मदर से भी बात करें अकेले और वाइफ से भी बात करें अकेले कि क्या चैलेंजेस आते हैं। कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातों पे चैलेंजेस आते हैं। मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट आप लोग हंसेंगे क्योंकि मैं बहुत ही ब्रीफली अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं मैरिड नहीं हूँ लेकिन अपनी मदर के साथ एग्जांपल दे रहा हूँ कि मम्मी मुझे किचन में कुछ काम करने को बोलती हैं तो उसी के साथ मुझे 5 इंस्ट्रक्शंस और दे देती हैं कि ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना है। तो मैं मम्मी को पोलाइटली बोलता हूँ कि आपको काम चाहिए या आपके तरीके से चाहिए।
1: ओके
0: राइट, अब देखिए ये बहुत छोटी सी चीज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो काम सही करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन पहले मुझे अपने तरीके से वो काम करने दें। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है तो शायद सास और बहू के बीच में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जब वो घर में रहती हैं तो अगेन मैं किसी को सही या गलत नहीं बोलूंगा, सास ये सोचती हैं कि मैंने 20 30 40 साल से मुझे पता ये काम ऐसे होना चाहिए, और सिमिलरली वाइफ को लगता है कि मुझे भी पता है।
1: हाँ, तो तरीका अलग है,
0: तरीका अलग है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को समझें, और अगर सिंपली मेरे से पूछे तो मैं कहूंगा कि वाइफ को थोड़ा सा ज्यादा समझना है क्योंकि बुजुर्ग जो हो जाते हैं उन पे धीरे धीरे उनका अपने पे अपनी सोच पे कंट्रोल कम होता है, और दूसरा उनको कुछ ना कुछ फिजिकल चैलेंजेस होते हैं जो वो चाह के भी बता नहीं पाते, तो एक ओवरऑल उनकी लाइफ में इरिटेशन बनी रहती है जो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति पे आती है जिस पे हमारा थोड़ा सा ज्यादा जोर चलता है।
1: जो आपने अभी इससे पहले वाला जो सवाल लिया था उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि क्योंकि वाइफ पे ही ज्यादा जोर चलता है तो गुस्सा भी उन्हीं पे उतारा जाता है,
0: उतरता है। हां जी,
1: तो ये पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं और ये नेगेटिव वे में ले सकते हैं, कई बार ये गलत इसका रिजल्ट हो जाता है।
0: हाँ जी,
1: एक सवाल आ रहा है, लेते हैं। हेलो
2: हाँ नमस्ते
1: जी, नमस्ते, आपका सवाल बताइए। जी बताइए।
2: मेरा सवाल ये है सर।
0: हाँ जी,
2: आदमी मेरा दो जाता है 70-75 साल की एज में पहुंच जाता है, अब बच्चे जवान होते हैं तो वो बुजुर्गों की कदर नहीं करते, और जो उनकी जो वाइफ है बच्चों की उनका कहना ज्यादा मानते हैं।
0: ओके,
2: तो अब जिन वृद्धों ने पूरी जवानी मतलब बच्चों के लिए होम कर दी,
0: हाँ जी,
2: और उनको मतलब बुढ़ापे में वो की मदद नहीं करते, सहायता नहीं करते, तो वृद्धों के वृद्ध आदमी के पास संपत्ति भी काफी है,
0: हाँ जी,
2: और लेकिन वो मोह माया में उसको ना तो देख सकते हैं, वो देखने का नाम भी लेते हैं तो जवान बच्चे धमकाते हैं। तो इसका क्या सरल उपाय है सर बताने के?
1: अब आप प्लीज रेडियो पर सुनिए और सर बोल रहे हैं हमारे एक्सपर्ट।
0: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपकी फैमिली के लिए नहीं, हर एक की फैमिली के सब बुजुर्गों के लिए, जैसे ही आप रिटायरमेंट की तरफ जाएं, आपके पास अपनी लाइफ के लिए पैसा होना चाहिए। बच्चे कितने भी अच्छे हों, बेटा बेटी जो भी हैं, सबसे पहले अपनी जरूरतों का ध्यान रखते हुए मैं कहूंगा, मैं 70-80 की बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा 90-100 साल तक की आप लाइफ बिना किसी पे निर्भर हुए जी पाए, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना। अब दूसरी बात ये है, देखिए, जिसको मैं इस तरीके से कहता हूं कि मैंने किसी को बात समझाई एक बार दो बार तीन बार और वो नहीं समझ रहे हैं, तो मुझे समझना है कि वो सुनना नहीं चाहते हैं, वो समझना नहीं चाहते हैं, तो मुझे फिर पीछे हटना है। क्योंकि आपकी अगर एज 75 है तो आपका बेटा बेटी बहू अगर ज्यादा नहीं तो 40-50 के बीच में होंगे, तो उन्होंने भी लाइफ देखी है। सही गलत नहीं कहूंगा मैं, हो सकता है कि उनके विचार आपसे नहीं मिलते हैं, तो आप प्यार से एक बार दो बार समझा दें, लेकिन नेगेटिविटी नहीं लेके आए। क्योंकि अगर किसी ने समझना है, आपके लिए कुछ करना है, तो वो एक या दो बार में कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और फिर भी आपको चैलेंज आता है तो बिना नेगेटिव हुए आप उनकी बात को सुने। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि मैं बुजुर्ग हूं, मैंने जिंदगी देखी है, आपने उतनी जिंदगी नहीं देखी है, तो मैं सामने वाले की बात को ध्यान से सुनता नहीं हूं, समझता नहीं हूं।
1: और कई बार उनकी सिचुएशंस उनकी लाइफ की अलग रही होंगी और अब अलग है, तो वो अलग तरीके से जो बच्चे होते हैं वो डील कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि बुजुर्ग हैं और इन्होंने अपनी जिंदगी देखी है तो इनको समझ में नहीं आ रही होती। या इसी तरह से बच्चों के साथ भी हो सकता है कि बच्चे नहीं समझ पाते कि उसको

0: बेटर तरीके से किस तरह से और डील किया जाए, क्योंकि ये इनका एक्सपीरियंस है और वो गलती कर बैठते हैं उसके बाद वो उस चीज को समझ पाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो ऐसी भी कई बार संभावनाएं होती
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल, इनफैक्ट बबीता जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये रेज किया है कि यहीं से मैं आगे लूंगा कि एक दूसरे के सिचुएशन को समझें। हम फोकस इस पे ना करें कि वो मेरी बात को नहीं सुनते हैं, सोचें कि भाई ठीक है मैं पहले इनकी सिचुएशन को समझूं। हो सकता है कि उनके लिए अपनी नौकरी को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है तो वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और आपको लगता है मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो टाइम देना चाहते हैं। और मान लीजिए फिर 5 या 6 दिन वो काम कर रहे हैं तो थोड़ा वाइफ को फैमिली को टाइम देते हैं, तो ना चाहते हुए भी आपके लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं।
0: सर ये रिश्तों पर ना बहुत लंबा हमें लगता है डिस्कशन करना पड़ेगा, और तभी जाके हम किसी न किसी एक पॉजिटिव निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपकी जो बातें हैं ना वो काफी इंटरेस्टिंग लग रही हैं और मैं चाह रही हूँ कि वो चलती रहे। लेकिन इससे रिलेटेड एक बड़ा फनी सा बड़े मजेदार सा गाना मुझे याद आ गया और मैं चाह रही हूँ वो चला देते हैं, उसके बाद इसी को कंटिन्यू करते हैं।

0: डरना क्या जरूरी है? सर आप बताइए कि ये जो जमाना बदल गया, इसमें मतलब आप कहाँ से पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं? ये अच्छी बात है या ऐसा ही होना चाहिए?
1: देखिए, डरना ऑफ कोर्स डरना तो नहीं है, लेकिन मैं इसको बैकग्राउंड में जाके सोच रहा हूँ कि जब मैं पहले अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता था या समझती थी, तो जब मुझे उस लेवल से नीचे आ रहा है तो वहां पर वो डर पार्ट आ रहा है। तो लेकिन डर ना सोचे, ये सोचे कि हर इंडिविजुअल, हर आदमी एक ह्यूमन बीइंग है, बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो फैमिली में है, चाहे वो रोड पे है, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे वो मेरा बच्चा है, चाहे वो मेरे ग्रैंडफादर है। तो सबसे पहले हमें उनको एज अ ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्ट देना है, चाहे हम उनसे अग्री करें या ना करें। और यहीं पर मैं एक पॉइंट छोटा सा बोलूंगा कि डिसएग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम उनको रिस्पेक्ट ना दें। रिस्पेक्ट देते हुए भी हम असहमत हो सकते हैं। तो ये हमें समझना है। असहमत होने का मतलब ही नहीं है कि मैं आपके ऊपर किसी पे शाउट करूं। आपकी बात को सुनूं, समझूं, सहमत नहीं हूं पहले सुनूं, फिर अपनी बात को रखूं, लेकिन बीच में डिसरेस्पेक्ट कहीं पर भी नहीं आनी चाहिए।
0: सर, इसी तरह से जो रिश्तों में जो तनाव की हम बात कर रहे थे और अभी जमाना बदलने की भी बात कर रहे थे, जमाना इस तरह से भी बदल गया है कि पहले हम अपने पेरेंट्स से बड़े डरे डरे रहते थे कि उनको कुछ बुरा नहीं लग जाना चाहिए और उनकी तरह से हम सब कुछ करें तो हम बहुत अच्छे बच्चे कहलाएंगे, और अब हम एज अ पेरेंट्स डरे डरे रहते हैं कि बच्चों के हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए ताकि बच्चों को बुरा ना लगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ ऐसा फील कर ले स्कूल में, कॉलेज में या फिर घर में जो दिल पर ले बैठे। तो हम क्या डरे डरे ही रहेंगे क्या? हमारी जो पीढ़ी है वो इस तरह से रहेगी या क्या प्रॉब्लम आ रही है?
1: देखिए मैम, बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल उठाया है और मुझे याद आ गया, जो ब्रीफली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें एक टर्म थी बुलडोजर पेरेंट।
0: अच्छा,
1: बुलडोजर पेरेंट का मतलब है अपने बच्चों की लाइफ की सारी प्रॉब्लम को हटाते रहते हैं। हाँ। मेरे बच्चे को कोई दुख ना हो। मैं कहूंगा कि ये सबसे गलत बात है, क्योंकि अगर मैंने बच्चे को बड़ा होने तक, लेट से मोटा मोटा 18 साल तक, मैंने उसको कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं होने दी, तो उनमें वो रेजिलियंस नहीं आएगी, क्योंकि हर टाइम पर तो पेरेंट्स बच्चों के साथ नहीं रह सकते हैं, तो वो उनमें वो थॉट प्रोसेस डेवलप

0: नहीं हुआ कि जब प्रॉब्लम आएगी तो कैसे उसको हैंडल करना है, वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या करना है क्योंकि पेरेंट्स ने डिसीजन लिया है. तो मैं इनडायरेक्टली आपके इस सवाल का जवाब दे रहा हूं, एक बैलेंस क्रिएट करना है, डरने वाली कोई बात नहीं है. हाँ, लेकिन यहां पर चूंकि माहौल बदल गया है, बच्चों के पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी है और वो ले सकते हैं, तो बच्चों से एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना है. लेकिन जहां पर हमें उनको ये समझाना है, बताना है, हमें वो बाउंड्री भी रखनी है, वो बाउंड्री क्रॉस नहीं होनी चाहिए. सो दो चीजें बोल रहा हूं. नंबर वन, लेट्स बी फ्रेंड्स लेकिन विद अ बाउंड्री, कि जहां हमें लगे कि अब ये बाउंड्री क्रॉस हो रही है या मुझे थोड़ा सा पेरेंट मोड में आना है तो आना पड़ेगा. लेकिन अगर पीछे जाएं तो जो अगर हम 80% या 75% या 100% पेरेंट मोड में होते थे, सो एक मोटा मोटा बोलूंगा कि अब हमें 25-30% पेरेंट मोड में होना है और 70-75% हमें फ्रेंड मोड में होना है, ताकि हम एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर पाए और वो ओपनली हमें बताएं. क्योंकि अगर हम अब भी 100% पेरेंट मोड में रहेंगे तो नंबर वन वो हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे और सही गलत इंफॉर्मेशन वो इंटरनेट से या फ्रेंड से लेंगे, जो चांसेस है गलत हो सकती है और जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है.
1: एक सवाल हमारे जो कॉलर हैं वो जुड़े हैं, वो पूछ रहे हैं. हेलो.
2: हेलो सर, नमस्ते.
0: नमस्कार सर.
2: जी, मैं मोहम्मद जावेद बोल रहा हूँ, मेरठ से.
0: हाँ जी मोहम्मद जावेद जी, बताइए.
2: सर मेरा सवाल ये है कि घर के कामों को लेकर और बहुत छोटी छोटी बातें होती है जिनको लेकर लड़ाई होती है फैमिली के अंदर.
0: हाँ जी.
2: तो उन बातों को किस तरीके से हैंडल करें, किस तरीके से समझाएं, क्योंकि लेडीज जो है कामों को बांट देती है और जेंट्स की द्वारा काम नहीं बांट सकता किसी को भी. किस तरीके से समझाया जाए.
0: देखिए सर, सर जैसे ही आपको नहीं बोल रहा हूँ, जैसे ही मैं बोलता हूँ ना कि मैंने आपको समझाना है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप गलती कर रहे हो, मैं तो सही हूँ.
1: जी बिल्कुल.
0: तो हम दोनों को बैठ के समझना है. फिर वापस उसी पॉइंट पे आते हैं कि सबसे पहले सामने वाले की लाइफ में क्या चैलेंज है, चाहे वो घर का काम है, सुने समझे, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, उनकी सिचुएशन को समझें और मिल बैठ के उसका एक सॉल्यूशन ढूंढें. जब जब मुझे ये लगता रहेगा कि मैं ठीक हूं जाने या अनजाने में और सामने वाला गलत है, हम कहते नहीं है लेकिन थॉट प्रोसेस ये है, तो सिचुएशन ऐसी रहेगी. क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने मन के अंदर से, अपने थॉट प्रोसेस से वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा हूं दूसरे के लिए और वो नेगेटिव वाइब्स, वो नकारात्मकता दूसरे तक जाती है.
1: तो सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपने एक प्रेयर की बात की थी और कुछ बातें आपने बहुत अच्छी बोली थी जो मैं चाहती हूँ वो मिस ना हो, और उनको आप पहले बोल दीजिए, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तभी हम कंटिन्यू करेंगे और सवालों के साथ, क्योंकि सवाल लगातार आ रहे हैं और बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम. तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अब पॉजिटिविटी हम क्रिएट कैसे करें अपने अंदर. हर एक की सिचुएशन अलग होती है, हर एक की सिचुएशन में चैलेंज है. तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि धन्यवादी रहें, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैटिट्यूड, फील ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड. जो भी मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद रहें, धन्यवाद देते रहें. और यहां पर मैं कुछ लाइनें आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत अच्छी लगती हैं. जब भी मैं ग्रैटिट्यूड की बात करता हूं तो ये लाइनें मेरे दिमाग में आती हैं. और इनफैक्ट यहीं पर मुझे ध्यान आ रहा है उससे पहले कि यहीं पर इसी मंच पर ऑल इंडिया रेडियो पे एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड पे मैंने एक प्रोग्राम किया था. सो वो भी आप देख सकते हैं. सो कुछ लाइनें इस तरीके से हैं. समय की अनवरत बहती धारा में अपने चंद सालों का हिसाब क्या रखूं, समय की अनवरत बहती धारा में अपने चंद सालों का हिसाब क्या रखूं, जब जिंदगी ने दिया बेशुमार, जब जिंदगी ने दिया बेशुमार तो जो ना मिला उसका हिसाब क्या रखूं.
1: वाह क्या बात की.
0: जब जिंदगी ने दिया बेशुमार तो जो ना मिला उसका हिसाब क्या रखूं, दिन है उजालों से भरपूर यहाँ, दिन है उजालों से भरपूर यहाँ तो रात के अंधेरों का हिसाब क्या रखूं, दिन है उजालों से भरपूर यहाँ तो रात के अंधेरों का हिसाब क्या रखूं, जब जिंदगी ने दिया शुमार तो जो ना मिला उसका हिसाब क्या रखूं.
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो सर प्रेयर आपने बोली थी. जी
0: हाँ जी हाँ जी. उस पॉइंट पे भी आता हूँ मैम कि धन्यवाद रहें जो भी है. और इसी में एक चीज और करूंगा कि थोड़ा सा आप दूसरे तरीके से भी सोचे धन्यवाद होते हुए, कि आज जो मेरे पास है वो नहीं होता तो क्या होता. तो आप और ग्रेटफुल धन्यवादी फील करेंगे। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से हम अपने आप से बात करते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कि अपने आप को कभी भी नेगेटिव नहीं।

0: ही कहना है। जब कोई नेगेटिव चीज आती है तो उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिप्लेस कर दें। मान लीजिए एक नया चैलेंज आया, इशू आया, प्रोजेक्ट आया, यार मेरे से क्या हो पाएगा, तो इमीडिएटली हाँ मैं कर सकता हूँ। पुराने चैलेंजेस इश्यूज को सोचें, यार वो जो प्रॉब्लम आई थी तो वो भी तो किया था मैंने, ये भी कर सकता हूँ। या अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आज आपको बड़ी लग रही है लेकिन अगेन पिछली चीजों को देखें, उस पॉइंट पे वो भी आपको बहुत बड़ा लगता था। सो अपने आप को ये कहते रहें कि मेरे में कैपेबिलिटी है और मैं कर सकता हूं, तो वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक मुझे रखनी है। और यहीं पर मैं एक चीज और ऐड करूंगा, पहले मैं उसको इंग्लिश में बोलूंगा फिर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। वी आर अ सम ऑफ स्टोरीज वी टेल आवरसेल्फ्स, यानी कि मैं जो भी स्टोरी अपने बारे में अपने आप को बताता हूं वही मैं बनता हूं। तो अगर मैं बताता हूं मैं बहुत अच्छा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो ये स्टोरी मैं अपने आप को बता रहा हूं, तो मैं पॉजिटिव रहूंगा, कर पाऊंगा। और यही मैं कहूंगा, यार मेरी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, तो ये एक स्टोरी मैं बता रहा हूं। तो मैं इनडायरेक्टली, पता नहीं ये क्यों होता है, तो मैं वो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो वो नेगेटिव स्टोरी मैंने क्रिएट की है अपने लिए, और उसी तरीके से नेगेटिविटी को मैं और अट्रैक्ट कर रहा हूं। तो ये हमें ध्यान रखना है। और दो पॉइंट्स मैं और बताऊंगा कि हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। एक माइंडफुलनेस, जहां पर भी हैं आप उस जगह पे फोकस रहें। आजकल बहुत जगह होता है मल्टीटास्किंग करनी है, मैं कहूंगा जहां पर भी रहें वहीं पर फोकस रहें, 100% अटेंशन दें। इससे हम बहुत रिलैक्स होते हैं। और मेडिटेशन करें, आप पार्क में नहीं जा सकते, 5 मिनट 10 मिनट सिर्फ बैठें, तो धीरे धीरे आपको रिलैक्सेशन मिलती है, क्लैरिटी आती है, एक्सेप्टेंस आती है, पॉजिटिविटी आती है। और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉजिटिव रहने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव लोगों से, पॉजिटिव किताबों से, पॉजिटिव थॉट से सराउंड करें। जिम रॉन एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस मोटिवेशन स्पीकर हैं, वो कहते हैं यू आर अ सम ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। तो आप जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जैसे वो हैं वैसे आप बन जाते हैं। तो अगर आप मान लीजिए पॉजिटिव नहीं भी हैं, तो पॉजिटिव लोगों की संगत रखें, उनसे बातचीत करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी थॉट्स रखें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप में पॉजिटिविटी और आ जाएगी।
1: और डॉक्टर बलराज चैनी, आज आपकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर पॉजिटिविटी ऑलरेडी आ चुकी है, और मन तो ऐसे ही कर रहा है कि आपकी बातें ऐसी ही चलती रहे और हम सुनते रहें। अपने जीवन में सकारात्मकता कैसे अपनाएं, इस पर हम और डिटेल में बात करना चाहते थे, लेकिन समय है जो कह रहा है कि अभी बस करते हैं, फिर कभी कंटिन्यू करेंगे। और सर, अगर 2 पॉइंट्स आप चाह रहे हैं कि कुछ और ऐड करें तो फटाफट कर दीजिए।
0: हाँ जी, थैंक यू मैम। और एक तो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, और शायद आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा, आप इनका नाम नोट कर सकते हैं, होकाइतो जी मोमो, HOKAITO, होकाइतो जी मोमो, ZHIMOMI। अब मैं क्यों इनकी बात बता रहा हूं, ये 2008 में पहले क्रिकेटर बने नागालैंड से IPL में खेलने के लिए, इंटरेस्टिंग, लेकिन कभी ये फाइनल 11 में यानी मैच नहीं खेल पाए। सो अब इनके पास देखिए 2 ऑप्शंस थी, या तो ये कह सकते थे कि मेरे को तो खेलने का मौका नहीं मिला, मैं परेशान रहूंगा, या ये सोच सकते थे कि मैं फाइनल 11 तक पहुंचा, जो बचपन से जिन लोगों को मैंने क्रिकेट खेलते देखा, जो मेरे आइडोल थे सौरभ गांगुली, रिकी पोंटिंग, मैंने उनके साथ रूम शेयर किया, उनके साथ खेला, उनके साथ उनसे सीखा, यानी कि ये चॉइस हमारी है कि हम किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिवली देखेंगे या नेगेटिवली देखेंगे। तो और इन 3 लाइनों के साथ आपसे विदा लूंगा, हमेशा ये ध्यान रखें और कहते रहें अपने आप को, बल्कि 4 लाइनें हैं, आई एम स्ट्रांग, आई एम केपेबल, आई चूज टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन, एंड द लास्ट इज एवरीथिंग इन एवरी वे इज गेटिंग बेटर एंड बेटर इन माई लाइफ। आप सब श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद आपका कि इतनी बढ़िया बातें आपने कही, और इन खूबसूरत लाइनों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप स्टूडियो में आए और इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई, जिससे हमारे जीवन में तो सकारात्मकता ऑफ कोर्स बढ़ने वाली है। तो फिलहाल इसी के साथ मुझे बबीता त्रिपाठी को भी इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे जल्दी। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।
2: रेनबो हेल्पलाइन का आज का कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया गया। इसी के साथ आज का रेनबो हेल्पलाइन यहीं समाप्त होता है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
5: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
7: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
8: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
7: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
8: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
7: और विनर्स को क्या मिलेगा?
8: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
7: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
9: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
10: पता का चाय गजब का स्वाद।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गर्मियां इस समय बहुत ज्यादा, और ऐसे में हमारे होम मेकर जो हैं वो सबसे ज्यादा चिंता उनको इस बात की सताती है कि क्या हमारा खाना ठीक है, क्या हम इसे खा सकते हैं, हमें कैसा खाना खाना चाहिए, बस कैसा बनाना चाहिए, हाइजीनिक है या नहीं है। बस इसी चिंता में हमारी जो होम मेकर्स होती हैं ना वो घुली रहती हैं और बस अपने परिवार की सेहत की चिंता करती रहती हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज का आशियाना कार्यक्रम वुमेन स्पेशल मैं लेकर आई हूँ बबीता रावत। जुड़े रहिए मेरे साथ आशियाना प्रोग्राम में। हमारा और आपका तो दिल का रिश्ता है, और इस दिल के रिश्ते को यूं ही बरकरार रखते हुए आप और हम साथ साथ बहुत सारी बातें करेंगे।

भाई दिल का रिश्ता बहुत ही प्यारा है, और ये प्यारा सा बंधन तब ज्यादा मजबूत हो जाता है जब मुंह का स्वाद उसमें चढ़ जाता है। जी हाँ, कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट के रास्ते से जाता है, और पापी पेट का सवाल है। और जीने के लिए खाना जरूरी है, लेकिन खाना अगर साफ सफाई वाला ना हो तो बीमारियां हो सकती हैं। और खाने को गलत तरीके से पकाया जाए, सिर्फ पेट भरने के लिए खाया जाए, ऐसा तो नहीं है ना। फायदा तो तभी पहुंचेगा जब वो बिल्कुल सुरक्षित हो और साथ ही साथ हाइजीनिक हो। और जब हाइजीन की बात की जाती है तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। हम अक्सर घर के खाने की बात करते हैं, और घर के खाने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि जो घर में पकने वाला खाना है वो बिल्कुल हाइजीनिक है और हमें ये बीमार नहीं कर सकता। पर कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं हमसे वो चूक होने की वजह से इसका असर कहीं ना कहीं हमारी जो सेहत है उस पर दिखाई देता है। वो चूक कौन सी होती है मैं बताती हूँ आपको। सुनते ही रहिए मेरे साथ आशियाना वुमेन स्पेशल में। मैं हूँ बबीता रावत, आज आपके साथ।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: पानी पानी पानी पानी से जीवन हमारा, कैसे बचाए इसको मिलकर सोचे जरा। पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाए इसको सबके लिए। दोस्तों, तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है, हमारे तालाबों को बचाना है, तालाबों की रखरखाव की जिम्मेदारी लें, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम है आशियाना विमेन स्पेशल। और हमारे घर की जो विमेन है ना, वो स्पेशल इसलिए होती हैं क्योंकि वो हर घर में सेहत की स्वामी होती हैं, और सेहत का सीधे रास्ता हमारे पेट से जाता है। जब पेट की बात आती है तो हमारे घर की जो गृहणियाँ होती हैं वो ये कोशिश करती हैं कि हमारे घर में एक पौष्टिक आहार से भरपूर थाली हमारे परिवार को मिले, और कोशिश यही रहती है। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी सी कोशिशें चूक हो जाती हैं और कहीं ना कहीं जो है सेहत में थोड़ा सा असुधार सा दिखाई देता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अपने फूड को थोड़ा सा सेफ रखें तो क्यों ना आपकी सेहत पे उसका फ़र्क साफ दिखाई देगा। जी हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हम देखते हैं लेकिन हमें समझ आती है और कभी नहीं आती हैं, जैसे कि फ्रिज में रखा हुआ खाना। हाँ, अक्सर हम लोग फ्रिज में रखे हुए खाने को रख मतलब सेफ रख समझते हैं, और कोशिश ये रहती है कि जो हमारा खाना बच जाता है वो हम फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन आपको पता है फ्रिज में रखा हुआ खाना भी कहीं ना कहीं ख़राब हो सकता है। जी हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मौसम के हिसाब से फ्रिज में रखी हुई भी ख़राब हो जाती हैं। जैसे नॉनवेज और डेयरी प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो जल्दी से जल्दी इनका उपयोग कर लेना चाहिए। कई लोग करते हैं ऐसा कि फ्रिज में नॉनवेज और डेयरी प्रोडक्ट्स रख देते हैं और काफ़ी लंबे समय तक, बहुत लंबे दिनों तक उसको यूज़ करते हैं, लेकिन बार बार फ्रिज खुलने और बंद होने की वजह से फ्रिज का जो टेम्परेचर है उसमें फ़र्क आता है, और ऐसे में जो टेम्परेचर चेंज होता है उससे नॉनवेज और डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। हाँ, कई बार हम कोशिश यही करते हैं, जैसे खाने को सूंघ करके या फिर उसकी स्मेल से हमें कोशिश करते पता लगाने की कि ये खराब हुआ है या नहीं। तो क्या ऐसा हमें करना चाहिए? जी नहीं, किसी भी वस्तु जो खाने वाली है, पकी हुई चीज है, तो उसको अगर हम सूंघ के पता लगाएंगे तो शायद स्मेल ना आए, या खा के चख के पता करेंगे तो शायद वो ना हो, उसका टेस्ट ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी सेहत को फर्क कर सकता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप फ्रिज में रखी हुई चीज़ों को इस्तेमाल जल्द से जल्द कर लें, और ख़ास तौर से पकी हुई चीज़ों को। आजकल क्योंकि गर्मियां हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक या दो दिन में ही आपको कंज्यूम कर लेनी चाहिए, और वैसे भी इतना मत बनाइए गर्मियों में खाना कि वो दो तीन दिन तक रह जाए। इतना कि हाँ भाई, अगर आज सुबह आपने कुछ खाना बनाया तो शाम तक वो चल जाए, शाम तक आप उसे यूज़ कर सके। तो ये छोटी सी बातें हैं जो आप कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में और अपनी सेहत को खुशहाल बना सकते हैं।

0: कभी कभी जो जर्म्स होते हैं ना वो ऐसे ढलते हैं, घुलते हैं और मिलते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। खास तौर से कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं, जैसे अगर एक फ्रिज में रखने वाली सामान की बात की जाए तो अक्सर लोग क्या करते हैं, गुथे हुए आटे को जो बच जाता है वो रख देते हैं फ्रिज में, और बहुत लंबे समय तक रखा रहने देते हैं और 2-3 दिन तक यूज़ करते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, गुथे हुए आटे को फ्रिज में रख कर 24 घंटे के भीतर उपयोग कर लेना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है, इससे टेस्ट भी बरकरार रहता है और क्वालिटी भी इससे इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो बिल्कुल ये काम आप ज़रूर करिए, और साथ ही साथ फल और सब्जी को काटने वाले जो चॉपर चॉपिंग बोर्ड होते हैं ना, हर किसी के घर में होते हैं, और जब स्टील वाले चॉपिंग बोर्ड की बात आती है तो शायद मैंने बहुत कम लोगों के घरों में देखा है। ज़्यादातर लोगों के घरों में लकड़ी के बने हुए चॉपिंग बोर्ड होते हैं। तो भाई लकड़ी के बने हुए चॉपिंग बोर्ड में शीशम की लकड़ी बना हुआ जो चॉपिंग बोर्ड होता है वो काफी बेहतरीन होता है, उसे इस्तेमाल करना ठीक होता है। लेकिन आप जब भी चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल करें उसे गुनगुने पानी या लिक्विड सोप से अच्छी तरह से धो ले। आजकल तो पॉली चॉपिंग बोर्ड भी आते हैं, और जिनके घरों में नॉनवेज बनता है और वो फिलहाल नॉनवेज और वेज दोनों चीजों के लिए अलग अलग चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे स्टील वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी सी टिप्स है, आप यूज़ करें इसे और देखिए फिर आपके घर की जो हाइजीन है वो किस तरह से मेंटेन रहती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब

0: सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा।
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, हम फ्रिज में सामान रखने के रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान में रखिए, जब भी कभी आप फ्रिज में सामान रखते हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली ये टेक्निक ज़रूर अपनाएं, यानी कि जो आप पहले रखें उसे पहले इस्तेमाल करें और जो आप बाद में रखें उसे बाद में इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपकी चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी और बर्बादी की जो आशंका है वो कम हो जाएगी। अभी लाल ये गाना और जुड़े रहिए हमारे साथ आशियाना कार्यक्रम में।

यार तू खुद गर्ज में है गीत तू तेरे लफ्ज में तू है दुआ और फर्ज में आजाद तू

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
1: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
1: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी।
2: उत्तपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना, पक्षियों को दाना खिलाना, डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
1: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
1: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
1: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
1: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानु यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
1: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
2: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
1: जैसे?
2: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
1: जी सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
2: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
1: तो क्या क्या नियम है इसके?
2: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
1: वाह यानी?
2: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
2: दूसरा शब्द है केई।
1: जी
2: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओं, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
2: श्रोताओं, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
2: जी, एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि ये समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
2: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
2: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
2: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
2: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
2: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
2: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
3: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
4: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ।
5: पाए लागू बड़ी बहुरिया।
6: आ गए भैया।
5: हाँ।
6: लो, ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
5: हाँ।
4: बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां

0: भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते। और हाय।
4: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया।

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है अब। पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी, आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
0: अच्छा,
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।
3: Yeah.

0: भाई साहब।
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा। घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। हाँ?

0: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रहकर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। हा? बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहां अब क्या रह गया है उसका, जमीन जायदाद तो सब चली गई। तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
5: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है। अब बबुआ, अब थोड़ा जलपान कर लो।
4: अच्छा अच्छा माँ जी।
5: अरे हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
0: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसक रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माजी के पास जा पहुंचा।
4: माजी, अब आज्ञा दीजिए।
5: अरे,
4: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माजी, अब पैन लागू।
5: जीते रहो बेटा,
4: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
4: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
4: अच्छा, राम राम।
3: राम राम
4: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक कही है, जलालगढ़ है 20 कोस दूर। हाँ? अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई, लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो, शाबाश शाबाश शाबाश। अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम सारे गांव की माँ हो। तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं अब हम निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, यहीं रहूंगी।
3: श्रोताओं,

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां सेहत से जुड़ी हर बात हम आप तक पहुंचाते हैं। आपसे जुड़ते हैं प्रतिदिन इसी चैनल पर इसी समय, और आप रहते हैं हमारे साथ उसी कार्यक्रम में जिसे आप प्यार से कहते हैं रेडियो डॉक्टर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो धीरे धीरे हमारे समाज में बहुत कॉमन होता जा रहा है, लेकिन उसके बारे में जानकारी अभी तक बहुत कम लोग अच्छे से जान पाए हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, लंबे वर्किंग आवर्स, अनियमित खान पान, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी की कमी, इन सब का असर सबसे पहले हमारी सेहत पर पड़ता है और खासकर हमारे वजन पर। और वजन जब बढ़ जाता है, या यूं कहें कि बढ़ती जो ये मोटापे की समस्या है, ओबेसिटी की समस्या है, ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में हेल्थ समस्या बनता जा रहा है। तो ये जो सिर्फ देखने के लिए जब हम बात करते हैं कि ओबीस है या कोई मोटा है, तो वो लुक्स पर ही सिर्फ इफ़ेक्ट नहीं डालता है, वो कभी कभी गंभीर बीमारियां भी उत्पन्न कर सकता है। और इन सब के लिए ज़रूरी होता है वज़न कम करना। पर कई बार कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि वो हर तरह से डाइट प्लान करने के बाद, जिम जाने के बाद, योग करने के बाद भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं पा पाते हैं। तो उनके लिए एक और तरीका है, उसी तरीके पर आज हम बात करेंगे, और वो है बेरियाट्रिक सर्जरी। क्या है बेरियाट्रिक सर्जरी और ये किस तरह का विकल्प है, और क्या इसे हम ये माने कि ये वज़न कम करने का आसान तरीका है, या इसके भी कुछ गंभीर या रिस्की आउटकम्स हो सकते हैं, ये सारी बातें आज हमने सोचा हम इस कार्यक्रम में करें। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में आपको सही ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो रेडियो डॉक्टर्स मौजूद हैं। मैं आपका इंट्रोडक्शन करा रही हूँ, क्योंकि आज हम इन सवालों पर बिल्कुल सही, साफ, अनबायस तरीके से जानकारी चाहते हैं हमारे अपने दोनों एक्सपर्ट्स से। तो हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे दोनों रेडियो डॉक्टर्स, डॉक्टर निखिल गुप्ता, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में, एसोसिएट डीन हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। नमस्कार डॉक्टर निखिल, स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
2: धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुकुंद खेतान, आप को चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस बेरियाट्रिक सर्जरी सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपको।
3: नमस्कार जी, और आप सभी का स्वागत है, और हम इस ओबेसिटी जैसे मैम ने बताया उसके बारे में अपनी जानकारी को थोड़ा बढ़ाएंगे।
1: जी बहुत धन्यवाद आप दोनों स्पेशलिस्ट को कि आप लोग आए हैं और समय निकाला है आपने, और इस कार्यक्रम में आप आज एक घंटे हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा इस बारे में एजुकेट कीजिए कि ये किस तरह की सर्जरी होती है। और इसके, क्योंकि मैंने टॉपिक इसमें यही रखा है कि बेरियाट्रिक सर्जरीज प्रोस एंड कॉन्स, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है इस सर्जरी या हर सर्जरी के कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान या

0: भी हो सकते हैं। तो हम आज उन दोनों पर जानकारी चाहेंगे आप दोनों से, और हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम के साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं आज भी जुड़ गए होंगे, आपको हमारे साथ रहना है इस कार्यक्रम में और अपनी समस्याओं को यहाँ हमारे रेडियो डॉक्टर्स के सामने रखना है जैसे आप करते हैं। फ़ोन नंबर्स वही हैं, मैं आपको बता दूं हमारे उन नए श्रोताओं के लिए जो आज पहली बार जुड़े हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं फ़ोन लाइन के ज़रिए 2342-1080, 2342-1082, ये हमारी दो फ़ोन लाइन्स हैं। और अगर आप दिल्ली से बाहर से हमसे जुड़ रहे हैं तो 011 आप लगाकर, दिल्ली का ये कोड है। और अगर आप हमें व्हाट्सएप पर कुछ लिखना चाहते हैं तो 9868107070 पर आप लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो जो दिमाग में आता है, पहले डॉक्टर मुकुंद आपसे पूछूंगे कि ये जो सर्जरी है बैरियाट्रिक सर्जरी, व्हाट इज दिस?
1: बैरियाट्रिक सर्जरी इज बेसिकली, जब ये सर्जरी शुरू हुई थी आज से 2 दशक पहले, तब ये सर्जरी सिर्फ वेट लॉस सर्जरी के हिसाब से शुरू हुई थी। तब जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा वज़न वाले और वज़न की वजह से ही परेशान थे, बट पिछले 1 दशक में हमने क्या देखा है कि ये जो बैरियाट्रिक सर्जरी है ये मेटाबॉलिक सर्जरी बन गई है। जैसा आपने अभी बताया कि ये खाली एक वज़न के लिए नहीं है, बट ये वज़न के साथ साथ बीमारियाँ जो अपने साथ लाती है उनको ठीक करने का एक मेजर तरीका है, जो मरीज अपने एक्सरसाइज या डाइट या और किसी तरीके से अपना वजन नहीं कर पाते। तो ये बैरियाट्रिक सर्जरी एक तरीके से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। ये होती तो 1958-59 में शुरू हुई थी। अच्छा। बट तब ओपन सर्जरीज होती थी, तो ओपन सर्जरीज की अपनी प्रॉब्लम्स होती थी। अब ये जब से लैप्रोस्कोपी या दूरबीन पद्धति वाला इरा शुरू हुआ है, इसने इस पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया है और अब ये इतनी कॉमन हो गई है कि अगर हम देखें तो रोज, अगर मान के चले हम अगर दिल्ली शहर में भी माने तो रोज करीब 100 मरीज इसके ऑपरेट होते होंगे। अच्छा। तो ये इतना कॉमन सर्जरी हो गई
0: जी, पर अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो इस बारे में हमें जाननी जरूरी हैं। अभी तक लोग उतनी सही तरीके से इसके बारे में जानकारी जुटा नहीं पाए हैं और इसीलिए रेडियो डॉक्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर मुकुंद ने हमें कहा कि बहुत सारी और कारण होते हैं जो वेट कम होना चाहिए, जिसमें बीमारियाँ जो हो जाती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर निखिल कि अगर कोई ओबीस है, ओवरवेट है, सबसे पहले तो कैसे पहचानेंगे, वो कैसे उसकी कैटेगराइज कैसे किया जाता है, जैसे BMI जिसकी बात लोग जानते हैं, और सेकेंडली कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हो जाती हैं अगर मोटापा हो तो?
2: देखिए, जैसा डॉक्टर मुकुंद सर ने बताया, और अगर हम बात करें आज से 40-50 साल पहले, खासतौर पे अपने देश की बात करें, तो जब भी हम किसी मोटे आदमी से मिलते थे तो एक इंप्रेशन माइंड में आता था भी खाते पीते घर का है आदमी या औरत। लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया कि ये एक खाते पीते घर की निशानी नहीं है, ये एक बीमारी है। और सिर्फ मरीज वो इंसान कैसा लगता है, सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, मोटापा अपने आप में पूरा पैकेज है, अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। या मैं ये कहूँगा कि शायद ही शरीर का ऐसा कोई सिस्टम होगा या ऐसा कोई ऑर्गेन होगा जिसकी बीमारी मोटापे के साथ एसोसिएटेड नहीं है। आप ये इसको ऐसे कल्पना कीजिए कि एक 60 किलो के आदमी के ऊपर अगर 120 किलो का वजन उसको उठाना पड़ जाए तो उसके शरीर के सारे हिस्से किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। उसके हार्ट को डबल काम करना पड़ रहा है, उसके फेफड़ों को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उसके जोड़ जल्दी घिस रहे हैं, उसको शुगर, ब्लड प्रेशर, कई तरह के कैंसर, ये सारी बीमारियां हैं जिनसे वो आदमी अफेक्ट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ मोटापे की वजह से। और अगर अपने वो मोटापे पे काबू पा ले, जिसमें सबसे पहले तो हम यही सलाह देते हैं, खाने पीने की सलाह, एक्सरसाइज, अपना डाइट रेगुलेट करके, लेकिन अगर कोई मरीज ये सब करके भी अपने मोटापे से छुटकारा नहीं पा पा रहा है तो अब आज की डेट में बैरियाट्रिक सर्जरी या मेटाबॉलिक सर्जरी अवेलेबल है जिसकी मदद लेकर वो दोबारा से फिट हो सकता है और इन सब बीमारियों से काफी हद तक छुटकारा पा सकता है
0: जी। तो इस बारे
2: अच्छा,
0: में
2: एक बात और जो आपने BMI की बात की तो रहेगी हमारी, मोटापा कहते किसको है? मोटापे के लिए बेसिकली जो शरीर का वजन कितना होना चाहिए, ये या मोटापे में है या नॉर्मल इंसान है, डिपेंड करता है उसका वजन और उसकी हाइट पे। जैसा कि ये समझने में कोई मुश्किल नहीं है कि हर आदमी का आइडियल वेट उसकी हाइट पे डिपेंड करता है, तो BMI जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं वो निकाला जाता है वजन किलोग्राम में, और इसको अगर डिवाइड किया जाए हाइट मीटर में उसका स्क्वायर, तो वेट बाय हाइट मीटर स्क्वायर, तो इससे BMI निकलता है। BMI ऑन एन एवरेज कहते हैं

0: 25 से 28 के बीच में रहे तो वो एक आइडल रहता है। अगर आप मेटाबॉलिक सर्जरी की बात करें कि उसके लिए कब हमको जाना चाहिए, इंडिया अपने देश की बात करें सेटिंग में, तो नॉर्मली अगर पेशेंट का बीएमआई 32.5 32.5 से ऊपर है, साथ में उसको कोई कोमॉर्बिडिटी या जो मोटापे के साथ जुड़ी हुई बीमारियां हैं जिनकी हमने बात करी अभी, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कुछ और, तो इस तरह के मरीज में हम मेटाबॉलिक सर्जरी कंसिडर कर सकते हैं।
1: इस बारे में और मैं डिटेल में जानना चाहूंगी आप दोनों से कि किसकी सर्जरी की जा सकती है, किसको एक्चुअली सोचना चाहिए कि मैं इस तरह की सर्जरी कराऊं। पर यहाँ पर पहले हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, एक प्यारा सा गीत सुनेंगे, डॉक्टर निखिल की पसंद का ये गीत मैंने निकाला है, और वो सुनकर हम वापस आएंगे। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करिए, आप हमें मैसेज करिए, और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और आज हम बात कर रहे हैं बैरियाटिक सर्जरी, इसके फायदे और इसके नुकसान के बारे में। हमारे दो स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पे जाने से

0: पहले कुछ बात डॉक्टर निखिल ने भी बोली थी कि कुछ इतना बीएमआई से ऊपर होगा, जैसे 32 से ऊपर या कुछ तो किया जाता है। आप थोड़ा सा इसमें बताइए कि क्या यही एक क्राइटेरिया होता है कि बीएमआई, या कुछ और भी देखा जाता है, या कौन ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे करानी चाहिए कि नहीं?
1: देखिए, जब हम छोटे बच्चों में आजकल हम देखते हैं स्कूल में भी ओबेसिटी या वजन ज़्यादा हो रहा है, और करीब हम जब स्कूल का सर्वे, हमने भी आज से 3-4 साल पहले सारे स्कूल्स का दिल्ली का मिलकर के कुछ एसोसिएशंस के साथ किया था, तो हमने देखा था कि 25-30% जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो ओबेज हैं, है ना। ओबेसिटी मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ओबेसिटी। जैसे डॉक्टर निखिल ने बताया, क्लास 1 ओबेसिटी है कि हमारा बीएमआई जो है वो 23 से 28 हो। क्लास 2 ओबेसिटी है कि 23 से 28 से लेकर के 32.5 तक हो। और जो क्लास 3 ओबेसिटी में आ गए 32.5 वाले, उनको किसी तरीके की मदद चाहिए,
0: उन्हें चाहिए, चाहे वो
1: उन्हें
0: किसी
1: मदद
0: तरह से
1: चाहिए,
0: भी
1: वो
0: हो।
1: किसी भी तरीके से मदद चाहिए, क्योंकि वो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वाले तरीके हैं, जैसे आपने बताया कि डाइट है, एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, ये सब उनको फ्रूटफुल नहीं रिजल्ट्स दे पाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि एक बीएमआई एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया होता है हमारा वेस्ट हिप रेशियो, है ना, कि वेस्ट और हिप रेशियो मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग होता है। मेल्स के लिए 0.8 से ऊपर हो, फीमेल्स के लिए 0.9 से ऊपर हो, तो हम कहते हैं कि ये आपका वेट ज़्यादा है, अगर वेस्ट हिप रेशियो बढ़ जाए तो। जैसे मैंने बताया कि यंग बच्चों में अगर हम देखते हैं तो हम परसेंटाइल देखते हैं, बीएमआई नहीं देखते, उसमें हम परसेंटाइल देखते हैं, परसेंटाइल वेट गेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कुछ हमारे क्राइटेरियाज हैं, बट ये मेन क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर हम बेसिकली डिसाइड करते हैं कि आपकी ओबेसिटी क्लास क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या तरीका है जो आपको वेट लॉस में मदद करेगा।
0: तो जैसे कोई पेशेंट आपके पास आया, ओबीस है, जिसको आप कह रहे हैं थर्ड कैटेगरी में फॉल करता है, तो क्या आप उसको अपने सामने वो सारे ऑप्शंस देते हैं अपार्ट फ्रॉम सर्जरी, कि आप लोग सर्जरी पार्ट ही डील करते हैं?
1: नहीं, हम देखिए ओबेसिटी जो है वो एज ए होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए।
0: जी।
1: हम ये नहीं कह सकते, जैसे हमारा मेटाबॉलिक इंस्टीट्यूट है, वहाँ हम प्राइवेट में काम करते हैं, और हमारा एक मेटाबॉलिक इंस्टीट्यूट है जहाँ हम ओबेसिटी एज ए होल को होलिस्टिकली अप्रोच करते हैं। यानी ये नहीं कि हमारे पास, बींग अ सर्जन, मेरे पास पेशेंट आया तो मैं उसको खाली सर्जिकल ऑप्शंस
0: जी, यही
1: बताऊंगा,
0: यही मैं जानना
1: तो
0: चाह रही
1: उसको
0: थी।
1: हमारे पास डाइटिशियन भी है, हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी है अलग से, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, एंड देन द लास्ट इज व्हेन वी कम इनटू पिक्चर, देन सर्जन्स कम इनटू पिक्चर।
0: तो हमारे एक अभी श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए बात कर लेते हैं, कुछ पूछना है। हेलो
2: हाँ जी, नमस्ते मैडम जी और डॉक्टर साहब दोनों को भी
0: जी।
2: नमस्ते।
0: जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं और नाम बता दीजिए अपना।
2: मैं योगराज बोल रहा हूँ गुड़गांव से।
0: जी, बताएं क्या पूछना है।
2: सवाल मेरा ये है जी, 23 साल की बिटिया है और उनका जो है वजन कम हो रहा है। 23 साल की बिटिया का वजन कितना, 29-35 किलो वजन है उनका।
0: जी
2: वजन कम होता है और खाना खाती है तो पेट में दर्द की शिकायत है। अल्ट्रासाउंड करवाया तो इन्फेक्शन आया हाथों में।
0: जी तो
2: डॉक्टर
0: इन्फेक्शन
2: साहब बताएं, फोन नहीं काटना मैडम, पूरी बात ना हो तब तक।
0: ठीक है, डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं आपको। जी बताएं।
3: अच्छा योगराज जी, जैसा आपने बताया कि आपकी बिटिया का वज़न कम हो रहा है और कुछ खाने पे पेट में दर्द भी होता है और जांचों में शायद पेट का इन्फेक्शन आप बता रहे हैं, तो इसमें मैं यही कहूँगा कि वज़न कम होने के बहुत सारी वजह होती हैं, जिसमें एक वजह पेट का टीबी भी हो सकता है या कोई और इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी बिटिया को लेकर जो है नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, फिजिशियन हो या सर्जन हो या पेट के डॉक्टर हो, उनसे मिलके जो ज़रूरी जांचें हैं, जिसमें हो सकता है एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, दूरबीन की जांच या सीटी स्कैन वगैरह हो, जिससे कि बीमारी पकड़ में आए और उसका इलाज शुरू हो सके। हाँ
2: अल्ट्रासाउंड जैसे करवाया था
3: जी
2: तो उसमें इन्फेक्शन आया, और 4-5 जांच और भी करवाई, जैसे टीवी की है, या 6-7 जांच हमने करवाई, लेकिन उसमें कोई बीमारी नहीं आई।
3: देखिए, अब ये तो सारी रिपोर्टें देख के ही कुछ बता पाएंगे। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पेट का टीबी एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी जांच में पकड़ पाना उसको आसान नहीं होता, और कई बार सिर्फ लक्षणों के आधार पे ही हमको दवाई शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी वजह यह है टीबी हमारे देश में, खासतौर पर उत्तर भारत में, बहुत कॉमन भी है। तो अगर उसके लक्षण उस तरफ जा रहे हैं तो टीबी की दवाई शुरू करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये फैसला जो डॉक्टर उनको देख रहा है, उनका इलाज कर

0: मेरा ये है कि किसी शख्स को या पेशेंट को अगर थायराइड है या शुगर है, डायबिटीज है, तो उसका वेट और मतलब मोटापा और वजन घटेगा या बढ़ेगा, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कई शख्स ऐसे मैंने देखे लाइफ में, कुछ भी खा लें कुछ भी पी लें, ना वो मोटे होते ना उनका वजन बढ़ता, तो वो बेचारे क्या करें, उनका शरीर सिर्फ हड्डियों का जो है ढांचा बन के रह जाता है। तीसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे कि उनके हिप्स पे और मतलब कुल्लों पे, टोंट पे और ये चेस्ट पे और गर्दन पे और गालों पे बहुत चर्बी होती है, जैसे आपने सिने जगत में महमूद अली और टुनटुन उमा देवी होती थी वो देखे होंगे, तो वो लोग बेचारे क्या करें ये मतलब चर्बी और वजन घटाने के लिए। और चौथा सवाल मेरा ये है कि डोमेस्टिक लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं वजन और मोटापा घटाने के लिए। और पांचवा जो आप ये सर्जरी बता रहे हैं पैराबैंडल सर्जरी, तो इसमें अगर सर्जरी होती है तो इसमें मतलब इसमें टाइम कितना लगता है, खून खराबा ज्यादा तो नहीं होता, तो जरा बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो पूरा कार्यक्रम अपने प्रश्नों में समेटने की कोशिश की है राजेंद्र जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आप पूरा प्रोग्राम सुनेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, लेकिन हाँ आपके जो प्रश्न हैं डॉक्टर साहब उनके जवाब दे रहे हैं। सर बताएं, इन्होंने सबसे पहले ये पूछा था कि थायराइड शुगर जो जिनको होता है उनका वजन पर क्या इफेक्ट होता है इसका।
2: देखिए राजन जी, जो आपका थायराइड और शुगर है ना, ये दोनों ही तरीके से काम करता है। अगर हमारा थायराइड डिस्टर्ब्ड है या शुगर अनकंट्रोल्ड है तो हमारा वजन बढ़ता भी है। तो थायराइड की बीमारियां दोनों ही तरीके की होती हैं, जिसमें थायराइड लेवल्स बढ़ भी जाते हैं और कम भी हो जाते हैं। तो अगर आपके थायराइड हार्मोन के लेवल्स बढ़ गए हैं तो आपका वजन कम होता है, अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन लेवल्स कम हो गए हैं तो आपका वजन बढ़ने लगता है। सिमिलरली ब्लड शुगर का है कि शुगर, ऐसा नहीं कि शुगर की बीमारी से वजन बढ़ता है या वजन कम होता है, अगर अनकंट्रोल्ड शुगर होगी तो आपका वजन बढ़ भी सकता है। अगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड शुगर हो जाती है जब, या कुछ शुगर की मेडिसिंस भी होती हैं जो हमारे वजन को कम करती हैं, तो ये जब तक हम जाँचें नहीं कराएंगे या कारण नहीं ढूंढेंगे, जब तक हम ऐसे डिक्टेट नहीं कर सकते टर्म्स को कि आपका थायराइड की वजह से वजन ज़्यादा या कम है या शुगर की वजह से ज़्यादा कम है।
1: जी, और कुछ लोगों का नहीं बढ़ता है ये भी उन्होंने पूछा था, चर्बी बहुत होती है उसका, तो बहुत सारी चीज़ें तो हम बात करते ही जा रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम में, लेकिन सर्जरी पे जो उन्होंने बात की जो हमारे इस कार्यक्रम से संबंध रखती है कि क्या इतना कितना समय लगता है इस सर्जरी में, और मैं इसमें और जोड़ूंगी कि इसमें जब सर्जरी के बाद डॉक्टर निखिल आप बताएं कि इसको नॉर्मल रूटीन में आने में कितना टाइम लगता है पेशेंट को।
3: देखिए अगर हम सर्जरी के टाइम की बात करें तो ये मेटाबॉलिक सर्जरी की 3-4 वैरायटीज़ हैं और हर सर्जरी का अपना अलग अलग टाइम है, फिर भी अगर मोटी मोटी बात करें तो 45 मिनट से लेकर आप कह सकते हैं करीब 2 घंटे इसमें लग सकते हैं, लेकिन सर्जरी से पहले का भी टाइम होता है, मरीज़ की पोजिशनिंग वगैरह, और इस तरह के मरीज़ अपने वजन की वजह से सर्जरी के लिए भी थोड़े से हाई रिस्क केसेस होते हैं, इनका हार्ट इनका लंग हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज लेवल पे है, तो उसको सर्जरी तक ऑप्टिमाइज करने के लिए एनेस्थेटिस्ट को भी यानी कि बेहोशी के डॉक्टर को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो टाइम लेकिन अपने आप में मैं कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मानूंगा, और जैसा इन्होंने बोला कोई बहुत खून खराब नहीं होता, ये सारे ऑपरेशन दूरबीन से यानी कि लैप्रोस्कोपिकली या रोबोटिक तरीके से होते हैं, और कोई खून या ब्लड लॉस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता, 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में ऑपरेशन हो जाते हैं, 24 घंटे के बाद ही या कभी तो उससे भी पहले मतलब 12 घंटे के बाद मरीज को सिप्स यानी कि लिक्विड शुरू किए जाते हैं, और 1 से 2 दिन के बाद मरीज़ के अस्पताल से छुट्टी भी हो जाती है, 6-8 घंटे में ही मरीज़ खड़ा होकर चलना शुरू कर देता है, और एक बार जब 24 घंटे के बाद मरीज लिक्विड्स ले पाता है और चल फिर पाता है तभी उसके अस्पताल से छुट्टी की जाती है। ये सब फ़ायदे हैं लैप्रोस्कोपी के, और सर्जिकल टेक्निक्स में जितनी एडवांसमेंट आई है उस सब के सारे फ़ायदे हैं जो बेरियाट्रिक सर्जरी के मरीज को दिए जाते हैं।
1: जी।
3: एक इनका सवाल बड़ा अच्छा था जो मैं चाहूंगा उसका जवाब देना, इन्होंने कहा था कि इन्होंने कई ऐसे मरीज देखे हैं या पुरानी हिंदी फिल्मों के हीरो उनके नाम लिए थे, ये एक्चुअली में ये ऐसा देखा गया है कि एक फर्क है हमारे देश के मोटे मरीजों में और वेस्टर्न वर्ल्ड के मोटे मरीजों में। हमारे देश में इसको ट्रंकल ओबेसिटी हम कहते हैं कि पेट निकला हुआ है, कंधे और बाजू पतले पतले होंगे लेकिन सारा का सारा वजन जो है वो जिसको पहले जमाने में टोन कहते थे या बेली, तो लेकिन ये सबसे एशियन पॉपुलेशन में, और सबसे ज्यादा खराब यही है जो ट्रंकल ओबेसिटी है। अगर आप बाहर के मोटे मरीज देखें वो 200-250 किलो के भी होंगे लेकिन वो लंबा आदमी है, कंधे चौड़े हैं उसके।

0: और उसके बाजू है, उसकी थाइज है, यहाँ पे हम लोगों में, हिंदुस्तानियों में या एशियन पेशेंट में सिर्फ और सिर्फ ट्रंकल ओबेसिटी है जो ज़्यादा ख़राब है, ये शुगर ज़्यादा कॉज करती है। तो इसीलिए बाहर के मरीजों में मोटापा की सर्जरी की जाती है वज़न कम करने के लिए ज़्यादा, लेकिन हमारे देश में मोटापे के साथ बीमारियाँ बहुत जुड़ी हुई हैं इस फैट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से,
1: तो शायद ये हमारे लिए और उतना
0: हमारे
1: उपयोगी
0: लिए
1: है,
0: ज्यादा
1: ज्यादा
0: उपयोगी है।
1: उपयोगी है।
0: इसीलिए ये जो अभी हम बीएमआई की बात कर रहे थे, बीएमआई की सारी कट ऑफ एशियन पॉपुलेशन में वेस्टर्न वर्ल्ड से 2.5 कम है, मतलब बाहर के मरीज में इंडिकेशन 35 से ऊपर है बीएमआई, लेकिन एशियन पेशेंट्स में यही बीएमआई की कट ऑफ 32.5 है, 32.5,
1: तो वो रीजन बिकॉज
0: ये
1: ऑफ
0: इन्हीं
1: दिस
0: सब की वजह से।
1: जी। तो आपने बताया कि जिस तरह से सर्जरी होती है वो तो एक आम सर्जरी की तरह होता है, उसमें वापसी भी लोगों की नॉर्मल लाइफ में वैसे ही है, लेकिन इस सर्जरी में एक्चुअली होता क्या है? और एक टाइप्स की भी बात कर रहे थे आप, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं, डॉक्टर मुकुंद आप भी बताएं कि ये कितनी टाइप्स की सर्जरीज होती हैं इसमें
0: देखिए,
1: बेरियाट्रिक
0: ये
1: में।
0: जो बेरियाट्रिक सर्जरी है ये बेसिकली मेनली दो तरीके की सर्जरीज होती हैं। एक रेस्ट्रिक्टिव, जिसमें हम खाने की आपकी जो कैपेसिटी है उसको कम कर रहे हैं खाली। दूसरी होती है कि जिसमें रेस्ट्रिक्शन और माल एब्जॉर्प्शन, माल एब्जॉर्प्शन मतलब हम जो खाना खाते हैं वो हमारे पेट में पहले उसको डाइजेस्ट होता है, उसके बाद हमारी इंटेस्टिन्स में जाता है और इंटेस्टिन्स उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी और सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो वो कहलाती है माल एब्जॉर्प्टिव सर्जरी। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड माल एब्जॉर्प्शन है कि जिसमें हमारे खाने की कैपेसिटी तो कम हुई बट हमारा कुछ पार्ट ऑफ इंटेस्टिन बायपास हो गया। जैसे हम शहरों में बायपास रोड देखते हैं, वो बड़ी रोड है बट हमने ट्रैफिक को बायपास कर दिया, इसमें हम जो इंटेस्टीन्स को बाईपास करते हैं, तो जो खाने का मिक्सिंग है विथ दी बॉडी जूसेस, मेनली जब खाना हम खाते हैं तो वो बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन से, डिफरेंट ग्लैंड से जो हमारे जूसेस बन रहे हैं, वो जूसेस उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। उन जूसों से जब तक वो मिक्स नहीं होगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा और वो एब्जॉर्ब नहीं होगा प्रॉपरली। तो जब हमने बाईपास कर दिया तो उसका वो जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है कुछ हद तक रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये वेट लॉस में डबल तरीके से इफेक्ट करती है, ये रेस्ट्रिक्टिव और माल अब्सॉर्प्टिव सर्जरीज।
1: लेकिन आपने बोला कि हम उसको बाईपास कर देते हैं, तो क्या बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं हो जाएगी अगर किसी की ये सर्जरी हुई है तो?
0: तो ये जो जिन मरीजों में हम ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी वाला प्रोसीजर करते हैं, जिसको हम गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज कहते हैं, उनमें अमूनन हम देखते हैं जो वेजिटेरियन पेशेंट्स हैं, है ना, जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादातर पब्लिक वेजिटेरियन होती है, तो वेजिटेरियंस में थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि उनकी डाइट में वैसे ही न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और दूसरा प्रोटीन्स कम होते हैं। तो हम जैसे पहले पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में भी, जब हम सोशल अपना पढ़ते थे, कि प्रोटीन कैलरी माल न्यूट्रिशन होता है, तो हम सिर्फ कैलरी माल न्यूट्रिशन चाहते हैं, ना हम प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन चाहते हैं, ना हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का माल न्यूट्रिशन चाहते हैं। तो कई बार इन मरीजों में हमें शुरू के कुछ टाइम, जब तक मरीज रिकवर कर रहा होता है, अपना वेट लॉस जर्नी में चल रहा होता है, उस जर्नी के दौरान हम उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेने के लिए एडवाइस करते हैं।
1: तो सप्लीमेंट्स देने पड़ सकते हैं, और बाद में जब वो ठीक हो जाए तो उसके बाद भी क्या डॉक्टर निखिल बताएं कि किस तरह का खान पान उन्हें रखना होता है या प्रिकॉशंस लेनी होती हैं? क्या तब भी सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं या टेस्ट कराना पड़ता है?
0: देखिए, बिल्कुल सही जैसे अभी बात बताई कि बाईपास सर्जरी के बाद ख़ास तौर पे कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स की या सप्लीमेंट्स की मरीज़ को ज़रूरत पड़ सकती है और उसको रेगुलर फॉलोअप में रखा जाता है, टाइम टू टाइम उसके हाँ टेस्ट ज़रूर कराए जाते हैं। और एक बार जब एडिक्वेट वेट लॉस हो जाता है या जो हमारा टारगेट वेट है वो अचीव कर लेते हैं, उसके बाद ये सप्लीमेंट्स बंद किए जा सकते हैं। अगर पेशेंट ने अपना वेट लॉस अचीव कर लिया है, एक आइडल वेट कर लिया है, उसका लाइफस्टाइल, डाइट मॉडिफिकेशन ये सब हो गई है, तो इन सप्लीमेंट्स को बंद किया जा सकता है पहली बार। लेकिन तब भी मैं ज़रूर कहूँगा कुछ कुछ मरीज़ों को इनकी रिक्वायरमेंट लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर दिन में एक गोली लेनी भी पड़े तो। लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं, जो उससे अगर हम इसको कंपेयर करें, क्योंकि वही मरीज़ जो ऑपरेशन के पहले दिन में ब्लड प्रेशर की और शुगर की 5, 6, 7 गोलियां खा रहा था, वो सब बंद हो जाती हैं, डायबिटीज़ ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, हार्ट अटैक का खतरा कम हो गया, एस्थमा में
1: तो ये
0: सांस फूलने
1: दवाइयाँ
0: में आराम आ
1: इमीडिएट
0: गया
1: बंद हो जाती हैं उसके बाद?
0: बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बिल्कुल। तो इनफैक्ट हम ऑपरेशन के एकदम बाद तो पहले बंद ही करते हैं सारी दवाइयाँ और फिर
2: टाइम टू टाइम उसके टेस्ट करा के देखते हैं कि अब उसको इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। काफ़ी मरीजों में दवाई बंद हो जाती है, मोस्टली पेशेंट्स में अगर बंद नहीं भी होती है तो रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाती है, दैट इज़ फॉर श्योर।
1: जी, यहाँ पर हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं, गीत सुनेंगे और ये गीत डॉक्टर मुकुंद की पसंद का है तो हम सब आनंद लेते हैं इस गीत का। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है रेडियो डॉक्टर और अभी बहुत सारी बातें पूछना बाकी हैं। आप भी कनेक्ट हुई है हमारे साथ फोन लाइन पर और व्हाट्सएप के जरिए।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आज बात हो रही है बैरियट्रिक सर्जरी पर, और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ गए हैं। हमें देवदत्त पारसोलिया जी ने लिखकर भेजा है, नमस्कार टू रिस्पेक्टेड आरजे

0: रेडियो डॉक्टर एंड ऑल टीम ऑफ एफएम रेनबो. नाइस टॉपिक, गुड वॉइस एंड सुपर प्रोग्राम, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन. थैंक यू सो मच. और ये एक मैसेज आया है, लिखा है परिधि ने दिल्ली से, ग्रेट टॉपिक, थैंक यू. इनका एक क्वेश्चन है कि हाउ इज लिपोसक्शन डिफरेंट देन बैरियेटिक सर्जरी एंड डू बैरियेटिक सर्जरी लीव लाइफ लॉन्ग सर्जरी मार्क्स और इज इट मिनिमल इन्वेजिव. ये दो चीज़ें पूछी हैं तो डॉक्टर मुकुल.
1: हाँ तो प्रीति, मैं आपने अच्छा सवाल किया है क्योंकि ये बहुत सारे जो पब्लिक है उनके दिमाग में रहता है कि ये किस तरीके की सर्जरी है बैरियेटिक सर्जरी और ये लाइपोसक्शन से कैसे डिफरेंट है. तो लाइपोसक्शन एक तरीके की कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसमें हम वज़न की वजह से जहाँ जहाँ शरीर में हमारी चर्बी, तो चर्बी जैसे डॉक्टर निखिल ने पहले भी बताया कि चर्बी दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक तो हमारे शरीर में बाहर चमड़ी के नीचे है जिसको हम पेरिफेरल फैट कहते हैं, है ना, एक हमारा विसरल फैट है जैसे हमारा ट्रंक में जो इकट्ठा है वो खाली पेट में बाहर भी इकट्ठा है और पेट के अंदर जो विसरा हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें और उसके आसपास भी इकट्ठा है. तो ये जो लाइपोसक्शन है ये हम जो पेरिफेरल फैट है स्पेशली जैसे थाइज में हो गया, आर्म्स में हो गया, एब्डोमन में हो गया, बैक में हो गया, वेस्ट में हो गया, कहीं हिप्स में हो गया, वहाँ से हम सिर्फ चर्बी की जो सेल्स होती हैं उनको सक्शन करके निकाल लेते हैं, उसको हम लाइपोसक्शन कहते हैं. तो ये प्योरली कॉस्मेटिक सर्जरी है जो बॉडी शेपिंग सर्जरी है. और जो हम बैरियेट्रिक सर्जरी है जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये अब मेटाबॉलिक सर्जरी है, ये सिर्फ वेट लॉस सर्जरी नहीं है, वेट से एसोसिएटेड बीमारियों को भी ठीक करने में हमारी मदद करती है. तो ये ओवरऑल वेट लॉस में हेल्प करती है, नॉट ओनली पेरिफेरल बट विसरल फैट भी कम करती है जिसकी वजह से हमारी बीमारियों की जो जड़ है.
0: तो हम इसको ऐसा समझें कि वो सिर्फ लुक्स पे इफेक्ट डालेगी और ये आपके हेल्थ पे इफेक्ट डालेगी, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं.
1: बिल्कुल.
0: और इन्होंने ये जो पूछा है कि क्या बैरियेटिक सर्जरी में क्या सर्जरी मार्क्स रह जाते हैं लॉन्ग टर्म, या इसको रोबोटिक, या आप जैसे बता रहे थे कि आजकल मिनिमम इन्वेसिव तरीके से किया जाता है तो वो मार्क्स नहीं रहते हैं.
2: जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बात करी थी कि बैरियेट्रिक सर्जरी 99.9% या 100% लैप्रोस्कोपिकली ही होती है या रोबोटिक, लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक, और ये दोनों ही मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे कट दिए जाते हैं, 10 mm, 5 mm, आप मानिए 1 cm के और आधे सेंटीमीटर के कट होते हैं जो ना के बराबर दिखाई देते हैं. यही इसकी एडवांटेज है. और इन छोटे छोटे कट से हम पोर्ट्स डालते हैं, उससे ही हमारे जो इंस्ट्रूमेंट से पतले पतले वो अंदर जाते हैं और उसके थ्रू सारा ऑपरेशन किया जाता है. इस सबका फ़ायदा यह है कि मरीज़ की पोस्ट ऑप में रिकवरी बहुत फास्ट है, दर्द का एहसास बहुत कम होता है मरीज़ को, वो बहुत जल्दी खड़ा होकर चलना फिरना अपने सारे कामकाज कर सकता है, और लुक्स वाइज भी क्योंकि ये स्कार ना के बराबर दिखाई देते हैं, तो ये सब इस सबके एडवांटेज है बजाय कि ओपन सर्जरी के.
0: जी.
1: तो मैं इसमें एक कमेंट ऐड करूंगा. जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम ये सुनते थे जब हम मेडिकल स्कूल में थे कि बिग सर्जन्स मेक बिग इंसिजन्स, तो हमारे बड़े बड़े जो सर्जन्स थे कि ये बड़ी अच्छी सर्जरी करते हैं, बड़े चीरे लगाते हैं. वो सर्जन्स का पर्सपेक्टिव था. अब अगर हम पेशेंट पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो ये जो पेशेंट्स पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है इसी की वजह से लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का इजाद हुआ है कि हम पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि सर्जन की कम्फर्ट नहीं है, पेशेंट की कम्फर्ट है. जैसे डॉक्टर निखिल ने कहा कि अब वो मरीज जो है वो 4-6 घंटे बाद अपने पैरों पे खड़े होके चल सकता है. जिस मरीज की सर्जरी 4 घंटे पहले, सर्जरी तो बड़ी है बट मरीज के लिए वो छोटी है क्योंकि उसकी दूरबीन पद्धति द्वारा सर्जरी हुई है.
0: जी जी, इसके फायदे हैं. और देखिए एक मैसेज और आया है हमारे पास, लिखने वाले का नाम मुझे अभी दिख नहीं रहा है, अगर मिलेगा तो मैं पढ़ दूंगी. इन्होंने लिखा है कि गुड आफ्टरनून, हाँ यहाँ इन्होंने नाम लिखा है प्रकाश फ्रॉम दिल्ली. इन्होंने लिखा है कि मेरा बेटा जो है उसका वेट 150 kg है और 30 ईयर्स उसकी एज है, वो सब कुछ करता है, डाइट भी एक्सरसाइज भी, पर उसका वेट कम नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए और कुछ और सर्जरी करा के, अगर हम ये सर्जरी कराते हैं तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या, इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं सर?
2: देखिए जैसे इन्होंने बताया अपने बेटे के वज़न के बारे में, लेकिन क्योंकि इन्होंने हाइट नहीं बताई है तो हम BMI तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि 150 किलो तो बहुत ज़्यादा है और हर लिहाज से इसका बच्चे का जो BMI है वो 45 से ऊपर ही आएगा मेरे हिसाब से. और जैसा बताया कि वो खाने पीने का परहेज और एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ ट्राई कर चुका है लेकिन तब भी इच्छा मुताबिक वो वेट लॉस नहीं अचीव कर पा रहा है. तो जितना इस हिस्ट्री से जो पता लग रहा है कि यस, वेट लॉस सर्जरी या बैरियेट्रिक सर्जरी, मेटाबॉलिक सर्जरी ज़रूर इसकी मदद करेगी पहली बात.

0: दूसरी बात, इन्होंने साइड इफेक्ट्स की बात करी, तो देखिए साइड इफेक्ट में कहूंगा किसी भी दवाई के या किसी भी ऑपरेशन, कोई भी ऐसा ऑपरेशन या दवाई नहीं है जिसके साथ साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन ये जरूर है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, किसी भी ऑपरेशन से पहले, इवन मेटाबॉलिक सर्जरी से पहले भी हम सब तरह की सावधानियां बरतते हैं। इस तरह के मरीजों का बहुत ज़्यादा चेकअप किया जाता है ऑपरेशन के पहले, क्योंकि जैसे हमने बात करी थी इनके पूरे सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो इनके हार्ट का, लंग का, शुगर स्टेटस, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें ऑपरेशन के पहले चेक की जाती हैं, सारी सावधानियाँ बरती जाती हैं, जिससे कि ऑपरेशन के समय और ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन कम से कम रहें। इसीलिए इन मरीजों को बहुत जल्दी हम, जैसे बात की थी, खड़ा कर देते हैं 4-6 घंटे में ही, जिससे कि ऑपरेशन के बाद जो कुछ मरीजों को निमोनिया हो जाता है लंबे समय तक लेटे रहने से, या खून के कतरे क्लॉट जम जाते हैं, उन सबको रोकने के लिए ही इन सब मरीजों को जल्दी खड़ा किया जाता है, जल्दी खाना पीना शुरू किया जाता है। आज की डेट में मैं कहूँगा ये सर्जरी इतनी सेफ हो गई है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन रेट किसी भी और ऑपरेशन से, चाहे वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो या हर्निया का ऑपरेशन हो और चाहे वो मेटाबॉलिक सर्जरी हो, इनकी कॉम्प्लिकेशन रेट ऑलमोस्ट बराबर हो गई है।
1: जी, यहाँ पर हम अपने एक श्रोता को फोन लाइन पर जो वेट कर रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, बताइए।
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी
0: नमस्कार, नमस्कार
2: जी। मेरा नाम संजीव कुमार है और मेरी एज 44 ईयर्स है, 44 साल सर। और मेरा मतलब वजन पीछे था अभी कुछ दिन पहले 102 किलोग्राम था सर, और हाइट है मेरी 5 फुट 10 इंच या 11 इंच। तो सर मेरा पेट बहुत निकलो है और मेरे भाई का भी पेट बहुत निकलो है, जबकि खाने को तो 3 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती है सही हिसाब से हमें। तो अब इस बड़े हुए पेट को कैसे कम किया जाए सर, प्लीज ये बताइए।
1: वेट को कैसे कम करें, इन्होंने बताया 102 किलो इनका।
3: देखिए जैसे आपने बताया तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, जैसे आपने कहा कि आपकी हाइट 5, 10 या 11 है, इसका मतलब है आप 175 सेंटीमीटर आपकी हाइट नाप लें, तो एक सिंपल कैलकुलेशन होता है कि हम आइडियल वेट कितना माने, तो उसमें से अगर हम 100 घटा दें, जो हमारी हाइट है उसमें से अगर हम 100 घटा देते हैं तो हमारी जो हाइट है उसके लिए जो हमारा वेट है उसकी अपर लिमिट आ जाती है। तो अगर 175 आपकी माने तो आपका 75 किलो वजन होना चाहिए, यानी आप 25 से 30 किलो अपने वजन से ऊपर हैं। अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर हम BMI कैलकुलेट करेंगे तो आपका BMI जो है वो Grade 2 लेवल ओबेसिटी में आएगा, तो Grade 3 ओबेसिटी जहां आपको किसी तरीके की सर्जिकल हेल्प चाहिए, आप उस कैटेगरी में अभी नहीं फॉल करते हैं ऐसा लगता है, जब तक हम पूरे टेस्ट नहीं करेंगे हमें नहीं मालूम पड़ेगा एग्जैक्ट। बट अगर आप Class 2 ओबेसिटी में हैं तो ये आपके लिए अभी आँख खुलनी चाहिए, है ना, कि जब आँख खुली तब सवेरा है। अगर आप अभी नहीं जागेंगे तो आप धीरे धीरे करके वो कब Class 3 ओबेसिटी में आ जाएंगे आपको नहीं मालूम, तो आपको एक एडवाइस लेना चाहिए या तो फिजिशियन से लेना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ इसमें बीमारियां हैं, जैसे डॉक्टर निखिल ने बोला ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, नींद की बीमारी, थायराइड की बीमारी, जोड़ों की बीमारी या गुर्दे की बीमारियाँ, तो इन सब बीमारियों के साथ अगर आप वज़न ज़्यादा लेके चल रहे हैं तो आपको एक फिजिशियन को दिखाना चाहिए। अगर फिजिशियन आपको एडवाइस करता है कि नहीं, आपको एक सर्जिकल एडवाइस भी लेना चाहिए, तो आपको एक जो बेरियाट्रिक सर्जन्स होते हैं, मेटाबॉलिक सर्जन्स होते हैं, उनसे भी कंसल्ट करना चाहिए, वो आपकी मदद कर पाएंगे कि किस तरीके से क्या तरीका आपके लिए बेहतर है आपको वजन कम करने का।
1: जी, जोया हमें लिख रही हैं, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारे कार्यक्रम सुन रही हैं, और ये लिख रही हैं कि क्या मैदा, जैसे हमें पता है, इन्होंने लिखा है मैदा इज़ वेरी नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड स्टमक, बट वी ईट आउटसाइड फूड एंड इन मोस्ट ऑफ द फूड मैदा एंड सारडो इज़ यूज्ड, हाउ डज इट इम्पैक्ट आवर हेल्थ एंड कैन वी गो फॉर बैरियाट्रिक सर्जरी। डॉक्टर,
0: एक तो जोया जी ने अपना वेट और हाइट मेंशन नहीं करी है तो अभी हम ये नहीं बता पाएंगे,
1: इन्फॉर्मेशन ही चाहिए उनको।
0: अच्छा, जो बात करी इन्होंने मैदा की इस तरह की, तो ये मैं जरूर कहूंगा कि खाना जितना प्रोसेस्ड हम जितना करते हैं, यानी कि वी आर मेकिंग इट मोर एंड मोर सिंथेटिक, उसमें नेचुरल कम हो रहा है और सिंथेटिक को ज़्यादा होता जा रहा है, तो उतना ही खराब होता जा रहा है, उससे न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता जा रहा है और जो हार्मफुल एलिमेंट्स उसमें ऐड हो रहे हैं, इसीलिए मैदा को जो है सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता। तो जब जोया जी को ये सारी बातें पता भी हैं तो ज़रूर इनको अपने खाने पीने में मैदा की मात्रा कम रखनी चाहिए, और आटा का मात्रा है जो हम, जिसको हम नेचुरल खाना अपना कहते हैं, वो लें, और एक्सरसाइज, योगा, किसी भी फॉर्म में जो है वो इनको अपना वेट मेंटेन करने में मदद करेगा।
1: जी, क्योंकि हम कार्यक्रम ओबेसिटी पे कर रहे हैं तो हमारे श्रोता ये भी जानना चाह रहे हैं कि खान पान में क्या सही है क्या गलत, और ये हमें लिखकर भेजा है हमारे रेगुलर लिसनर है नरदेव सिंह चौहान जी, कोटद्वार उत्तराखंड में रहते हैं। इन्होंने लिखा, शालिनी मैम, डॉक्टर निखिल और डॉक्टर खेतान

0: को गुड आफ्टरनून मैम। मोटापे की बात कर रहे हैं, पहले का खान पान और आज के खान पान, उसका जो फर्क हुआ है उसके कारण भी मोटापा बढ़ रहा है क्या? तो हम इस पे भी बात कर लें थोड़ी सी। वैसे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास कि मोटापा बढ़ क्यों रहा है, क्या खान पान मेजर रोल प्ले कर रहा है
1: देखिए,
0: इसमें?
1: इसमें खान पान और हमारा लाइफ स्टाइल दोनों चीज़ ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। खान पान जो पहले जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि खान पान पहले हमारा नेचुरल खाना ज़्यादा था, है ना। अभी हमारा जैसे डॉक्टर ने कहा कि प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी है। पहले हमारे खान पान के लिए हमें जाना पड़ता था। अब मैं घर बैठे और मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फूड के प्लेटफॉर्म पे घर बैठे खाना मंगा लेता हूँ, तो मेरे लिए इजी एक्सेस ऑफ फूड हो गई। तो एबंडेंस ऑफ फूड भी हो गया, इजी एक्सेस ऑफ फूड भी हो गया और प्रोसेस्ड फूड भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी फूड की तरफ से कंट्रीब्यूट कर रही हैं वज़न में। जैसे पहले के ज़माने में हम ये मैदा, सूजी, ये सब चीज़ें कम होती थी, आटा, चावल, ये खाना, सब्जी, तीन तरीके की सब्जियां, रोटी, चावल, हमारी प्लेट रेनबो जैसी कलरफुल दिखती थी। अब हमारी प्लेट जो है वो सिंगल कलर की होती है। तो अगर रेनबो जैसी प्लेट दिखेगी हमारी तो वो न्यूट्रिशियस खाना है। अगर हमारे खाने में एक या दो कलर की चीज़ें दिख रही हैं वो हमारा न्यूट्रिशियस नहीं है। जैसे वाइट्स जो होते हैं ना, हमें वाइट्स जो भी खाने में चीज़ें, सूजी, मैटा, आदा, चावल, या हम मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स भी होते हैं, वो बहुत सारे ठीक है, हेल्थ के लिए एवरेज चीज़ें हैं, बट वो न्यूट्रिशंस नहीं है इतने। तो न्यूट्रिशंस चीज़ें हैं, जितनी कलरफुल होंगी उतनी न्यूट्रिशन, सबकी अपनी डिफरेंट न्यूट्रिशंस वैल्यू है। अगर हम वो कलर्ड फूड खा रहे हैं तो, अगर हम वाइट फूड खा रहे हैं तो उनकी सबकी मोर और लेस कॉमन न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है।
0: जी, हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं, पहले इनसे बात करते हैं, फिर और कुछ बातें हैं आपसे इससे संबंधित पूछने की। हेलो
2: हेलो,
0: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, नाम बताएं।
2: नमस्कार जी,
0: जी नमस्कार।
2: मेरा नाम अमन कुमार है सर। मैं गाँव कुकरी चाची हिंदी जिला बरनाल से हरियाणा से बोल रहा हूँ जी।
0: जी बताएं क्या पूछना है आपको।
2: मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोटापे कम करने के लिए कौन सा योगा या प्राणायाम सबसे लाभदायक है?
0: देखिए, आज हम योगा या प्राणायाम पे तो बात नहीं कर रहे हैं। ये ज़रूर कह रहे हैं कि हाँ, ये भी वेट लॉस कर सकते हैं अगर आप इसको नियमित दिनचर्या में शामिल करते हैं, एक्सरसाइज को या योग को। पर यहाँ पर हम बात आज बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में कर रहे हैं और ये सर्जरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है इस पर कर रहे हैं। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जैसे अब वेट लॉस की जब हम बात कर रहे हैं, हम खान पान की बात कर रहे हैं, तो क्या जब ये सर्जरी हो जाती है उसके बाद भी खान पान पे ध्यान रखना पड़ता है? जैसे कुछ लोग इस तरह की थिंकिंग से आते हैं कि वेट लॉस हो गया, अब तो सर्जरी हो गई, अब हम कुछ भी खा सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
3: देखिए, ज़रूर, जैसा हम पिछले आधे एक घंटे से बात करते हुए आ रहे हैं कि वज़न कम करने के लिए जो मुख्य हमारा फोकस होना चाहिए वो तो खाने पीने की आदतों पर और एक्सरसाइज पे ही होना चाहिए। बैरियाट्रिक सर्जरी हम उसी मरीज को ऑफर कर रहे हैं जो ये सब ट्राई करके भी एडिक्वेट वेट लॉस अचीव नहीं कर पा रहा और साथ में वो मोटापे की वजह से और बहुत बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। इस सर्जरी से हम उसका वज़न एक बार आइडियल कैटेगरी में ले आते हैं जितना उसकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन अब उसको मेंटेन करने के
0: तो
3: लिए
0: उसको
3: वही दो चीज़ें जिसकी हमने शुरू में बात करी थी,
0: जी
3: यानी कि खाने पीने की आदत और एक्सरसाइज, यानी कि वो तो करनी ही करनी है।
0: जी
3: अगर कोई भी मरीज सोचे कि सर्जरी शॉर्टकट है कि मैं खाने पीने में परहेज नहीं कर सकता, मैं एक्सरसाइज नहीं कर
0: जी
3: सकता, मैं सर्जरी करा लेता हूँ और बाकी मैं ऐसे ही करता रहूँगा, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि नहीं, मरीज़ का मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपना वेट लॉस को मेंटेन रखने के लिए, दोबारा कह रहा हूँ मैं, डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज,
0: यानी ये सर्जरी एक बार हो गई, अगर
3: सर्जरी उनका
0: आपने
3: रिप्लेसमेंट नहीं है।
0: फॉलो नहीं किया तो
3: बिल्कुल
0: आप वापस वेट गेन कर
3: बिल्कुल
0: सकते हैं
3: बिल्कुल, इनफैक्ट
0: ये।
3: वेट रीगेन जो होता है ऑपरेशन के बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद, वो मुख्य इन्हीं वजहों से होता है कि मरीज मोटिवेटेड नहीं होता, खाने पीने की आदत में बदलाव नहीं कर पाता, एक्सरसाइज व्यायाम का शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाता, और यही मरीज जो है वो वेट रीगेन लेकर आते हैं।
0: तो डॉक्टर मुकुंद, मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि फॉलो अप का क्या महत्व है, कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा दोबारा से वेट गेन हो सकता है, तो कितना फ्रीक्वेंटली उन्हें डॉक्टर से इन टच रहना पड़ता
1: देखिए,
0: है?
1: जैसे हम डाइट की बात कर रहे हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, तो कुछ डेफिनेटली डाइट प्लान होता है हमारा, और उस डाइट प्लान और आपकी आगे की जर्नी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप और मैं मिलकर, आपकी या मेरी एक्सपेक्टेशन अलग नहीं है, तो वो एक्सपेक्टेशन हमारी खरी उतरे उसके लिए हमें रेगुलर फॉलोअप जरूरी है। जैसे किसी भी ऑपरेशन के बाद हम 7 से 10 दिन के अंदर मरीज़ को पहले फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, देखने के लिए कि उनकी हेल्थ सेहत सही है कि नहीं। उस वक्त हमारा टारगेट वेट लॉस नहीं होता कि कितना वेट हुआ, फिर हम पहले महीने पर बुलाते हैं, फिर पहले

0: एक साल हम उसको तीन तीन महीने के अंतराल पे बुलाते हैं। कुछ जांचें होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपको कुछ बीमारियों से पहले से ग्रसित हैं तो उन बीमारियों से रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ रेगुलर टेस्ट होते हैं देखने के लिए कि आप में कोई न्यूट्रिशनल की कमी तो नहीं हो रही या प्रोटीन्स की कमी तो नहीं हो रही, उनके लिए कुछ टेस्ट कराते हैं और एक फिजिकल चेकअप होता है। और साथ में आपका कॉम्प्लायंस, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि पेशेंट कॉम्प्लायंस जरूरी है, अगर आप अपनी डाइट एक्सरसाइज या सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अदर साइड ऑफ कोर्ट में चले गए। आपको वेट लॉस तो मिलेगा बट डिजायरेबल नहीं मिलेगा, जितना आप चाहते हैं उतना भी नहीं मिलेगा और वो सस्टेन भी नहीं रहेगा, यानी लॉन्ग टर्म जो हमारा वेट लॉस मेंटेनेंस था वो भी हमारा हो सकता है पूरा ना रहे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि पहले 5 साल हमें एनिवर्सरी जैसे मनानी चाहिए पेशेंट को फर्स्ट ईयर के बाद, कि एटलीस्ट साल में एक बार जो अपने डॉक्टर हैं उनको हम कंसल्ट करें, उनसे एडवाइस लें और समझें कि हमारी जो जर्नी है वो ठीक चल रही है कि नहीं, हम वेट रीगेन की साइड तो नहीं है। कई बार कुछ मरीज हैं जिनको न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी हो जाती है, वो अदर साइड ऑफ कोर्ट में चले जाते हैं कि हम चाह रहे थे 40 किलो वजन कम हो, वजन तो 40 किलो कम हो गया बट न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज हो गई जिनकी वजह से वो कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। तो उन सबको भी मेडिकल एडवाइस या मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है, तो उनको भी फॉलोअप ज़रूरी होता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो बहुत बेसिक प्रश्न है, अभी तक हमने बात नहीं की है, कि आपके पास लोग आते होंगे और बोलते होंगे रैंडमली कि मुझे इतना इतना कम करना है या उतना कम करना है, एक्चुअली कितना कम किया जाता है, इसका भी कोई कैलकुलेशन होता है क्या डॉक्टर निखिल?
2: देखिए, जैसा कि बताया हमने कि हाइट के हिसाब
1: मतलब
2: से एक
1: मैक्सिमम
2: आइडियल
1: कितना सर्जरी में कम किया जा सकता है वेट?
2: ये देखा जाता है, इसके लिए जो टर्म है वो है एक्सेसिव वेट, या कितना वेट उसका ज़्यादा है उसके
1: अच्छा
2: आइडियल वेट से। और फिर हम टारगेट करते हैं कि उसका कितना वेट लॉस हम चाह रहे हैं, उसका हम कहते हैं अगर 75% ऑफ द एक्सेसिव वेट अगर वो पेशेंट लूज कर ले तो कहते हैं कि उसने एडिक्वेट वेट लॉस अचीव कर लिया है। अब उसके लिए डिपेंड करता है कि फिर कितना वो हमारा टारगेट कितना आ रहा है, पेशेंट को 20 किलो लूज़ करना है या 40 किलो करना है या 50 किलो करना है, वो डिसाइड करता है हम कौन सी सर्जरी के लिए जा रहे हैं। जैसा बाईपास सर्जरी की हम बात कर रहे थे, अगर मरीज़ को जितना ज़्यादा वेट लूज़ करना है तो उसका बाईपास उतना ही हमको बड़ा करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, इसीलिए जैसे हम टीम की बात कर रहे थे कि होलिस्टिक अप्रोच है, पेशेंट के साथ बैठकर बात की जाती है कि आपका वेट इतना होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से और है ये इतना इतना वेट हम लूज करना चाह रहे हैं और उसके लिए ये हमारे पास ऑप्शंस हैं।
1: जी, यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो फटाफट कॉल करिए, मैसेज करिए हमारे नंबर्स में, जल्दी जल्दी बता रही हूँ, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर हम फ़ोन करना चाहते हैं 2342108023421082। हम लौट कर आएंगे, लेकिन आप जल्दी जल्दी प्रश्न करिए क्योंकि कार्यक्रम 4 बजे समाप्त हो जाएगा। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज हमने काफ़ी सारी बात की है बैरियाट्रिक सर्जरी प्रोस एंड कॉन्स पर अभी भी बहुत सारी बातें मन में हैं, क्वेश्चंस हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर मुकुंद, कि अगर सर्जरी हो जाती है उसके बाद भी आपने कहा है कि खतरा रहता है कि वेट रीगेन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट क्या कर सकता है?
1: देखिए, जैसे हमने कहा तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि वेट रिगेन का कारण क्या है। तो ये एक दो पहिए की साइकिल है। हमारा जो सर्जरी हमने कर दी वो एक पहिया है कि वो ऑपरेशन हो गया और आपको एक डिज़ायरेबल वेट, यानी जो हमें वेट चाहिए था एक्सेस वेट का, जो एक परसेंटेज वेट लॉस है, वो हमें मिल गया। अब हमें दूसरा पहिया अपना चलाना है। तो साइकिल का जब दूसरा पहिया चलेगा, मतलब आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो ये एक इजी वे आउट नहीं है कि हम कहें कि मैंने सर्जरी करा ली और मेरा वेट लॉस हो गया, अब मैं वेट मेंटेन होता रहेगा और मैं कुछ भी खाता पीता रहूं। तो आपके अपने लाइफस्टाइल को, थोड़ा एक दैनिक दिनचर्या को, चाहे वो खान पीन का हो चाहे हमारी एक्सरसाइज का हो, बनाना पड़ेगा। अगर हमें एक्सेसिव वेट लॉस होता है, वेट गेन होता है, तो उसके लिए ही जो फॉलोअप, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हम रेगुलर फॉलोअप में होते हैं तो हम उसके कारण को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं और जल्दी उसको ठीक कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए आप किसी कारणवश आप रेगुलर फॉलोअप में नहीं रहे और आप 5 साल बाद अब आप देखते हो कि आपका 50 किलो वजन की कम हुआ था और अब 25-30 किलो वजन बढ़ गया है, तो डेफिनेटली यू अगेन हैव टू गो टू दी कंसर्न सर्जन जिससे आपने ऑपरेट कराया है। और वो आपको सिर्फ, ऐसा नहीं है कि वेट रीगेन के बाद भी सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन होती है। आज की तारीख में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा मेडिसिंस भी हैं, एक्सरसाइजेस भी हैं। तो जैसे हमने पहले भी शुरुआत में डिस्कस करा था कि होलिस्टिक अप्रोच लेकर के भी हम ये वेट लॉस को दोबारा अटेन कर सकते
0: जी
1: हैं।
0: जी लाइफस्टाइल तो बहुत बड़ा आपने बताया रीज़न, खान पान बताया, लेकिन बच्चे आजकल बहुत ओवरवेट हो रहे हैं, तो डॉक्टर ने के लिए बताइए कि क्या सिर्फ खान पान लाइफस्टाइल ही इसके लिए दोषी हम माने, या कभी कभी जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं?
2: नहीं, बिल्कुल, खाने पीने के अलावा आजकल स्टडीज़ में ये देखा गया है कि काफ़ी सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं। और इसीलिए हम देखें कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में, मतलब इवन 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चों में भी बहुत ज़्यादा ये बीमारी पाई जा रही है। इसमें एक वजह ये ज़रूर है, जैसे बात की थी हमने खाने पीने के बारे में, प्रोसेस्ड फूड, मैदा, जंक फूड, ये सब की भी इसका भी मात्रा इस्तेमाल बढ़ रहा है, एक्सरसाइज करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है, लेकिन जेनेटिक्स भी अपना रोल प्ले कर रही है। इसलिए हमने देखा है कि पूरा का पूरा खानदान, पूरी फैमिली में ही, पिता भी, दादा भी और
0: जी
2: बेटा बेटी
0: जी
2: भी,
0: जी
2: सबके सब इससे ग्रसित हैं।
0: जी बिल्कुल। तो अब इतना ही समय है कि मैं अपने धन्यवाद दूं अपने आज के गेस्ट को, और आपको बता दूं कि आज हमने ढेर सारी बातें की बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में। हमारे साथ रहे डॉक्टर निखिल को

0: गुप्ता, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, एसोसिएट डीन अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड आरएमएल हॉस्पिटल, डॉक्टर मुकुंद खेतान, को चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल एक्सेस बेरियाटिक सर्जरी, सर गंगाराम हॉस्पिटल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों यहाँ आए, समय निकालकर इस विषय पर ढेर सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
1: रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे कार्यक्रम की प्रस्तुत कर
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते हुए देखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दोपहर कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की भारत की ओर से कड़ी निंदा दोहराई। उन्होंने शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली और तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रक्षा भूमि पर पहली बड़े पैमाने की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का विकास शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि ये 250 मेगावाट की सौर परियोजना उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और साथ ही बिजली खर्च में महत्वपूर्ण दीर्घकालिक बचत भी करेगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज कहा कि प्रत्येक शिशु को गर्भावस्था के प्रत्येक चरण में सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक देखभाल का अधिकार है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने लाखों गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य जाँच, विशेषज्ञ परामर्श और बेहतर मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके सुरक्षित मातृत्व को एक जन आंदोलन बना दिया है। पिछले 12 वर्षों में भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसमें ब्रांड इंडिया और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत संकट के समय सबसे पहले मदद करने वाले देश के रूप में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन और वैश्विक स्तर पर यूपीआई जैसे डिजिटल उपायों के जरिए हमेशा राष्ट्रीय हित को विश्व कल्याण के साथ जोड़ा है। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनिकबर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक क्षण बताया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष गढ़ने का प्रयास कर रहा है।
3: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
4: पाकिस्तानी हाथ।
2: श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 23 ओवर में 3 विकेट पर 115 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ और शुरू हो चुका है अल्फाजन प्रोग्राम, जिसमें हम आज बात करेंगे करियर पाथवे। और आज हम किस करियर के बारे में आपको बताने वाले हैं? जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या कोर्सेज आप कर सकते हैं, इसमें क्या एस्पेक्ट्स हैं, कहाँ आप जॉब पा सकते हैं, क्या आपका प्रोफेशन हो सकता है, वो सारी बातें होंगी आपके लिए। लेकिन पहले एंटरटेनमेंट का डोज ले लीजिए।

भाई फीलिंग्स को समझना है, उनको जानना है, मन के व्यवहार को पढ़ना है, समझना है, और ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो आप साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान से जुड़ सकते हैं। बदलती लाइफस्टाइल में लोगों में अक्सर तनाव देखा जा रहा है, ऐसे में कभी कभी साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। साइकोलॉजी के क्षेत्र में करियर की बहुत सारी संभावनाएं हैं, केवल साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट ही नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर बन सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या होगा, साइकोलॉजी में पढ़ाई करनी होगी, और ये एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन होगा अगर आप अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं तो। आगे भी बताऊंगी मैं आपको, लेकिन एक प्यारे से सॉन्ग के बाद।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
6: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
7: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम है अल्फा जन। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। साइकोलॉजी सब्जेक्ट से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने करियर में, तो उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। साइकोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जो इस समय करियर ग्रोथ के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस करियर में आप लोगों के मन, उनके व्यवहार को समझ सकते हैं, शरीर के सबसे जटिलतम हिस्से यानी कि ब्रेन से जुड़ी कई बातों को भी जान सकते हैं। ब्रेन जो काम कैसे करता है, कई भाषाएं कैसे सीखता है, कैसे याद रखता है, मानसिक बीमारी में इसके काम करने को कैसे अफेक्ट होता है, और ऐसे कई बातें जो साइकोलॉजी में पढ़ने को आपको मिलेंगी। और भी सारी जानकारी है आपके लिए। पहले ये सॉन्ग।

अल्फा जन में बात कर रहे हैं हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट से अपने करियर की ओर अग्रसर बनने वाले बच्चे क्या करना चाहते हैं, आगे कैसे करना चाहते हैं, ये सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे। और अगर आप मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? मनोविज्ञान में डिप्लोमा कर सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप BA और MA कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? आपको किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना चाहिए और अलग अलग समय है इनको पूरा करने का। आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं साइकोलॉजी में, किसी भी स्ट्रीम के हों आप, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हों या ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से हों, और 12वीं में आप के अच्छे मार्क्स होने चाहिए, लगभग 50%, उसके बाद आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप साइकोलॉजी में ही BSc भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको साइंस स्ट्रीम्स में 12वीं में आपके 3 वर्ष का ये कोर्स है, 12वीं के बाद आप इसे कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें BA ऑनर्स भी किया जा सकता है, और इसमें आपके 12th में करीबन 50% से भी अबव मार्क्स होने चाहिए, और ये भी 3 साल का कोर्स है। इसके अलावा BSc ऑनर्स आप अगर आप जीव विज्ञान या मनोविज्ञान के साथ 12वीं उत्तीर्ण हैं तो आप इसे आगे परस्यू कर सकते हैं ग्रेजुएशन में। और इसके अलावा साइकोलॉजी में BA MA जैसा मैंने बता दिया, आफ्टर ग्रेजुएशन आप MA कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन में आपके पास साइकोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप इसे आगे परस्यू कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। और डिप्लोमा के लिए मैंने बता ही दिया आपको, 12वीं के बाद 1-2 साल का कोर्स है, आप उसे भी कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो आप साइकोलॉजी में अपनी करियर बनाने के लिए कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ एस्पेक्ट्स हैं इस करियर में, मैं आपको बताऊँगी। सुनते रहिए मेरे साथ अल्फा जन।

टाइम से कोई भी चीज़ हो जाए ना तो वो परफेक्ट होती है, और ये परफेक्ट टाइमिंग होती है जब आप 12th के बाद बाहर निकलते हैं और अपने करियर को परस्यू करने की कोशिश करते हैं, और एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ में, किसी भी स्ट्रीम में अगर आप महारत हासिल कर देते हैं तो आगे आपके करियर के, तो बस मैं ये कहूँ कि बहुत ही अच्छे ब्राइट फ्यूचर रहेगा, क्योंकि अगर आप एक अच्छा करियर चुनाव करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो ग्रेजुएशन में आपकी चुनाव का होता है। जी हाँ, ग्रेजुएशन में आप क्या कर रहे हो या फिर 12th के बाद आप क्या कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे हम बता रहे हैं आपको, साइकोलॉजी में अगर आपको करियर अपना बनाना है तो 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, और CUET सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा जो है आपका होता है, उसके थ्रू आप इस स्ट्रीम में जाने की कोशिश कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आप करिए, अपना एग्ज़ाम दीजिए, और उसके अलावा BHU UET प्रोग्राम होता है, जिस एग्ज़ाम होता है जिसमें आप साइकोलॉजी में प्रवेश ले सकते हैं बैचलर्स प्रोग्राम में, और JMI में से भी आप प्रवेश ले सकते हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन के लिए। और उसके अलावा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से भी आप ले सकते हैं प्रवेश ग्रेजुएशन में, और अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं साइकोलॉजी में।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जिंदगी में बहुत सारी उलझने और रुकावटें आती हैं, और ऐसे में हमारा मन कहीं ना कहीं विक्षुब्ध हो जाता है इन सब चीज़ों से लेकर के, और कभी-कभी हम चले जाते हैं ऐसी जगह पर जहाँ से हमें खींच के लाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे ही हमें खींच के लाने के लिए, हमें डेली रूटीन में अपनी उपस्थिति को बरकरार करने के लिए ज़रूरत होती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। और जैसा कि मैंने बताया कि करियर में अगर आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट से आगे बढ़ना है, तो केवल सिर्फ साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी अभी, लेकिन पहले साइकोलॉजिस्ट की बात की जाती है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी जिस भी जो कि डायग्नोस करते हैं, ट्रीट करते हैं मेंटल हेल्थ इशूज़ को, आज के समय में हर जगह पर मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, और जब इनको ठीक करने की बारी आती है तो उसके लिए किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास जाना बेहतर ऑप्शन होता है, और वो कोई और नहीं होता, या तो साइकोलॉजिस्ट होता है या साइकोथेरेपिस्ट होता है। इनके पास जा करके कहीं ना कहीं एक दिमागी सुकून ज़रूर मिलता है, और ये हमें समझते हैं और हमको समझने में कारगर साबित होते हैं। उसके बाद हमारी जितनी भी मानसिक उलझने हैं इनके पास जाकर कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश ये करते हैं, और यही एक बहुत बड़ी बात होती है एक साइकोलॉजिस्ट की। और दिमागी तौर पर हर एक इंसान विक्षुब्ध है, परेशान है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दिमागी परेशानियाँ, तो तब हमें साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो करियर इस वक्त जो है साइकोलॉजी में एक बेहतर दिशा दे सकता है अगर आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं तो। और इसके अलावा सोशल वर्कर्स भी बन सकते हैं जो अगर आप साइकोलॉजी में पढ़ाई करते हैं। उसके अलावा काउंसलर्स, और काउंसलर्स में भी आप कई तरह की काउंसलिंग कर सकते हैं, जहाँ स्कूल्स में भी काउंसलिंग हो रही है, जहाँ ऑफिसेज में भी काउंसलिंग हो रही है, और ऐसे काउंसलर्स आपको क्या करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं उस जगह पर अपनी प्रतिस्पर्धा

को बढ़ाने के लिए भी और साथ ही साथ आपको समझने के लिए. तो एजुकेशन काउंसलर हो गया और उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के तौर पर भी एज अ साइकोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है और आप साइकोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी बन सकते हैं. यहाँ पर भी आपकी जो साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज हैं वो काम आ सकती हैं. और रिसर्च रोल और मीडिया, जी हाँ, मीडिया फील्ड में भी आजकल इसमें करियर बनाना बहुत आसान हो जाता है अगर आपने साइकोलॉजी की हुई है. फिलहाल अभी गाना और भी बातें होंगी आपके साथ, सुनते रहिए मेरे साथ आकाशवाणी रेनबो.

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शन

0: धड़ाका का सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

बातों को सुनने का काम ही तो होता है साइकोलॉजिस्ट का। और इसके अलावा जब साइकोलॉजिस्ट की बात आती है तो उसके अलावा काउंसलर्स भी होते हैं। काउंसलर्स वो लोग होते हैं जो स्टूडेंट्स हैं या किसी फैमिली है उनको जोड़ने का, उनकी समस्याओं को सुलझाने का और उन्हें मार्गदर्शन कराने का बीड़ा उनका होता है। और इसके अलावा रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जा करके ये काउंसलिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कॉरपोरेट कंपनीज में जो कर्मचारी होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, उनकी जो वहाँ पे टेंशन है उनको, या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड, या फिर जो जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनको सेलेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि क्रिमिनल जो व्यवहार वाले लोग होते हैं उनकी सोच को कैसे एनालाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और साथ ही साथ ये लोग कानूनी एजेंसीज को भी मदद करते हैं। और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जैसे मैंने बताया कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे अच्छा बनाना है, क्या सिखाना है उनके व्यवहार में, उनके आचार में, कैसे उनकी बढ़ोतरी करनी है, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का चुनाव एज अ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं।

सब बढ़िया रहे इसीलिए होते हैं साइकोलॉजिस्ट, और आपकी दिमागी हलचल को बिल्कुल पहचानते हैं और आपको करते हैं बिल्कुल दुरुस्त और मानसिक तनावों से करते हैं दूर, और ऐसे ही आप अपना करियर भी बना सकते हैं करियर इन साइकोलॉजी में। और अभी फिलहाल मेरा जाने का वक्त हो चला है, मैं लेती हूँ आपसे विदा, फिर किसी दिन किसी रोज इसी मोड़ पर आपसे मुलाकात होगी। कहाँ पर? आकाशवाणी रेनबो पर। अगला प्रोग्राम सिटी लाइट्स लेकर आ रही है आपके लिए गजब की गीतांजलि, उनके साथ जुड़िए। मैं लेती हूँ आपसे विदा, फिर किसी दिन किसी रोज मिलेंगे हम यहीं पे, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल

0: अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा के प्रति ध्यान देने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल भू सीमा वाले देश में सीमा प्रबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रक्षा भूमि पर बड़े पैमाने की पहली सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये 250 मेगावाट की सौर परियोजना उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और बिजली खर्च में दीर्घकालिक बचत भी करेगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार राज्यों के साथ भी सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की DG और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, SP की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें NTA के DG स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्ष में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ देश को मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। भारत की विदेश नीति में पिछले 12 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसमें ब्रांड इंडिया और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत संकट के समय सबसे पहले मदद करने वाले देश के रूप में विकासशील और अल्पविकसित देशों की आवाज बनकर उभरा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वो धार्मिक शब्दावली के जरिए अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना उल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया है। श्रीलंका के दामुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 36 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत टाइम के बाद आपको एक बहुत ही ट्रेडिशनल वेलकम मुझसे सुनने को मिला है। थोड़ी थोड़ी आप मुझसे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि बहुत टाइम हो गया गीतांजलि, जैसे पहले हम करते थे पूरा वेलकम, तो आज सबसे प्यार से बहुत ही ज़्यादा तरीके से मैंने सबको बता दिया है कि देखिए 5 बज गए हैं, आपको पता है किस चीज़ का टाइम है। बिल्कुल आपका अपना सिटी लाइट्स, आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी के साथ, ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन। गर्मी का हाल पूछो मत, बाकी जितनी बातें वो मैं आपसे ज़रूर करूँगी। करना आपको क्या है, कुछ नहीं करना। मैसेजेस आपके पढ़ सकती हूँ लेकिन पढ़ नहीं सकती आप जानते हैं मतलब क्या है ना। आई नो दिस इज़ नॉट मैसेज मसाला मिक्स, दिस इज सिटी लाइट्स, बट एनीथिंग इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है आपको शेयर करना ज़रूरी है। मैसेज कहाँ भेजना है आपको पता है, 9868107070 पर भेज सकते हैं, पढ़ूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट होगा शेयर ज़रूर करूँगी। सबको बुला लेते हैं, बात कर लेते हैं, फिर बताएंगे मौसम का हाल क्या और सड़कों का हाल क्या है। इम्पॉर्टेंटली मैं वही हूँ आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी।

0: अवधि हो गई, बल्ले बल्ले।
1: जी बिल्कुल, बल्ले बल्ले हो गई है। लेकिन एक चीज आप सबको जानना जरूरी है, जब तक इतनी गर्मी में आप पता है ना कितना टेम्परेचर है, 42 डिग्रीज टेम्परेचर है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता ही होगा हाल चाल क्या है। दिल्ली के बाहर का कुछ अलग मौसम है वो आप जानते हैं, खासकर अगर आप पहाड़ों के पास रहते हैं, वहाँ भी आपको ऐसा लगता है ना कि चलो रिस्पाइट।

मिला, बहुत सारे लोग 2 दिन की छुट्टियां उठाई गाड़ी, कहाँ जाते हैं? पहाड़ों पर। अब पहाड़ों पर जाकर बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों को अलग अलग होते हैं, आज मैं उसके बारे में भी बात करने वाली हूँ। इन केस यू आर प्लानिंग टू गो, कि चलो भाई छुट्टी है 2 दिन उठते हैं बाहर निकलते हैं कहीं फैमिली के साथ घूम के आते हैं, तो उसके भी आपको क्या क्या उसके लिए प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे वो भी ज़रूर बताऊंगी। लेकिन अभी जो टेम्परेचर है बाहर उसको ध्यान में रखते हुए, इनफैक्ट पता क्या है, हमारे स्टूडियो के बैक साइड में छोटी सी तो नहीं, अच्छी खासी खिड़की है, अगर यहाँ से कभी भी मैं गर्दन मोड़ के देखती हूँ ना तो मौसम बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब मैं स्टूडियो में आई थी तब बाहर बहुत अच्छी खासी धूप थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर कुछ तो बारिश का माहौल बन रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे ज़रूर मैसेज करके बताना, वो मैं ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ। क्या होता है ना, एक होप जैसे आपको रहती है कि बाहर निकलोगे तो मौसम थोड़ा सा सुहाना है, ऐसी मुझे भी रहती है कि बाहर निकलूँगी सुहाना मौसम होगा, शो के बारे में, आपकी बातों के बारे में, अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचती हुई जाऊँगी। लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भेजी हैं जो मुझे सोचने पर मजबूर करने वाली हैं, वो क्या हैं आप जानते हैं ना, बस मौसम का हाल, आपकी सिर्फ हाइड्रेशन कैसे आपने मेंटेन रखनी है, उसी के बाद आपको पूरी चीज़ें समझ आएंगी कि क्या करना है आपने। जब आप पानी पी लेंगे, अपनी पूरी हाइड्रेशन मेंटेन कर लेंगे ना, बाकी की जो चीज़ें आप जानना चाह रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिएगा सिटी लाइट्स, आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी के साथ, ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन। जी बिल्कुल।

मुझे पता है क्या लगता है, जब भी मैं गाना प्ले करती हूँ, एक तो मुझे बहुत पसंद है और दूसरा क्या है, हमेशा इसमें बहुत ही एब्रप्ट एंडिंग होती है, तो कई बार लोगों को लग सकता है कि अरे ये क्या कट गया, ऐसा नहीं है, ये स्टाइल है। मतलब एक तो जैसे बाबू राव का स्टाइल था ना ये, इस पर्टिकुलर जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर मूवी के फिर गाने का जो पूरा कंपाइलेशन करते हैं, ये उनका स्टाइल है। फिलहाल आपके स्टाइल से हमारा स्टाइल बिल्कुल 100% मेल खाता है। उसका रीज़न ये है, सालों से, अभी कल कितना आप देखिए खूबसूरत सेलिब्रेशन हुआ, 90 साल आकाशवाणी।

के कंप्लीट हुए थे. आप में से बहुत सारे ऐसे फॉर्चुनेट हमारे फ्रेंड्स थे, हमारे सुनने वाले थे, जो आकाशवाणी आए, उन्होंने इन्जॉय किया पूरा फंक्शन, बहुत ही मज़ा आया था. इट वॉज़ अमेजिंग सेलिब्रेशन, सालों तक याद रहेगी बिल्कुल. लेकिन अभी क्या है ना, एक चीज़ पर आप लोग बार बार, आपकी जो सुई अटक जाती है, जैसे वेदर पर, अब गर्मी है तो सुई अटक गई, नहीं वो तो सब ठीक है लेकिन इतनी गर्मी में कहाँ जाया जाए, अरे वो तो सब ठीक है इस गर्मी में क्या खाया जाए, अरे वो तो सब ठीक है इस गर्मी में क्या पहना जाए, ओ माई गॉश. तो देखिए क्या है ना, ये जितना भी क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में हम बात करते हैं, तो इसका जो एक छोटा सा पॉइंट है, जो बिंदु, केंद्र बिंदु कौन है, वो हम सब है ना, हम ही लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है. जितनी भी ये क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, कितने टाइम से कह रहे थे कि भाई ये जो भी क्लाइमेट ख़राब हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हम लोगों को जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसको कम कर रहे हैं, लेकिन ना हमें बिल्कुल भी उसमें, जिसे कहते हैं थोड़ी सी भी हम चाहते नहीं है एडजस्टमेंट करें चीज़ों पे. अगर हमें प्लास्टिक यूज़ करना है हम करेंगे, हमें चीज़ें फेंकनी है हम फेंकेंगे. पेट्रोल की गाड़ियां जब चलती हैं वो एक टाइम लिमिट से ज़्यादा आप पोल्यूशन चेक नहीं कराते, जो गंदे गंदे ट्रकों से धुएं निकलते हैं वो क्या पोल्यूशन का हाल करते हैं, पराली जलती है क्या पोल्यूशन का हाल होता है. तो कोई ऑल्टरनेट जब हमें प्रोवाइड भी किया जाता है ना, हम लोग यूज़ करने में हिचकिचाते हैं. ये रीज़न है कि ये जो गर्मी है, हर साल हमें सुनने में आता है कि 2 डिग्री बढ़ गई है, 2 डिग्री बढ़ गई है. आपको पता है पुणे जैसी जगह में, जहाँ पर अप्रैल में मानसून इतना प्रेवलेंट होता था कि भर के बारिश होती थी, बिकॉज हमारा वहाँ पे एक सेटअप है फैमिली, तो हमें पता है. अभी क्या है, जून आ गया है और वहाँ पे ऐसा कोई बारिशें नहीं हो रही हैं, कभी कभार बहुत कम फुहारें, जो कि हमारे दिल्ली में मुझे लगता है ज़्यादा हो रही हैं. तो दिस इज़ वॉट क्लाइमेट इज़ ऑल अबाउट. सो रादर देन थिंकिंग कि अरे क्या करें इतनी गर्मी में, कैसे कंट्रोल करें चीज़ें, उसके बारे में सोचे. बाकी चीज़ें सोचने के लिए हम यही हैं जी, बिल्कुल आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी ओनली ऑन सिटी लाइट्स. दिस इज अ स्टेशन ऑफ द नेशन.

जी आने जाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, प्लानिंग चाहिए होती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि हेल्थ फैक्टर है, फिर आपका एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजकल रिसेंटली मैंने ये देखा है, जब भी ऑन द स्पॉट प्लान बनते हैं ना, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा गर्मियों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, हाफ वे थ्रू है ऑलमोस्ट कई स्कूल्स की, तो क्या होता है ना, जब आप लॉन्ग वेकेशंस प्लान नहीं कर सकते, छोटी करनी होती है वर्क के अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंगली, पैसे के अकॉर्डिंगली, तो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहता है ना, अरे गाड़ी उठाओ कहीं आसपास चले जाओ। तो ये जो गाड़ी उठा के आसपास जाने का जो ट्रेंड है ना, अब ये इतना ज़्यादा हो गया है। पहले तो मसूरी, नैनीताल, ये जगहें बहुत ही पॉपुलर हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ऋषिकेश। अभी तो आपको पता है, अगर आप गंगा स्नान के लिए जाना चाहते हैं ना, अगर आप आज भी जाएंगे तो आपको घाटों में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। खड़े होने की मतलब एंट्री तो दूर की बात है, इतनी भीड़ है, मतलब जहाँ पे पॉसिबिलिटी लोगों को लग रही है वो गाड़ी उठा के जा रहे हैं। आपको ये भी समझना चाहिए कि जब आप बिना प्लान किए जाते हैं, एटलीस्ट आजकल तो सबके पास इंटरनेट है, सबके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, चेक कर लीजिए कि वहाँ पे कोई पार्किंग अवेलेबल है, कोई ऐसी जगहें आसपास जहाँ पे अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, कितनी दूर है जहाँ पे आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके घाटों से, या फिर वहाँ पे कोई होटल्स की अवेलेबिलिटी है। मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे जिन्होंने कहा कि हमें रात गाड़ी में गुजारनी पड़ी क्योंकि होटल में कमरे नहीं थे। तो इमेजिन कीजिए, अगर आप अनप्लान्ड ट्रैवल कर रहे हैं तो कितनी सारी ऐसी सिचुएशन है। अगर आपके साथ बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो पूछिए मत, चीज़ें बिल्कुल ही डिफरेंट एंगल पे जा सकती हैं। इसीलिए मैं हमेशा ये आपसे बताना चाहती हूँ कि ये जो जितने भी इंस्टिंक्टिव काम हम करते हैं ना, कई बार तो ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा ट्रैवल फैक्टर, रिस्क फैक्टर नहीं है तो चलता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हर बार, एक बार ये चीज़ हो गई है तो हर बार अच्छी होगी, नहीं होती है। सो प्लीज़ मेक श्योर, अगर आप जा रहे हैं, डू प्लान एंड ट्रैवल, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट। अच्छा, फिलहाल ट्रैवल की बात आई है, हमने ये बेसिक चीज़ तो आपको बता दी, लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ख़ासकर उनके लिए जो कि कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स में ट्राई करते हैं और कुछ ऐसे ख़ास चीज़ें करना चाहते हैं जो एक नॉर्मल प्रोफाइल से हट करो, है ना, जब जितने भी गवर्नमेंट प्रोफाइल होते हैं, चाहे वो कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे फिर वो सफदरजंग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की भर्ती हो, जब भी ऐसा होता है तो क्या है कि लोग चाहते हैं कि हमें पहले तो बिल्कुल बिफोर हैंड पता चल जाए, ताकि टाइम मिले जाने का, प्लान करने का होता है ना, ट्रेन की टिकट्स बुक करानी है अगर बाहर से आना है। अब जैसे देखिए, सफदरजंग हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए वॉक इन इंटरव्यूज़ प्लान किए जा रहे हैं, तो देखिए जब वॉक इन इंटरव्यूज़ प्लान होंगे तो उसमें खाली ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि केवल वही डॉक्टर्स आएंगे जो सफदरजंग के आसपास रहते हैं, दूर दूर से वो सब आएंगे ना जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है। तो भाई ये जो कंडक्ट होने जा रहे हैं, स्पेशली रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए होने जा रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट खासकर जिन्होंने कंप्लीट कर लिया इंटर्नशिप ऑन और आफ्टर 2024, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यू कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन फॉर द डेट्स, फॉर द टाइमिंग्स, बाकी हमें जैसे जैसे पता चलेगा हम आपको बताते रहेंगे। एक और ऐसी पोजिशन है जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा अभी, क्योंकि उसके लिए तो स्पेशल ट्रेन प्लान कर दी गई है भाई, उनके इंटरव्यू में वो आराम से पहुँच जाएँ। अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन से इंटरव्यूज़ हैं, तो आपको कहीं नहीं जाना, सुनते रहना है सिटी लाइट्स, आपकी अपनी आवाज़ की गीतांजलि सोनी के साथ और अमित त्रिवेदी की आवाज़ सुनोगे बड़े देर बाद।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

This is City Lights. Thank you so much for loving every single bit of City Lights. जी मैं वही हूँ आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी ओनियन स्टेशन आउट विद द नेशन. तो देखिए नेशन के पास बहुत सारे टॉपिक होते हैं बात करने के. आपकी गीतांजलि के पास तो पूछिए मत, टॉपिक्स की भरमार होती है. लेकिन देखिए पिक करना तो वही बनता है ना जो मुझे लगता है कि आज जितने भी हमारे सुनने वाले श्रोता देश के कोने कोने से हमें सुन रहे हैं, प्रिडोमिनेंटली जो चीज़ें उनको जानना बहुत ज़रूरी हैं वो पहले बता दी जाएँ. तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि सफदरजंग हॉस्पिटल में 18 जून को वॉक इन इंटरव्यू है. तो वो अगर आप उसको प्लान करना चाहते हैं, आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आपने मेडिकल स्टडी की हुई है, अपना इंटर्नशिप किया हुआ है, 2024 तक आपका इंटर्नशिप कम्प्लीट हो गया है, उसके बाद भी तब भी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. इट्स जस्ट वॉक इन और कोई कम नहीं है. वैकेंसीज 151 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर चाहिए उनको. तो एवरीबडी स्टैंड्स एन इक्वल चांस. तो जा सकते हैं, पता कर सकते हैं. और जो बड़ी ख़ास बात है उनके लिए, जो परीक्षा में उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे की ओर से

एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। अभी क्यों चलाई गई है, क्योंकि सभी जानते हैं कि भाई जो परीक्षाएं हैं वो वाकई बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं और उसके लिए हर एक को सुविधा मिलनी चाहिए जाने के लिए। तो भाई स्पेशली ये जो रेलगाड़ी है ये इसलिए चलाई जाएगी क्योंकि जितने भी उत्तर प्रदेश में जो सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए ट्राई करना चाहते हैं वो वहाँ पर जाएँ और अच्छे से इंटरव्यू दें। तो ये जो गाड़ी है ना, बिकॉज 8, 9 और 10 जून तक चलेगी ना परीक्षा, तो ये आपको गाड़ी तिलक ब्रिज से सुबह 9:45 बजे मिलेगी और वो 1:40 पर आपको सहारनपुर पहुंचा देगी। और वापसी में क्या होगा, फिर सहारनपुर से दोपहर 2:00 वो चलेगी और शाम को 6:00 तिलक ब्रिज पहुंचेगी। तो ये इसका स्केड्यूल रहेगा। एक एक्स्ट्रा ट्रेन है आपके लिए, दिस इज़ वेरी वेरी वेरी नोबल आई थिंक थिंग टू डू, जिसमें परीक्षा की जो विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी, आई थिंक दिस इज़ ग्रेट। और तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं चाहती थी मैं आपको बताऊं। अच्छा हाँ, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण में भर्ती निकली है ना, आप सभी जानते होंगे, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं DDA में भर्ती के लिए। इसमें 15 जुलाई तक आवेदन हो सकता है, तो ये आप ट्राई करें DDA.gov.in। आप इसमें जाकर वेबसाइट पर पूरी डिटेल आपको मिल सकती है और IPU.admissions.nic.in में भी पूरी डिटेल आपको मिल सकती है। तो देखिए, कई ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो कई बार नहीं पता चलती आपको, वो हम आपको बताते रहते हैं। और भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलते ही हैं, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जाना है तो जाना है, हमें तो बाहर जाना है, तो अगर आपका बिल्कुल वैसा जज्बा है तो आपके लिए अच्छी कुछ खबर है। क्योंकि भाई सरकार भी जानती है कि जो लोग बाहर निकलेंगे, चाहे वो घूमने निकले हैं, चाहे वो काम से निकले हैं, चाहे फिर हमारे जो जितने भी ऐसे श्रमिक गण हैं जो निर्माण का काम करते हैं, जो संवेदनशील वर्ग से जुड़े हुए हैं ना, थोड़े दिहाड़ी मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसे ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। कि देखिए कैसे ये आइडियाज़ आपको भी आ सकता है अगर आप अपने आसपास वालों को देखते हैं जहाँ पे आपको लगता है सब मिलके कुछ उनके लिए इतनी भीषण गर्मी में कर सकते हैं। तो ये मैं जो भी आपको बात बताने जा रही हूँ, आप भी कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं। क्या है वो, क्या बताना चाहती हूँ मैं आपको, सुनना पड़ेगा आपको अभी, लेकिन अभी के लिए आई थिंक आपको एक म्यूज़िकल ब्रेक देना ज़रूरी है, क्योंकि गाने आप सुनते हैं ना तो एक अलग अंदाज से आप चीज़ें समझते हैं। सुनते रहिएगा सिटी लाइट्स।

0: किसको समझ आई है बताएं मुझे ये बात, आप इतनी मीठी है वैस।
1: जी बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल वॉइस मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। एक सवाल आया था मेरे पास काफ़ी देर से, तो वो जानना चाह रहे थे कि ऑन एयर कितने

तरीके की आवाज़ मॉड्यूलेट कर लेते हैं, तो किसी भी तरीके की आवाज़ मॉड्यूलेशन कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस हो तो। लेकिन अभी के लिए हम इतना ज़रूर बताना चाहते हैं कि हमारी जो मॉड्यूलेशन हो रही है ना, दैट इज़ जस्ट टू मेक एवरीवन्स लाइफ इंक्लूडिंग आवर्स हैप्पी, इजी एंड वंडरफुल। और ख़ासकर जब हम मौसम की बात करते हैं तो फिर उसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देनी बनती है। आप जानते हैं कि हमारी राजधानी में गर्मी में ना, जब भी हम बात करते हैं नेचुरल चीज़ों को बढ़ावा देने की, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कहते हैं दे आर एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल थिंग्स टू डू, तो इसमें ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी राजधानी में ये जितनी भी बढ़ती गर्मी की प्रॉब्लम है, हीट वेव है, इससे कैसे नागरिकों को सुरक्षित रखा जाए और कैसे अपने पर्यावरण को अब हार्म ना करते हुए अच्छा सा कुछ ऑप्शन दिया जाए। इसके लिए आपको पता है वो आपने बांस देखे जो कि पर्यावरण अनुकूल बांस होते हैं ना, यानी कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो बांस होते हैं, मोटे मोटे प्यारे से, उसमें बहुत वाटर कंटेंट होता है, उससे ना वाटर कूलिंग जोन स्थापित किए गए, उससे बनाया गया है। यहाँ पर बैठ कर ना लोगों को गर्मी नहीं लगती, मतलब ठंडी का एहसास होता है। तो इसमें कोई भी बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट एब्सोल्युटली एनवायरमेंटल फ्रेंडली, वेरी इकोनॉमिकल, बड़े अच्छे जोन बनाए गए हैं। और जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने खासकर ये जोर दिया है इस बात पे कि भाई ये लोगों को ये कूलिंग जोन देने चाहिए और जितने भी ज़्यादा क्षेत्रों में इसको स्थापित किया जा सकता है किया जाए। और अभी तो बवाना और अलीपुर में भी ऐसे दो कूलिंग जोन चल रहे हैं, तो अगर आप वहाँ रहते हैं तो आपको पता ही होगा। और ऐसे और जल्द ही तीन और कूलिंग जोन ऐसे स्थापित किए जाएंगे। और इसका देखिए मेजर, इसका जो कूलिंग जोन का एक एस्पेक्ट है क्या है आप बताइए, उद्देश्य क्या है, वो ये है कि नॉट ओनली रिच एंड ईजी, जिसे कहते हैं जिनको लाइफस्टाइल एक पैटर्न समझ आता है वो चीज़ें ले सकते हैं, उन्हीं के लिए अवेलेबिलिटी हो। जैसे मैंने पहले बोला था, जो संवेदनशील वर्ग हैं, जो जिनके लिए बाहर निकलना बिल्कुल नेसेसिटी है, जैसे रिक्शा चालक हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, दिहाड़ी मजदूर है, तो जो खुले में काम करते हैं, तो उनको भी गर्मी के दुष्प्रभावों से थोड़ा सा थोड़ी सी राहत मिले। जब उनका ब्रेक टाइम होता है वो ऐसी जगहों पर बैठें, आप देखेंगे ना नॉर्मली लोग पेड़ों के नीचे बैठते हैं क्योंकि वहाँ पे एक नेचुरल, जिसे हम कहते हैं ना, रब्बी कूलिंग मिली हुई है, सो दैट्स रियली नाइस। और आपको पता है ना बीट द हीट का भी एक पहल चल रही है, जिसमें सीपी में तो आपको दिखा ही होगा, अगर आप सीपी में घूम रहे हैं, मिट्टी के घड़े रखे हुए हैं, उसमें लोग पी रहे हैं ठंडे पानी, सो इट्स अमेजिंग। वो मिट्टी के घड़ों में ना कहीं में नीचे, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको हाथ डालना है, वो बड़े अच्छे से प्लेस किए हुए हैं, उसमें नलका लगा हुआ है, तो आप नलका खोलें। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, ये जितनी भी चीज़ें मिलती हैं ना, अगर जिसमें मैं कहना चाहती हूँ फ्री में हमें चीज़ें मिलती हैं सरकार के द्वारा, उसको ना मिसट्रीट मत किया कीजिए कि नलका खोला भाई हमने तो पी लिया, वहाँ जो ग्लास पड़ा था उसको पिया, साइड में फेंका और हमने आगे बढ़ गए, नलका बंद नहीं किया, ऐसे मत कीजिए। अगर ऊपर से ढक्कन ढका हुआ है उसको ढके रहने दीजिए, जो एक प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए ताकि सबको इक्वली बेनिफिट हो। ये सब चीज़ें दिमाग में ना आए कि बताइए अभी वो पी के गए थे, प्यास तो हमें लग रही है लेकिन हम पी नहीं सकते क्योंकि वो इस कंडीशन में छोड़ के गए हैं, उसको ढके नहीं गए घड़े को और ग्लास झूठा ही छोड़ गए। सो थोड़ा अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखेंगे तो मेरे ख्याल से चीज़ें बेटर लगेंगी। सो आई थिंक दिस इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग। और अगर ऐसा कोई इनिशिएटिव आपको लगता है, आप और आपकी सोसाइटी, आप अगर किसी एनजीओ से जुड़े हैं, आप ऐसा करना चाहते हैं छोटे छोटे जोन्स में जाकर, सो प्लीज़ ट्राई एंड डू इट। आई थिंक दिस इज ब्यूटिफुल एंड दिस ऑल इन्फॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम गज़ब की गीतांजलि सोनी, ओनली ऑन सिटी लाइट्स।

दिस इज़ आवर ओल्ड लव इज़न्ट इट. कुछ ऐसा प्यार होते हैं ना, कुछ ऐसे ऐसे टोन्स होती हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं. जब आप आकाशवाणी का इनिशियल डेज थे तो एक बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ आती थी, तो उससे एक अटैचमेंट होती है. जब हम शुरू में दिल्ली दूरदर्शन चलाते थे तो एक अलग सी आवाज़ आती थी जिसमें गोल गोल चंद्रमा घूमता हुआ आता था. कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जिससे ना आपको बहुत अटैचमेंट हो जाती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ अपना सा है. तो वो ही एक फीलिंग होती है कुछ टोन से, कुछ आवाज़ों से, आकाशवाणी से. तो खैर 100% वो फीलिंग है ही हमें. लेकिन अभी एक फीलिंग मुझे ये आ रही है कि जब हम लोग फीलिंग की बात कर रहे हैं, अटैचमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो देश की नदियां हैं, हमारे देश की जो धरोहर है जिसके बारे में इतनी चर्चा हुई है, यमुना जी को तो क्लियर क्लीनिंग का कितने सालों से एक चर्चा परिचर्चा चल रही है. और आपको पता है सबसे खूबसूरत बात यह है कि काफ़ी हद तक कैसे यमुना जी को ब्यूटिफाई किया गया है. अगर आप गए हैं अभी रिसेंटली तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपने देखा होगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने क्या देखी होगी ना कि वहाँ पर जो क्रूज स्टार्ट किया गया है ना, दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. बिकॉज मुझे लगता है कि जब जहाँ पर ऐसी कुछ शुरुआत की जाती है कि लोग जाना चाहें अपने परिवार के साथ या बाहर से,

किसी को आना हो तो उसको हम सजेस्ट कर पाएं, एक टूरिस्ट्री सॉर्ट ऑफ अ स्पॉट बनाया जाए, उसको ऐसी कोई जगह स्पॉट बनाया जाए कि लोग जाना पसंद करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर थोड़ी सी सफाई रहना शुरू हो जाएगी, लोग अननेसेसरी चीज़ें नहीं डाल पाएंगे, क्लीनिंग ज़्यादा होगी। अगर आप में से किसी ने भी अभी हमारी माइटी यमुना जी में ट्राई किया है, देखने गए हैं कि वहाँ पर एक रिवर क्रूज स्टार्ट कर दिया गया है, 40 सीटर रिवर क्रूज है और इसमें लाइव म्यूज़िक होगा, फाइन डाइनिंग होगी, ये सोनिया विहार से जगतपुर से के थ्रू होके जाएगा। सो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो शायद हमें नहीं पता कि हमारे जो ख़ासकर दिल्ली है इसमें हो रही हैं। और मुझे पता नहीं, शायद काफ़ी टाइम हो गया, मैंने आपसे पूछा भी था कि आप कभी हमारी जो दिल्ली में हेरिटेज साइट्स पे वॉक होती हैं उसमें जो ग्रुप्स वो वॉक कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, कभी आप गए हैं, आपने कोशिश की है? क्योंकि मुझे लगता है लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि क्यों कोई ऐसे हेरिटेज साइट पे हमें लेके जाएगा। लोगों को ये भी लगता है कि भाई वहाँ तक जहाँ पे उन्होंने इकट्ठे होने की जगह बनाई है, जाने में भी हमारे पैसे और टाइम लगेगा। तो देखिए, हर चीज़ में पैसा और टाइम तो लगेगा ही, लेकिन एक एक्सपीरियंस के लिए ना कि भाई रिस्क लेना ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, यू ओनली हैव थिंग्स टू गेन। और वो क्या गेन करोगे आप? जब आप अपनी हेरिटेज पे विजिट करोगे, वहाँ जाओगे, लोगों से मिलोगे, नॉलेज गेन करोगे, कॉन्फिडेंस गेन करोगे, और हो सकता है कि आपको आने वाले समय में अपना इंटरेस्ट क्या है ऐसी हेरिटेज साइट में जाके पता चले। तो अगर नहीं किया है तो करना ज़रूर। बाहर बाहर भागते हैं, अपने घर के अंदर क्या है वो तो देखें कम से कम। जैसे सिटी लाइट्स में कितनी सारी चीज़ें हम आपस में बातें कर लेते हैं, बर्थडेज की बातें करते हैं, एनिवर्सरीज़ की बातें करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं वो भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए ओहो ये गाना सुनो, मेरा फेवरेट है।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

चलो जी समय होने वाला है, और खासकर जो लोग तेज रफ्तार से सड़कों पर हैं उनको बता दें सड़कों का हाल कैसा है जनाब। आपको पता है वर्किंग डे में तो सड़कों का हाल खासकर इवनिंग में कैसा होने वाला है, कंजस्टेड रहने वाली हैं मोस्टली जो बिजी एरियाज़ हैं। अगर आप NH8 लेते हैं गुड़गांव से जाने के लिए और फिर दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए, दोनों तरफ से आपको पता है हैवी NH8 पे ट्रैफिक मिलता है। दूसरा, अगर आप CP में हैं तो इंटरनल जो सर्कल है उसके अराउंड आपको काफ़ी ट्रैफिक मिलता है। और ख़ासकर मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो लोग फैज़ रोड से रानी झांसी रोड कॉरिडोर लेते हैं उनको डायवर्जन मिलेगा, क्योंकि 220 KV की केबल डल रही है, वहाँ पे काम चल रहा है, तो ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, मोमेंट इफ़ेक्ट होगा पक्का से फैज़ रोड टुवर्ड्स ईदगाह एंड रानी झांसी फ्लाईओवर। तो ये 8 तारीख से 18 तारीख तक ये चलने वाला है जी काम, तो यू हैव टू मेक श्योर। और ख़ासकर जो पीक कंजेशन टाइम होता है ना, सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक और 5 से लेकर 9 बजे तक शाम को, तो प्लीज़ जितने भी कम्यूटर्स हैं आने जाने वाले, उनको अवॉइड करना ही पड़ेगा स्ट्रेच ड्यूरिंग दीज आवर्स। ऑल्टरनेट रूट तो बहुत सारे हो सकते हैं, वो बताऊँगी तो मुझे लगता है मुझे अनदर 1 घंटा चाहिए, लेकिन जल्दी में मैं बस इतना ही बता सकती हूँ। अगर आप जानते हैं अच्छे से तो जितना भी ट्रैफिक प्रोसीड करता है सेंट्रल न्यू दिल्ली से टुवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, तो उनको तो ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूसा रोड और उसका लिंक रोड है ना, जो वंदे मातरम मार्ग रिज रोड रानी झांसी रोड, ये ऑल्टरनेट कम्यूटर यूज़ कर सकते हैं देश बंधु गुप्ता रोड। क्योंकि क्या होता है ना कि जो डायरेक्टली जाने वाले उनको तो पूरे रास्ते पता होते हैं, जो नहीं जाने वाले होते उनको समझना पड़ता है, तो समझने के लिए फिर आपको और डिटेल से जाके ऑनलाइन देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रैफिक मूविंग फ्रॉम करोल बाग टू ओल्ड राजेंद्र नगर है टुवर्ड्स ISBT, जितने लोग वहाँ से आते हैं ना कश्मीरी गेट सिविल लाइंस, उनको ये एडवाइस किया जाता है कि भाई प्लीज़ आप रोहतक रोड वाया वो जीवनमाला हॉस्पिटल है ना, फिर वहाँ से प्रोसीड होते हुए आप आज़ाद मार्केट फ्लाईओवर और फिर वो पुल जो कौन सा है वो बंगश, वहाँ से जाइए। तो ये तो कई लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे, जितने लोग वहाँ जाते हैं उनको पता है ना, हमें तो पता करने ही पड़ते हैं क्योंकि हमें आपको बताना है ना। और अगर आप पूसा रोड से करोल बाग से बुलवार्ड रोड से जाते हैं ना, तो आपको दयाल सिंह कॉलेज रोड फिर फिल्मिस्तान यहाँ से प्रोसीड होके जाना पड़ेगा। कहने की बात ये है कि मैं बताऊँगी तो आप शायद कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, तो आप बेहतर रहेगा कि आप ना वेबसाइट जाके ना जो ट्रैफिक पुलिस की होती है ना traffic.delhipolice.gov.in, आप यू मेक श्योर कि आप हमेशा जब भी आपको कोई डाउट हो ना रास्ते के बारे में यहाँ जाके चेक करें। फिर उनका फेसबुक अकाउंट भी है DTP Traffic करके facebook.com, और फिर आप इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं DTP Traffic का instagram.com पर। ज़्यादा है तो व्हाट्सएप करके उनको व्हाट्सएप नंबर से चेक कर लीजिए, उनका व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, होना चाहिए आपके पास 8750871493। दोबारा बोल दूं 8750871493, ऐसा लगता है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और हेल्पलाइन नंबर है उनका 1095 यानी कि 1095। और अगर लैंडलाइन पे कॉल करना चाहते हैं तो दिल्ली के बाहर से या फिर अपने मोबाइल से ये डायल करने के लिए 011 लगाना पड़ेगा आपको 2584444 यानी कि 2584444। व्हाट अ मैजिकल म्यूजिकल नंबर। और अभी के लिए बस घड़ी मुझे बता रही है कि गीतांजलि सोनी समय आ गया है आपको सोनी सोनी बातें करके टाटा बाय बाय कहने का। लेकिन ना जाने से पहले ना कुछ चीज़ें मैंडेटोरी हैं, वो हम करने ही वाले हैं। एक तो जिनके बर्थडेज हैं आज, सो विश यू वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।

ड्रम रोल्स। ये आकाशवाणी के समस्त परिवार की तरफ से आपको ढेरों बर्थडे की शुभकामनाएं। शुभ रहे, मंगल रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे, बस यही है। और जिनकी एनिवर्सरी है, हिम्मत से रहे। जी, जिनकी एनिवर्सरी है, दिल से एनिवर्सरी की ढेरों ढेर शुभकामनाएं आपको। और आज अगर कोई ऐसा टास्क है जो आपको लगता है बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज 9 जून है, मंगलवार है, ये भी आपको याद दिला दें। जल्दबाजी में कई बार नहीं याद रहता, 2026 है, ये भी जान लें, डॉक्यूमेंटेशन साइन करते हुए सब देख लें। ये सब चीज़ें देख परख के और फिर आप अपना काम आगे बढ़ाएं। जितने भी बिल सबमिट करने हैं कर देना, बहुत सारे काम हैं जो करने वाले हैं। अरे सबसे इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ अपना पॉल्यूशन चेक ज़रूर करा लेना गाड़ियों का, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटे मोटे चलान कटेंगे अदरवाइज। बाकी बस इतना ही है कि रोड पे आते हैं सेफ्टी रखें, एनवायरनमेंट को प्योर रखें, गर्मी है हाइड्रेटेड रहें। अननेसेसरीली अभी आने वाले 2-3-4 दिन काफ़ी ज़्यादा हीट वेव बढ़ सकती है, कहीं कहीं फुहारे भी होंगी, बट इसका ये मतलब नहीं कि मौसम ठंडा हो जाएगा, कहीं कहीं राहत मिल सकती है, बट प्रेडोमिनेंटली मौसम गर्म ही है, तो अपना ध्यान रखें। फिलहाल के लिए आपको पता है मैसेज मसाला मिक्स में होने वाले आपके दिल की शांति, क्योंकि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिलते हैं ना मैसेज मसाला मिक्स में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कह नहीं पाते सिटी लाइट्स में, आप मैसेज मसाला मिक्स में कहते हैं, तो उसके लिए तैयारी बना लीजिए। फिर आप हमारे जो प्रेजेंटर आते हैं ना, खासकर आज आने वाली हैं भारती डैंग, ये वही भारती हैं जो कभी नहीं हारती हैं। फिलहाल गीतांजलि सोनी को आपको देनी होगी इजाज़त, जल्द मुलाकात होती है आपसे, खुश रहिएगा और खुश रखिएगा। जाऊँ, जाने दे रहे हो, तारीफें कर देना मेरी, ओके okay?

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने

0: और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमरीका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ऑल राइट लिसनर्स, जी हाँ, मैं हूँ आपकी वही आरजे भारती जो कभी नहीं हारती और चाहती है कि आप भी जिंदगी से कभी ना हारे। यस ऑफ कोर्स, फेस लाइफ विद फुल पावर, और वो तो आपको हमेशा ही जिंदगी में करना है, आपका मेरा वादा है। और इस वादे के साथ बस यही एक इरादा है हमेशा की तरह कि जितना हो सके आपको एंटरटेन कर सके, हमेशा की तरह जितना हो सके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ सके।

हमेशा की तरह और जितना हो सके आपकी बातें जो हैं वो हम तक पहुंचती रहें और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हम लेकर आ सकें हमेशा की तरह। वेल, इसी की नोट के साथ बिल्कुल से शुरू करते हैं मिस एंड मसाला मिक्स की हमारी आज की सीरीज आरजे भारती के साथ। और बिल्कुल से कुछ तो पूछने वाली ही हूँ मैं और कुछ तो आपसे पूछूंगी ही, क्योंकि कुछ तो आप मुझे बताएंगे ही। तो आज का जो मेरा सवाल है ना, इसे सवाल मत समझिए, इसे जी का जंजाल समझिए, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है और हम सबकी एक परेशानी भी है। ऐसा तो हमेशा ही होता है, ऐसा नहीं होता कि कभी कभी होता है, मुझे लगता है हमेशा ही होता है कि जब दिल और दिमाग आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल से खड़े हो जाते हैं, हमेशा ही ऐसे होता है। और ऐसे में दिल और दिमाग के बीच में, बस ये जो कश्मकश है, इसके बीच में आप किसकी बात सुनते हैं? अब ऐसे मत कहना कि कभी कभी दिल की सुनते हैं, कभी कभी दिमाग की सुनते हैं, ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर हम किसी एक की बात सुनते हैं। तो आज आपको मुझे यही बताना है कि ऐसा आपके साथ भी हुआ है कभी किसी भी सिचुएशन में कि दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है, और उस पल आपने किसका साथ दिया, और क्या आज भी आप उस फैसले से खुश हैं? चलिए ये बात मत बताइएगा क्योंकि आंसर बहुत लंबे हो जाएंगे, बस इतना ही बता दीजिएगा कि आपने दिल और दिमाग में से किसका साथ दिया है या किसका साथ देते हैं, और अपने बड़े ही ना दिलचस्प से आंसर्स मुझे भेजिएगा। और मैं बिल्कुल इंतज़ार कर रही हूँ, आपको मुझे करना है व्हाट्सएप, आपके संदेश व्हाट्सएप के ज़रिए आपको मुझे भेजने हैं 9868107070 पर, 9868107070 पर आप मुझे भेज दीजिए अपने मैसेजेस और बन जाइए हमारी आज की मैसेज मसाला मिक्स की वंडरफुल सीरीज का हिस्सा। सो स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग एंड कीप मैसेजिंग। और एक बहुत ही प्यारा ट्रैक आप सबके लिए मैं प्ले करने वाली हूँ, स्टे ट्यून, और आपके मैसेजेस लेकर जल्दी से लौटने वाली हूँ। सो सुनते हैं इसको। और दिल्ली के मौसम में कुछ तो नॉक नॉक हुआ है, लग रहा है आपको, बता दीजिएगा।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: All right, listeners, message masala mix हमारी आज की सीरीज बिल्कुल से बात कर रहे हैं दिल और दिमाग के बीच की कश्मकश की। और मुझे लगता है ये कश्मकश वाकई एक ऐसी कश्मकश है कि इतने सारे मैसेजेस आ गए हैं कि अब मुझे कश्मकश है कि मैं किसका मैसेज लूं और किसका मैसेज ना लूं, यानी कि कौन मुझे आज डांटने वाला है और कौन मेरी बात से खुश होने वाला है। पर चलिए कोई बात नहीं, कोशिश तो ये रहेगी कि बैक टू बैक आपके जो मैसेजेस हैं वो मैं साथ साथ लेती जाऊँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज आया है कि लगता है मैम आज के बारे में आप सुनना चाहते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये कह के आपने अपने लिए मुसीबत मोल ली है कि अगर वो भी आपके साथ बैठकर सुन रही हैं। सो नाम आपने अपना नहीं लिखा है, सो मुझे आपका नाम नहीं पता है, उसके लिए सॉरी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मोहम्मद सरफराज आलम लिख रहे हैं कि हाँ, कई बार ऐसी स्थिति आती है जब रिश्ते और इंसानियत हो तो दिल की सुनते हैं, जब फैसला भविष्य और जिम्मेदारियों का हो तो दिमाग की सुनते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट आंसर है और हमें पॉलिटिकली करेक्ट आंसर नहीं चाहिए, हमें वो आंसर चाहिए जो एक्चुअल में आप ऐसी कश्मकश में फंसते हैं तो फिर क्या करते हैं। बट इन्होंने लिखा है कि कभी दिल की बात सुन लेते हैं तो कभी दिमाग की बात सुन लेते हैं। वेल, अगला मैसेज जो मेरे पास है, रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, क्या बात है, ओखला संगम विहार दिल्ली से बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलकर मैसेज किया है, रेडियो सखी का नाम दिया है। मुझे ये बताइए, रेडियो सखी का नाम आपने किस किस को दिया है? अगर सबको दिया है तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई और नाम दीजिए। जोक सपान, आपने मुझे लगता है कि ये मैसेज पहले ही कर दिया था और मेरी बात का जवाब इसमें नहीं है। पर चलिए कोई बात नहीं, बता दीजिएगा दिल की सुनते हैं या दिमाग की, लेकिन आपके मैसेज से लग रहा है कि आप दिल वाले ही हैं, दिल की बात ही सुनते होंगे। अगला मैसेज मेरे पास है, ये हीरा मणि वर्मा का है, भाटापारा दंत दत्त रेंगी से लिखा है कि हाँ, ऐसा हुआ है मेरे साथ, जब दिल और दिमाग दोनों आमने सामने आए हैं तो मैंने दिमाग से काम लिया है और दिमाग की ही मैंने सुनी है। क्या बात है, चलिए मैं बस ऐसे ही जवाब देखना चाहती हूँ। और आज तो पूरी वोटिंग होगी कि दिल की बात लोग ज़्यादा सुनते हैं या दिमाग की बात ज़्यादा सुनते हैं। अगला जो मैसेज है मेरे पास ये आया है, किशन वजनानी, नीलम स्वाति, किशु, ये सभी ना हमारे बहुत रेगुलर लिसनर्स हैं और ये ऐसे भी हैं कि इनका नाम लेना हमारे लिए ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आनंद बिहार से मैसेज है, रेलवे कॉलोनी भी नहीं बोला ना तो भी एक नाराज़गी वाली चिट्ठी मेरे पास आ सकती है। सो गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक बेहद दिलचस्प है, होना भी चाहिए क्योंकि मैंने दिया है। और साथ में लिखा है कि हमारा यही कहना है कि दिल और दिमाग के बीच में इसकी कश्मकश में दिमाग की सुनते हैं, क्योंकि दिल जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करवा देता है। ये बहुत गलत बात है, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया, मतलब दिल क्यों गलती करवा देता है। बट चलिए कोई बात नहीं, सही रास्ते पे ले जाता है दिमाग। और साथ में मेरे बारे में जो लिखा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एज ऑलवेज। अगला मैसेज जो है, नमस्कार जी, ऐसी किसी परिस्थिति में मैं दिमाग से कम काम लेता हूँ, मैं दिमाग से कम लेता हूँ या दिमाग से काम लेता हूँ? दिमाग से काम लेता हूँ, ठीक से लिखा करो प्लीज, क्योंकि मेरे पास दिमाग है। प्रकाश गोगिया, जागृति एनक्लेव दिल्ली। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि जो दिल से काम लेते हैं उनके पास दिमाग नहीं होता, मतलब ये बहुत सीरियस वाली बात हो गई है, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा दिल वाले खाने में मेरा ज़्यादा वो रहता है। बट एनी वे, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। एक और मैसेज मैं लूँगी और उसके बाद जल्दी से एक गाना ज़रूर सुनेंगे। पंकज का मैसेज है अमरावती महाराष्ट्र से, गुड इवनिंग आरजे भारती मैडम जी। अरे बापरे, आरजे भारती मैडम जी, भारती लिख देते, मुझे बहुत अच्छा लगता। और साथ में लिखा है कि मैं हमेशा अपने दिल की बात सुनता हूँ, ये दिमाग की बात से कंफ्यूज्ड रहता हूँ और ज़्यादातर यही होता है कि मैं दिल की बातें सुनता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप दिल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो जागृति एनक्लेव से मैसेज आया था, प्रकाश गोगिया जी ना, उन्होंने लिखा है कि मैं तो दिमाग से काम लेता हूँ क्योंकि मेरे पास दिमाग है। बस चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, कोई शास्त्रार्थ नहीं करने वाले हैं, बस दिल और दिमाग के बीच में क्या जंग है इसके बारे में आप मुझे मैसेज करते रहिएगा। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। हमारे अभी जुड़ने वाले सभी लिसनर्स को वेलकम है और ये ट्रैक आप सबके लिए।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: ऑल राइट लिसनर्स, सो सीधा पढ़ते हैं आपके मैसेजेस की तरफ, आपके संदेशों की तरफ। और यहाँ पे मैसेजेस इतने सारे हैं तो वो एक के बाद एक स्क्रॉल हो जाते हैं, तो मैं वापस से वहाँ पहुँचती हूँ जहाँ पे मैंने एक लास्ट मैसेज लिया था। सो यहाँ पे मेरे पास मैसेज आया है, सत श्री अकाल RJ भारती जो कभी नहीं हारती, और आपकी टैग लाइन जो है ना ये मुझे बहुत पसंद है, कीवें हो तुसी कीवें हो जी, असी एकदम चंगे हाँ, असी एकदम वधिया हाँ, थैंक यू सो मच। एंड साथ में लिखा है कि जो इन्होंने अपना मैसेज लिखा है उसमें जो मेरी वाली बात है ना, मेरा वाला क्वेश्चन था ना दिल और दिमाग का, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन अपना नाम ज़रूर लिखा है। सो थैंक यू सो मच, कम से कम अपना नाम जो है आपने मेरे साथ शेयर किया है। और ये मैसेज है प्रदीप सलूजा का, जनकपुरी नई दिल्ली से। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर मैसेज। लेकिन मैंने जो पूछा था वो आपने मुझे नहीं बताया है, सो प्लीज़ मुझे जल्दी से बता दीजिए। वेल, अगले मैसेज की तरफ मैं बिल्कुल से दौड़ती भागती पहुँच रही हूँ, क्योंकि इसलिए दौड़ती भागती पहुंच रही हूं क्योंकि ये मैसेज मेरे पास मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का। जोया, वेलकम टू द शो। और साथ में लिखा है कि आई हैव ऑलवेज टेकन डिसीजन इन माय लाइफ फ्रॉम माय ब्रेन, दिमाग से काम लेती हूं, दिल से काम कभी नहीं लेती हूं। मे बी चाहे वो प्रोफेशनल बात हो चाहे वो पर्सनल बात हो, लेकिन दिल की बात जो है वो मैं कम सुनती हूं, मैं दिमाग से ज्यादा चलती हूं। और साथ में लिखा है कि कोई भी डिसीजन हो उसमें मैं अपने दिमाग पर ही रिलाई करती हूं, अपने ब्रेन पर ही रिलाई कर रही हूं। चलिए अच्छी बात है, लेकिन दिल से जो लोग डिसीजन लेते हैं उनकी भी ज़्यादा मतलब ऐसे कमी नहीं है, वो ज़्यादा पीछे नहीं है। वेल, अगले मैसेज की तरफ हम बढ़ें तो ये मैसेज अनिल शर्मा का है सरिता विहार से, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझसे शिकायत की है हमेशा की तरह। पहले तो हाथ जोड़ के माफ़ी है, आप शिकायत मत कीजिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि मैसेज मिस हो जाता है, लेकिन उसके पीछे कुछ भी पर्सनल रीज़न नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके मैसेज के लिए एक घंटे का टाइम पीरियड है, एक घंटे के बाद भी आपका नंबर नहीं आएगा, रिमाइंडर देंगे तो भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि हम बैक टू बैक मैसेजेस लेने की कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। और आज भी आपने मुझे मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया है, शिकायत भेजी है, तो कोई बात नहीं, आपकी दिल की भेजी शिकायत है। अब आप मुझे बताइए कि आप दिल से काम लेते हैं या दिमाग से। अगला जो मैसेज है वो अंशी शर्मा का है हस्तिनापुर मेरठ से, और अंशी ऐसी हैं जो कभी भी मुझसे नाराज़ नहीं होती अगर उनका मैसेज बाय चांस मैं ना ले पाऊँ। सो इन्होंने लिखा है कि कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज के टॉपिक पर

यही कहना चाहती हूँ कि जब बात दिल और दिमाग में से किसी एक की सुनने की आती है तो मैं तो दिमाग की ज़्यादा सुनती हूँ। दिमाग का पलड़ा जो है वो भारी होता जा रहा है और दिल की बात मैं ना के बराबर ही सुनती हूँ। एंड बाय चांस अगर ऐसा हो भी जाए तो कोई बात नहीं। वेल थैंक यू सो मच शेयरिंग दिस मैसेज। और मोहम्मद सरफराज आलम ने एक बहुत बहुत बहुत ही फ़नी मैसेज मेरे साथ शेयर किया है। तो इन्होंने लिखा है, और वैसे सुनने में फ़नी है लेकिन अगर आप इसके डीप कोर में जाएंगे तो एक्चुअल में होता यही है। सो इन्होंने लिखा है कि एक बार मिठाई की दुकान के सामने से मैं गुजर रहा था तो दिल बोला रसगुल्ले खा लो। दिमाग बोला नहीं नहीं, शुगर और वज़न याद है ना, बिल्कुल नहीं खाना है। तो आखिर में मेरा जो दिमाग है वो जीत गया, लेकिन घर आकर मैंने चुपके से फिर एक रसगुल्ला खा लिया। यानी कि फैसला जो है वो दिमाग का है और खुशी दिल की है। चले कोई बात नहीं, ऐसा भी हो जाता है कई बार, हमें याद सब कुछ रहता है लेकिन कभी कभी हम दिल की भी सुन लेते हैं। लेकिन दिल को इस तरीके से गलत कैटेगरी के कटघरे में लाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगला मैसेज श्रुति का है, मोहन गार्डन से लिखा है कि मेरे साथ बचपन से ही कुछ ऐसा भी हुआ है कि अगर मैं दिल से सोचती हूँ तो मुझे बाद में बड़ा दुख होता है, और बाद में अगर शांति से बैठकर सोचती हूँ, दिमाग से सोचती हूँ तो थोड़ा सुकून होता है। सो इन शॉर्ट बहुत लंबा मैसेज आपने भेजा है, तो मैं आपसे ये बोलूँगी थोड़े छोटे मैसेजेस भेजिए, टू द पॉइंट भेजिए, बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ भेजिए तो मज़ा आ जाएगा। सो लिखा है कि मेरे ख्याल से तो दिमाग से ही सोच समझ कर हमें काम लेना चाहिए। चलिए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। और ये मैसेज आया है मोहम्मद शाहजाद का सूरत गुजरात से। क्या बात है, सूरत की साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है। सो मोहम्मद शाहजाद जी ने क्या लिखा है कि मैं अपने दिल की सुनता हूँ। चलिए दिल के लिए कोई तो मैसेज आया, मैं अपने दिल की सुनता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है। दिमाग का सुना हुआ कई बार ख़राब हो सकता है, लेकिन दिल से सुना हुआ हमेशा बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमेशा दिल की सुननी चाहिए। क्या बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि काश मेरे पास कुछ ऐसा होता कि मैं एक काउंटर लगा देती कि दिल और दिल वर्सेस दिमाग में। एक और मैसेज लेती हूँ, रवि जोशी का है, मेरठ से लिखा है कि नमस्कार, दिल और दिमाग की कभी नहीं बनती है। बिल्कुल सही, ये तो हमें मालूम है, तभी तो ये क्वेश्चन राइज किया है। उन्होंने लिखा है कि यदि बन जाए तो फिर किसी की चलती नहीं है। अच्छा, ये भी बिल्कुल सही बात है, दिल और दिमाग की कभी बनती नहीं है, लेकिन अगर बन जाए तो फिर किसी की चलती नहीं है। तो ये तो एक मिरेकुलस, ये एक ऐसे ऐसा मिरेकल होगा कि कभी ऐसा हो कि आपका दिल और दिमाग बिल्कुल सही एक ही दिशा में सोच रहा है और बोल रहा है कि हाँ, दिल भी यही बोल रहा है यही करना है, दिमाग भी यही बोल रहा है यही करना है। अगर ऐसा हो जाए तो वाकई किसी की नहीं चलती है। रवि जोशी जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज। मुझे लगता है कि एक म्यूज़िकल ब्रेक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दिल जो है वो डूबता जा रहा है, तो दिल को उठाइए दोस्तों, और ये ट्रैक आप सबके लिए है।

0: कल से तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: All right, listeners, so message masala mix की हमारी जी आज की जो सीरीज है उसमें हो रही है जंग दिल और दिमाग के बीच में। तो देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। नरेंद्र सोनी का मैसेज है यहाँ पे देवीगढ़ पटियाला से और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा मैसेज उन्होंने लिखा है और मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट मैसेज है क्योंकि उन्होंने लिखा है कि हम तो हमेशा ही दिमाग। अब आगे आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे आप देख लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। वेल थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज नरेंद्र सोनी जी। और अगले मैसेज की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला मैसेज जो हमारे पास आया है ये एक फिल्म की रिक्वेस्ट आई है, क्यों आई है मुझे नहीं पता लेकिन बस आई है। अगला जो मैसेज है वो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं द मुखीज परिवार शांतिनगर सोनीपत से और इन्होंने लिखा है कि अच्छा बहुत आदर वादर आप मुझे मत दिया करो, आदरणीय भारती जी मत लिखा करो, मुझे एकदम से ऐसे फील होने लग जाता है जैसे मैं बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ। तो इन्होंने लिखा है कि दिल और दिमाग दोनों में ही जो पहला शब्द है वो दिल और दिमाग, अगर हम उसकी स्पेलिंग की बात करें तो DI आता है। सो दोनों दिल दिमाग दोनों ही द या DI से शुरू होते हैं और हमारे विचार से दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए हमें दोनों की बात माननी चाहिए, हम दोनों की सुनते हैं। देखिए ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल बात है। वो इसलिए है क्योंकि दिल और दिमाग कभी भी एक डायरेक्शन में बात नहीं करते हैं और ऐसा कभी हो जाए तो फिर तो हम किसी की नहीं सुनते हैं। लेकिन ऐसा ये चांसेस बहुत निग्लिजिबल है। सो माहिदा सुल्ताना का मैसेज है जम्मू कश्मीर रजौरी से, क्या बात है वहाँ भी रजौरी है यहाँ भी रजौरी है। सो माहिदा सुल्ताना आप आइए कभी दिल्ली, ज़रूर आइए और हमारे यहाँ की रजौरी में भी घूमिए। लिखा है कि जो लोग दिल के पीछे भागते हैं वो फीलिंग्स में जीते हैं। देखिए कितनी समझदारी वाली बात इन्होंने लिखी है और बिल्कुल सच बात है। जो लोग दिल के पीछे भागते हैं वो फीलिंग्स में जीते हैं और जो दिमाग के साथ चलते हैं या दिमाग के पीछे चलते हैं वो लाइफ जीते हैं। मैं तो दिल और दिमाग दोनों 50% यूज करती हूँ क्योंकि दोनों ही कुछ अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। क्या बात है, आई मीन दिस इज़ रियली अ ब्यूटीफुल आंसर और मुझे लगता है शायद हमारी ज़िंदगी में होता भी यही है और होना भी यही चाहिए। सो सुल्ताना जी थैंक यू सो मच इतना प्यारा मैसेज भेजने के लिए। अगला जो मैसेज है वो ताराचंद सोनी जी का है राजस्थान से, लिखा है कि दिल का क्या कसूर है, दिल है कि मानता नहीं है, दिल

0: बच्चा है, ऐसे लगता है कि अलग अलग टाइटल्स लेके ना अपने तीन गानों की फरमाइश कर दी है और साथ में लिखा है, फिर भी दिल जो है ना, दिमाग जो है ना, वो दिल को कंट्रोल कर लेता है। बट ऐसा क्यों लगता है हम लोगों को कि सारी गलती दिल की है, सारी फीलिंग्स दिल में ही हैं, दिमाग में तो कुछ है नहीं? ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ये सब इंटरकनेक्टेड है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक हम समझेंगे तब तक मुझे लगता है शो खत्म होने का टाइम हो जाएगा, हमारा नहीं, हमारी ज़िंदगी का, क्योंकि पूरी ज़िंदगी लगेगी इसे समझने के लिए और ज़िंदगी भी किसी शो से कम नहीं है। सिकटी अररिया बिहार से मैसेज है रंजीत कुमार मंडल का, लिखा है कि मुझे दिल से काम लेना अच्छा लगता है। क्या बात है, ऐसा करने से कम ही मामलों में मेरा काम ख़राब होता है, ज़्यादातर मामलों में मेरा काम बन जाता है। क्या बात है, मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो दिल से काम लेते हैं और वाकई ही दिल की बात मानने से काम जो है वो बन जाता है। मतलब मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही, मैं रंजीत कुमार मंडल जी के बारे में बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस मैसेज। अगला मैसेज जो है वो है डॉक्टर प्रकाश। अच्छा, ये मैसेज जो है ओके सो मोहम्मद सरफराज आलम का मैसेज है, उन्होंने लिखा है कि आप जो है डॉक्टर प्रकाश गोगिया जो जागृति एनक्लेव में रहते हैं उनसे पूछिए, क्यों मैं पोस्टमैन हूँ, उनसे पूछिए कि आपको ही दिमाग है, किसी श्रोता को नहीं है। वैसे ये मुझ पे तंज कस रहे हैं, प्लीज़ ये सब बातें अपना पर्सनल लेवल पर कर लीजिए, मुझे इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। मुझे मैसेजेस पढ़ने में आज बहुत मज़ा आ रहा है, तो मुझे आपके मैसेजेस जो है वो पढ़ने दीजिए। अगला जो मैसेज है वो मैसेज मेरे पास है कि अच्छा, ये बहुत लंबा मैसेज आपने मुझे लिखा है, मैं इसे शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ कि टॉपिक अच्छा है, प्रोग्राम का इंतज़ार रहता है एंड आते ही अब मेरा दिल करता है कि मैं दिल की बातें सुनता हूँ, लेकिन लोग जो हैं जो दिल की बातें सुनते हैं लोग उनका मिसयूज़ करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो दिल की बात सुनने से एक्चुअल मैं परेशान हूँ, तो इसका कोई उपाय बताइए। इसका उपाय तो बहुत सिंपल है ना, उसी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि दिल की बात मानने से आपका नुकसान होता है तो फिर सिंपल सी बात है, दिमाग की सुनिए। और दिमाग आपको डेफिनेटली यही बोलता होगा कि दिल की मत सुन, दिल की मत सुन, दिल की मत सुन। सो आप अपसे जो है ना दिमाग से काम कीजिए, मेरे पास तो यही उपाय है। अगला जो मैसेज मेरे पास है वो दिल की सुनो या दिमाग की, जवाब आसान है, दोनों की सुनो, बस वक्त को पहचानो। रिश्तों में दिल की सुनो क्योंकि रिश्ते तर्क से नहीं माफी से बचते हैं। करियर और पैसे में दिमाग की सुनो क्योंकि सपनों को भी खर्चा चाहिए। क्या बात है, ये बहुत अच्छी लाइन है कि सपनों को भी खर्चा चाहिए। क्या बात है, सही फैसले वही हैं जहां दिल सुकून दे और दिमाग साथ दे। बाप रे, ये बहुत फिलोसफिकल है। और ये मैसेज जो है रामधारी अवाना जी का है, गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से। क्या बात है सर, आपको शत शत प्रणाम है। थोड़ा सा मुश्किल है, बात बिल्कुल सही है लेकिन बहुत फिलोसफिकल भी है। बट थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस मैसेज। वेल लिसनर्स, आपके मैसेजेस तो बैक टू बैक मेरे पास आते जा रहे हैं। मुझे लगता है ये टाइम है जो हम थोड़ा सा म्यूजिक तो सुन लेते हैं, हमें म्यूजिकली यॉर्स भी। सो एक बहुत ही प्यारा ट्रैक आप सबके लिए, टेक इट अवे।
1: ओ मैं क्या, की हाल है, करन आ गए सब दंगा। एक किस्सा सुनो, उस दिन दी बात है जब यारा दा पै गया पंगा। सब करते हैं मेरी तारीफा, तू ही ता जान दे ओ, मैं किन्ना शरीफ हां, किन्ना

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एचआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एचआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। अच्छा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: ऑल राइट लिसनर्स, सो मैसेज मसाला मिक्स की हमारी आज की सीरीज में हम बात कर रहे हैं दिल और दिमाग। दिल और दिमाग दोनों आमने सामने खड़े हैं और मैं बनी हुई हूँ बीच में रेफरी, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ आपके मैसेजेस। और बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग अभी तक दिल की जगह दिमाग से काम लेने के बारे में बात कर रहे हैं। और ऐसा एक और मैसेज मेरे पास आया है। हेलो रेनबो, आई लिसन द वॉइस ऑफ हार्ट बट विद यूजिंग ब्रेन इन डिफरेंट सिचुएशंस। विनोद का मैसेज है पंजाब से और लिखा है कि ब्रेन जो है वो 100% राइट होता है। हमारा जो दिमाग जो कहता है ना वो 100% सही होता है। तो फिर आपने ये क्यों लिखा है कि मैं दिल की बात भी सुनता हूँ लेकिन अपना दिमाग भी लगाता हूँ। ऐसे ये चीटिंग नहीं चलेगी, या तो दिल के बारे में बोलिए या दिमाग के बारे में। बट विनोद जी, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग द मैसेज। राकेश ठाकुर का मैसेज है मोहन गार्डन उत्तम नगर से, मैं पहले दिमाग यूज़ करता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, फिर दिल को उसी के हिसाब से मना लेता हूँ। मतलब आपका दिल मान जाता है? अगर आपका दिल आपकी बात मान जाता है तो फिर तो क्या दिमाग, क्या ज़िंदगी, क्या अच्छा क्या बुरा। अगर जिसने दिल को काबू में कर लिया, जिसने अपने मन को काबू में कर लिया, उसने तो सब कुछ काबू में कर लिया। राकेश ठाकुर जी बताइए, आपकी वाइफ का नाम कहीं दिल तो नहीं है? बट जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच। और अगला जो मैसेज है वो शिकायत वाला मैसेज है कि आपने पिछले मंगलवार मुझे याद भी नहीं है कि मैं आई थी कि नहीं, पिछले मंगलवार को मेरा मैसेज नहीं लिया था आपसे। मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आप कोई परेशान हो। मेरी शिकायत तो लेकर नाराज़गी जायज़ करें, मैं तो यही चाहता हूँ आप हमेशा खुश रहें। आप इतना परेशान क्यों हैं? आप मुझे सीधा बस अपना मैसेज बताइए, उनका

जैसे कि हम दिल की सुनते हैं, पर जो हमारा अनुभव है और उसे यूज़ करते हैं और दिमाग का समर्थन करते हुए ही हम दिल की बात सुनते हैं। सोनू का मैसेज है बिजनौर से। सोनू जी, इतनी नाराज़गी ठीक नहीं है, और ये नाराज़गी वाले मैसेजेस मत भेजा करो प्लीज़, बिकॉज़ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपके मैसेजेस बैक टू बैक पढ़ने की, लेकिन मैसेजेस सच में बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, बहुत सारे लिसनर्स के मैसेज आते हैं, सो थोड़ा सा आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। लिखा है रितिका ने, यहाँ पर रितिका आ रहे हैं गाज़ियाबाद से, लिखा है कि मैं गाज़ियाबाद से हूँ और मेरा मानना यह है कि जो लोग दिमाग से काम लेते हैं उनके पास दिल नहीं होता है। क्या बात है, मतलब कोई तो आया ना दिल के फेवर में कि जो लोग दिमाग से काम लेते हैं उनके पास दिल नहीं होता है। दिल की ज़रूरत होती है तो कहीं दिमाग की ज़रूरत होती है, और ये हमें हमारे हिसाब से फ़ैसला करना होता है कि हमें किसकी सुननी है। क्या बात है, डिप्लोमेटिक आंसर है रितिका, लेकिन फिर भी आपने दिल को सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। अगला जो मैसेज है वो बब्बन कुमार जी का है, बब्बन कुमार दास, रौनिया खिजेर सराय गया बिहार, और इतना सब पढ़ने के बाद मुझे जो मिला है वो ये मिला है कि गुड इवनिंग नाइस सॉन्ग। चलिए थैंक यू सो मच, बट अच्छा होता ना कि आप हमारे क्वेश्चन का भी जवाब देते हैं कि आप दिल की सुनते हैं दिमाग की, या हो सकता है कि आपने ये प्रश्न सुना ही ना हो, बट कोई बात नहीं, आपने सॉन्ग की तारीफ करी, थैंक यू सो मच। पुरुषोत्तम कुमार का भद्रवाह से मैसेज है, मैं दिमाग की ज़्यादा सुनता हूँ क्योंकि दिल और दिमाग की इन दोनों की आपस में नहीं बनती है। बिल्कुल सही बात है, दिल और दिमाग की कभी कभी कभी नहीं बनती है, और क्यों नहीं बनती है बस यही समझ में नहीं आता है। सो यहाँ पे मैसेज है ओम प्रकाश जी का, GK2 से, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद आपका नाम मैं पढ़ रही हूँ, बहुत दिनों के बाद आपका मैसेज मुझ तक पहुँचा है। गुड इवनिंग RJ भारती बेटा, क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, हाउ आर यू, ऑलवेज लिसन टू दिमाग, दिल तो पागल है। आई लाइक दिस, ऑलवेज लिसन टू दिमाग, क्योंकि दिल तो पागल है, बिल्कुल दिल पागल है, लेकिन क्या पागलों की बात नहीं सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए, पागलों की बात ज़्यादा सुननी चाहिए क्योंकि पागलों को ज़्यादा प्यार की और ज़्यादा अपने मन की ज़रूरत होती है। बट जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच सर फॉर सेंडिंग द मैसेज, और मुझे सुनने के लिए भी थैंक यू। शिशिर का मैसेज है गुरुग्राम से, जब भी डिसीजन टफ होता है तब मैं हमेशा दिल की सुनता हूँ, क्या बात है, थैंक यू सो मच शिशिर जी। दिमाग के डिसीजन कितना भी लॉजिकल क्यों ना हो, लेकिन दिल अगर वो नहीं चाहता है तो डेफिनेटली आपको वो नहीं करना चाहिए, और वो आप करना नहीं चाहते हैं, और अगर दिल कह रहा है कि नहीं करना है तो इसका मतलब आप वो नहीं करना चाहते हैं, तो उसकी सुने, और इससे क्या होगा कि काम में कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी अगर आप सिर्फ दिमाग की बात सुनेंगे तो। चलिए शिशिर जी, थैंक यू सो मच, आपका मैसेज थोड़ा सा तोड़ मोड़ के मैं पढ़ पाई, लेकिन मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। रवि का मैसेज है मेरठ से, मुझे लगता है रवि ने पहले भी मैसेज किया था, तो दोबारा से मैसेज मत कीजिए क्योंकि बहुत सारे मैसेज हैं। वेल लिसनर्स, एक ट्रैक आप सबके लिए यहाँ प्ले कर रही हूँ, और उसके बाद मैसेज हम पढ़ेंगे भुवनेश का, सो टेक इट अवे।

ऑल राइट लिसनर्स, और यहाँ पे एक तरह से दंगल ही हो रहा है दिल और दिमाग के बीच में। अशोक नागरा जी चंडीगढ़ से लिख रहे हैं कि भारती जी दिल तो पागल है, बाकी आप समझदार हैं। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि मैं दिल नहीं हूँ, मैं दिमाग हूँ। चलिए, दिल तो पागल है, बाकी आप समझदार हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दिल इतना भी पागल नहीं है और इतना भी ख़राब नहीं कहता है। और भुवनेश, सॉरी मैं आपका मैसेज डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन आपका मैसेज मुझे मिल गया है। बहुत लंबा डिटेल मैसेज है, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको उसका जवाब देने की। वेल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं बच्चे, बच्चे हमेशा सच्चे होते हैं और दिल की बात सुनते हैं, क्योंकि दिल तो बच्चा होता है और बच्चे हमेशा सच्चे होते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाते हैं विपुल नहीं लगाते हैं, विपुल गौड़ ने शक्ति नगर दिल्ली से ये मैसेज भेजा है। इस बात में भी दम है मुझे ऐसा लगता है। सरिता ढाली का मैसेज है छत्तीसगढ़ रायगढ़ से, हेलो मैम, मुझे आपका शो बहुत पसंद है। अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच। बट दिल और दिमाग की बात आप लिख देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। शमसुल कमर राही का मैसेज है और लिखा है कि मैं हमेशा अपने दिल की सुनता हूँ, क्योंकि दिमाग तभी काम करता है जब दिल सुकून में हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। राजेश भल्ला का मैसेज भी आ गया है, कंकर खेड़ा मेरठ से हमारे रेगुलर लिस्नर हैं। लिखा है कि जहाँ भावना की बात तो हो तो दिल की सुनते हैं और जहाँ काम की बात हो तो दिमाग की सुनते हैं। या मुझे पता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इतना भी अलग नहीं कर सकते हैं। और दिल से किया गया काम और फैसला हमेशा बेहतर परिणाम देता है। थैंक यू सो मच, ये लिखा है देहरादून से आलोक पवार और मिनी ने। ये बात भी सही है, लेकिन अगला जो मैसेज है वो ये कह रहा है, गुड्डू धाकड़ का मैसेज है मध्य प्रदेश उज्जैन से, बेड़ावान गांव से, कि मैं हमेशा 100% दिमाग की ही सुनता हूँ, क्योंकि दिल तो पागल है। तो चलिए, दिमाग एक बार फिर से भारी हो गया है। अगला मैसेज है अयान, आयाना, रितु, रजत, वान्या, समायरा, सम्राज, ये क्या टंग ट्विस्टर है, लुधियाना से लिखा है कि हम सब दिल की सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है, दिल की ज़रूर ज़रूर ज़रूर सुननी चाहिए। एक मैसेज मेरे पास आया है जिसने मेरा दिल जीत लिया है, अमित जी का मैसेज है मोहाली से, लिखा है कि गुड इवनिंग, मैं तो दिमाग की सुनता हूँ क्योंकि दिल मेरे पास है नहीं। आपने अपना दिल किसको दे दिया है, जल्दी से बताइए मुझे। चलिए, अभी मत बताइएगा, अभी बिल्कुल समय नहीं है, फिर कभी नेक्स्ट प्रोग्राम में आप ज़रूर बताइएगा। अगला मैसेज मेरे पास अमन प्रतीक का है, नोएडा से, लिखा है कि आजकल ऐसा लगता है कि दिमाग से लिया डिसीजन दिल से लिए डिसीजन पे भारी पड़ता है। क्या बात है, बड़ी दिल को चुभती हुई सी बात आपने लिखी है, लेकिन बात कहीं ना कहीं सच्ची भी लिखी है। आजकल लोग दिमाग से ज़्यादा काम लेने लग गए हैं और दिल कहीं ना कहीं बेचारा कहीं किसी कोने में बैठा सोच रहा होता है कि ये क्या कन्फ्यूजन है। थैंक यू सो मच अमन प्रतीक जी। और अगला मैसेज प्रवीण चौहान का है, खरगोन मध्य प्रदेश से, लिखा है कि हम कितना भी दिमाग लगा लें, सुकून तो दिल में ही मिलता है, इसलिए दिमाग को एक तरफ पटक कर अच्छा, पटकना भी है, एक तरफ पटक कर दिल से काम लेता हूँ। क्या बात है। वेल लिसनर्स, मैसेजेस जो है वो सच में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो टाइम है ये वो आ गया है कि जहाँ पर हम आपसे कहें अलविदा, और आपसे ये भी कहें कि दिल और दिमाग की ये जो जंग है इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ दिल से काम लीजिए, जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ दिमाग से काम लीजिए, और जहाँ पर आपको लगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो उस काम को थोड़े टाइम के लिए साइड में रख दें, या एक बहुत अच्छी बात है आप अपने किसी बड़े से भी पूछ सकते हैं। और बड़ों से पूछना मुझे लगता है कि सबसे अच्छा रहता है। कहते हैं ना कि एक तीसरी पर्ची डाल लेनी चाहिए कि अगर खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो क्या करें, क्या करें, कुछ नहीं करें कि एक तीसरी पर्ची डाल लें, यानी कि किसी बड़े से पूछ लें, किसी बच्चे से ही पूछ लें, किसी से एक पूछ लें, और उससे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो ऐसे में मुझे बिल्कुल याद मत कीजिएगा। और ये मत कहिएगा कि आपने ऐसा बोला था, नहीं मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला था, मैंने सिर्फ कोशिश की थी कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। चलिए, दिमाग की बात लोगों ने ज़्यादा करी, दिल की बात कम करी, लेकिन हम तो दिल से ही आपको यही कहेंगे कि मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मैसेजेस भी भेजती रहिए और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और ठीक 8 बजे मैं फिर से आपके साथ रहूँगी म्यूज़िक मस्ती लेकर, बहुत सारे म्यूज़िकल जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। फ़िलहाल आप सबसे लेते हैं हम विदा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड

0: पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की जरूरत पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है। ये कमी सोने पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम एक वर्ष तक सोना न खरीदने की अपील का परिणाम है। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी, जिससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए थे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: यार मुझे कुछ जल्दी

0: भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ऑल राइट लिसनर्स, बिल्कुल से यहाँ पे शुरू करने वाले हैं हम म्यूजिक मस्ती, म्यूजिक की थोड़ी सी मस्ती और मस्ती में थोड़ा सा म्यूजिक नहीं, बहुत सारा म्यूजिक, बिकॉज ये है म्यूजिक मस्ती। और मैं हूँ आपकी वही आरजे भारती जो कभी नहीं हारती और चाहती है कि आप भी जिंदगी से कभी ना हारे। यस ऑफ कोर्स, फेस लाइफ विद फुल पावर, और वो तो आपको हमेशा ही जिंदगी में करना है, आपका मेरा वादा है। और इस वादे के साथ बस यही इरादा है कि जितना हो सके आपको एंटरटेन कर सके, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी तो हमें लानी होती है और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी देनी होती हैं, और इसी सबका मिला जुला रूप है हमारा ये प्रोग्राम और साथ में हमारे बाकी सब प्रोग्राम्स। सो ये जो प्रोग्राम है ना, खास तौर से उनके लिए है जिन्हें डांसिंग नंबर पसंद है, जिन्हें बहुत एनर्जेटिक नंबर्स पसंद हैं, या जिन्हें म्यूजिक में छुपी हुई मस्ती जो है वो बहुत पसंद है, फुट टैपिंग नंबर्स बहुत पसंद है। तो ऐसे बहुत सारे यू नो ट्रैक्स लेकर बिल्कुल से आज मैं आपके साथ बनी रहूंगी। सो स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग, क्योंकि ये मैसेज बेस्ड प्रोग्राम नहीं है इसलिए मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊंगी, लेकिन फिर भी अगर आप कोई मैसेज मुझे करना चाहें तो आप जरूर कर सकते हैं। वेल, एक ट्रैक से, एक बहुत ही प्यारे ट्रैक से, क्योंकि दिल्ली का मौसम जो है ना वो अच्छा खासा बदल गया है, तो उस मौसम को देखते हुए भी ये ट्रैक जो है आप सबके लिए। एंड आई जस्ट होप कि इसके साथ जब मैं बाहर निकलूं ना एक घंटे के बाद तो मुझे बारिश जो है वो पक्का मिल जाए। फिलहाल लिसनर्स, ये आप सबके लिए, हमारी दिल्ली के लिए नहीं बल्कि जहां जहां से आप हमें सुन रहे हैं सबके लिए ये ट्रैक। और म्यूजिक मस्ती में आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिएगा।

0: पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: यादें अतीत से बातें बस दिल से क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: बंद करो ये बकवास, कोई नामी गाना शुरू करो।
1: सर्द चिलमन के पीछे शमा महफूज रहती है।

पतंग संग उड़ गया बचपन, झनक झनक मन डगर सुहानी रे, लड़कपन आया अब तो कसक मसके क्या मस्तानी रे, अरे क्या हाय जवानी की होती है यही निशानी रे।

0: खुरचन, अरे मथुरा के पेड़े, रेवड़ी मेरठ वाली चाट दरी बांकी लाएगा। अरे मैं हुक्म करूं तो दूर अरब से पूरा बाग खजूर लाद के आंगन में भरपूर तू मेरे लगवाएगा।
1: अरे लगवाऊंगा।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो

भाई सोचा कि जो शो की शुरुआत है ना वो किसी ऐसे गाने से की जाए जो आपको 90s की सबसे मतलब एक बेहतरीन यादों में लेकर जाए, खासतौर पे 1999 की अगर बात की जाए, 1999 की जब ये बॉलीवुड फिल्में बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से सुष्मिता, करिश्मा, सलमान, शाहरुख, ऑल दैट स्टार्स वॉज शाइनिंग, स्टिल शाइनिंग नो डाउट, अभी भी शाइन करते हैं, अभी भी उनकी जो चमक है फीकी नहीं हुई है। बहुत सारे 90s के ऐसे स्टार हैं, बहुत सारे 90s के ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिनकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं है और उनकी जो चमक है ना वो आज भी फीकी नहीं हुई। करेक्ट। प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर। और उन्हीं शाइनिंग स्टार्स की एक और फिल्म है जिसका गाना मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ। और इस फिल्म में जो स्टार थे ना, ऐश्वर्या एंड सलमान एंड अजय, यस, एंजॉय द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी हम दिल दे चुके सनम।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

एक शाम आती है तुम्हारी याद लेकर, एक शाम जाती है तुम्हारी याद देकर, पर हमें इंतज़ार उस शाम का है जो आए तुम्हें साथ लेकर। वैसे यादों का सिलसिला ऐसा ही होता है, और ख़ास तौर पे जब आप 90s के गाने सुनते हो ना, और वो भी इस तरीके के जिनमें बहुत फीलिंग्स होती हैं, जिनके वर्डिंग्स, जिनके लिरिक्स, जिनका म्यूज़िक इतना मैजिकल होता है, तो आप पहुंच ही जाते हैं अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी एक ऐसे हिस्से पर। वैसे 90s का एक और सॉन्ग है, बड़ी प्यारी सी फिल्म थी ये भूमिका एंड सलमान की, दिस मतलब अल्टीमेट मूवी थी ये। एंजॉय द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी तेरे नाम।

एक बार फिर से थोड़ा सा 90s से हम जब आगे का सफ़र किया है, पिछली बार तो पीछे का सफ़र करते थे लेकिन इस बार थोड़ा सा आगे निकले हैं और 2016 की फिल्म थी तुम बिन। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी थी ये, एंड इसको म्यूजिकल हिट इस फिल्म को बोला जाता है। और उसी दौरान उसी साल के आसपास एक और फिल्म आई थी आफ्ताब अर्जुन रामपाल के साथ ही, दिस इज वॉज गुड मूवी। हालांकि थोड़ी सी जो फिल्म की स्टोरी थी वो इधर उधर भटकती हुई कहीं और पहुंची, लेकिन हाँ फिल्म के गाने लोगों को काफ़ी पसंद आए थे, सॉन्ग्स काफ़ी पसंद आए थे। और उन्हीं सॉन्ग में से एक ये भी सॉन्ग है जो लोगों को काफ़ी पसंद आया था, दिस सॉन्ग इज ऑल्सो ब्यूटिफुल। अलका याग्निक जी की आवाज़ है इसमें, उदित नारायण साहब की आवाज़ है, एंड दिस प्यार इश्क और मोहब्बत, ब्यूटीफुल, एंजॉय दिस वन। आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही।

और अब बारी उस सॉन्ग की है जिसकी अपनी एक अलग कहानी है। यस, हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं ना, इस फिल्म को लेकर कई सारे रिमिक्स बन चुके हैं, मतलब बागी बागी वन बागी

बागी, बागी थ्री, बागी फोर, बहुत सारी बागी बन चुकी है, बट द ओरिजिनल बागी ना, नो डाउट, सो ब्यूटिफुल मूवी, जिसमें सलमान खान है जो कि साजन सूद का किरदार निभाते हैं, और नगमा है जो कि काजल का रोल प्ले करती हैं, और भी बहुत सारे स्टार्स हैं इसमें, लिस्ट जो है बड़ी लंबी है, शक्ति कपूर इसमें, किरण कुमार इसमें, भारत भूषण इसमें, बड़ी लंबी लिस्ट है हर जोड़े से। लेकिन हाँ, इस फिल्म को भी म्यूजिकल हिट बोला जाता है। दीपक शिवदासानी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, जावेद सिद्दीकी की लिखी हुई कहानी है ये, और म्यूजिक जो है ना वो आनंद मिलन जी का है, और जो लिरिक्स है ना, ब्यूटीफुल लिरिक्स समीर साहब के लिखे हुए हैं। अब समीर साहब के लिरिक्स हों और आनंद मिलन जी के कंपोज किए हुए म्यूजिक, तो जो सॉन्ग आएगा ना जी जनाब, वो कुछ इस तरीके से आएगा। एंजॉय दिस वन।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

यस, ये उसी फिल्म का सॉन्ग है जिसमें अजय देवगन ना दो बाइक के ऊपर पैर रख के एंट्री लेते हैं। वाओ, मतलब वो एंट्री गजब की, आज भी इसको फॉलो करते हैं कई लोग, लेकिन वैसे हो नहीं पाती जैसी कि इस फिल्म की है। फिल्म का नाम है पोलो कांटे। पोलो कांटे के साथ साथ ना इसी दौरान, मतलब इसके आसपास ही, खैर 1991 की हम बात करते हैं, उसी दौरान एक और मूवी आई थी, हम फिल्म थी ये, और इसमें अमिताभ बच्चन, ओ माय गॉड, नो डाउट, और रजनीकांत, यस, गोविंदा, यस, ये सभी लोग थे इनके अंदर, किमी कटकर, ये सभी एक्ट्रेसेस, और इसमें दीपा शाही भी थी इनके अंदर उस फिल्म में, और इसके अलावा एंड डैनी, यस, अनुपम खेर, कादर खान, ऑल दैट स्टार्स ऑफ दिस मूवी। बट जो सॉन्ग लिखे हैं ना, मतलब जिन्होंने इस फिल्म के जितने भी जो गाने थे ना जो लिखे गए, मतलब अलग लिरिक्स के साथ, आनंद बख्शी साहब के कलम से निकले हुए ये गीत हैं। और जब उन्होंने कलम का जिक्र किया तो इसी के साथ ही, जिससे मतलब दवात और कलम कॉम्बिनेशन, समझ गए ना कौन से गाने की बात कर रही हूँ मैं, यस उसी सॉन्ग की बात कर रही हूँ जो कि आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ मैं। डिफरेंट सॉन्ग था, और जिस तरीके से मतलब इस गाने को आवाज़ दी ना मोहम्मद अजीज साहब ने और शोभा जोशी ने, डिफरेंट, टोटली फुल ऑफ एनर्जी सॉन्ग। एंजॉय दिस वन।

इसी तरीके से अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, तो अगर हम बात करें 1991 की, ये भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास ही फिल्म थी, 20 दिसंबर की रिलीज थी, सड़क फिल्म थी, संजय दत्त और पूजा भट्ट, मतलब अलग स्टोरी आई और इसको भी म्यूजिकल हिट की कैटेगरी में ही रखा गया क्योंकि इस फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट रहे हैं। इसी फिल्म का ये सॉन्ग है आपके लिए, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 200 अन्य लोग घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ. जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भारत को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के आमिर शेख मिशाल अल अहमद अल जोबर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पतन प्रबंधन प्रणाली विनियमन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पतनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और व्यय नियामक संबंधी सुरक्षित और पलपल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। भारत ए के 278 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। भारत की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्वाधिक 101 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Ramaya by Afrik Simondia. Dear listeners, we are just waiting for a very, very tiny promo break. Stay with us for more music.
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है.
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती.
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है.
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती.

0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमिपत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनिमय संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

के बाद हर खड़ी हमने, आपके बाद हर खड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। गुलजार साहब की ये लाइनें आपने सुनी हैं आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, प्रोग्राम चल रहा है रंग महफिल, गजलों का सिलसिला और ऐसे ही खूबसूरत अल्फाज खूबसूरत गजलों के साथ एक घंटे तक यानी कि 12 बजे तक हम और आप साथ साथ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ, प्रोग्राम आपका अपना रंग महफिल और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेडबो पर। कहते हैं फूलों के अपने किस्से होते हैं और जितने फूल उतने किस्से। हर फूल की अपनी एक कहानी, हर खून जितनी भी हो, जितनी भी तरह के हों फूल, हर किसी की अपनी एक रवानी। यूँ कह लीजिए कि चाहे चंपा हो, चमेली हो, गुलाब हो, गेंदा हो, हर एक अल्फाज में कहीं ना कहीं इनका जिक्र है। और जब बात फूलों की हो, फिर तो अक्सर शाम भी फूलों में तब्दील हो जाती है।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

रूठने मनाने के सिलसिले में उम्र कटती गई, रूठने मनाने के सिलसिले में उम्र कटती गई। वो नादान थे जो समझ न पाए, ये ज़िंदगी यूं ही सिमटती गई।

यादों की बौछारों से जब पलकें भीगने लगती हैं तो सूंधी सूंधी लगती है तब माजी की रुसवाई भी। फिलहाल इजाज़त लेंगे आपसे, ख्याल रखिएगा अपना, छोड़े जा रहे हैं खूबसूरत गज़ल के साथ। और पिछले 90 सालों से आकाशवाणी आपके लिए एक ऐसा मंच तैयार करती है जहाँ पर आपके पसंद के गीत होते हैं, आपके पसंद की बातें होती हैं। तो जैसे आप अभी तक जुड़े रहे, हमेशा जुड़े रहिए, ख्याल रखिएगा अपना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का

0: पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉ जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भारत को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बात की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज जल डम मध्य के पास अमरीकी सैन्य हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए ईरान जिम्मेदार है और अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में की गई जब एक ड्रोन ने रणनीतिक जलमार्ग के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर के चालक दल को बचाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यवहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और फिर निर्बाध रूप से दुनिया भर के गंतव्यों के लिए आगे की यात्रा कर सकते हैं। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम जीरो आर शो का। यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। श्री जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भारत को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की

0: सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बात की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज डल डमरू मध्य के पास अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए ईरान जिम्मेदार है और अमेरिका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में की गई, जब एक ड्रोन ने रणनीतिक जलमार्ग के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर के चालक दल को बचाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और फिर निर्बाध रूप से दुनिया भर के गंतव्यों के लिए आगे की यात्रा कर सकते हैं। मौसम विज्ञान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, केरल, माही, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। श्रीलंका के दामुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। भारत ए के 278 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ए 259 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सुहानी रात का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है।

साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जावेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हैं। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। श्री जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भारत को

0: की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यवहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और फिर निर्बाध रूप से दुनिया भर के गंतव्यों के लिए आगे की यात्रा कर सकते हैं। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। श्रीलंका के दामबला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्वाधिक 101 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम भुलाई ना बनेगा, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उनके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया।

उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA ने सतत विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों के फोरम की पहली बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि यह बैठक AI का उपयोग और ग्लोबल साउथ सहयोग को सुदृढ़ करने के विषय पर आयोजित की गई। इसमें 10 देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, बेलारूस, नाइजीरिया और वियतनाम की विज्ञान अकादमियों ने जिम्मेदार और न्यायसंगत AI विकास पर एक साझा घोषणा को आगे बढ़ाने के लिए भाग लिया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। श्रीलंका के दाम्बला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 108 रन से हरा दिया है। भारत की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्वाधिक 101 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 3:05:29। और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जी हाँ, श्रोता सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज और मैं हूँ आपके साथ

मिडनाइट मेलोडीज ये प्रोग्राम श्रोता सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 4 बजने जा रहा है। अब आप समाचार सुनेंगे कुछ ही पलों बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उनके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जावेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र पर सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यवहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA ने सतत विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों के फोरम की पहली बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि यह बैठक AI का उपयोग और ग्लोबल साउथ सहयोग को सुदृढ़ करने के विषय पर आयोजित की गई। इसमें 10 देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, बेलारूस, नाइजीरिया और वियतनाम की विज्ञान अकादमियों ने जिम्मेदार और न्यायसंगत AI विकास पर एक साझा घोषणा को आगे बढ़ाने के लिए भाग लिया। मौसम विज्ञान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, हमारे श्रोता सुने हैं, सुन भी रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं एफएम रेनबो के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है सुबह के 4:06 और 24 सेकेंड्स, और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सारेगामा।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
9: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की

पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: गारे गारे
1: जरा बड़ा जी
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: गारे गारे
1: ये हमको बटवा
0: गारे गारे, गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर ये इन्ना आया है तो
2: ये कचतुर नार।

0: घोड़ा बोला या चतुर बोला गा।
1: एक चतुर नार करके सिंगार,
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार,
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात,
2: अपने ही जाल में फंसत जात,
1: हम मरत

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सारेगामा 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 5 बजने जा रहा है। अब समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने

0: वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक सेवा की थी। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के भी इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में सभी घटक दलों के नेताओं के अलावा एनडीए शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर 14वीं कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। इस वार्ता का विषय है परिवर्तनशील दुनिया, वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय परिप्रेक्ष्य। डॉक्टर जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की भूमि सीमाओं पर माल प्रसंस्करण और यात्री आवागमन को डिजिटल बनाने तथा सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक बैठक का आयोजन किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमणियन ने बैठक में साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर भी बल दिया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ साथियों, आप जुड़ गए हैं हमारे साथ एफएम रेनबो के जरिए से 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। समय हो रहा है स्टूडियो की घड़ी में 5:06 और लीजिए अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अलमास रजा का नमस्कार और साथ ही हार्दिक अभिनंदन।